مٹیو نہ جم کو تراس، کہو نال کو ہر پد منا۔

जिसका सब आधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। ए वस्त जी नह जाई नित नित रख उधारो, तम संसार चरण लग तरिये।

दुतिया माल कौशक आलापे संग रागनी पांचों थापे गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सिहुती उचारी तनासरी ए पांचों गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशक उभारा खौखट औ पौरा नद गाए।

सुरमानंद पास करे आए चंद्रबिम मंगलन सुहाए सरसबान औ आए बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र में कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कछेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औ रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कांगरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग में गावे पांचों संग बिरंगन लावे।

साच नाई पाखिया भाऊ अपार अख है मंग है देह देह दात करे दातार फेर के अगे रखिए जित दिसै दरबार मुहो के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवे जानिए सब आपे सचियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निदान गाविए सुनिए मन रखिए भाओ दुख पर हर सुख घर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहिया समाई।

आई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीर्थ नावा जे तिस पावा बिन पाने के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा बिन कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जेक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा।

जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवे ता वात ना पुछे के कीता अंदर कीत कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई ना सुजे जे तिस गुण कोई करे सुने सिद्ध पीर सुरनाथ सुने तत धवल आकाश।

दरियाओ कुदरत कमण कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद पावे साई पली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सूर मुह पखसार, असंख मोन लिवलाए तार। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद पावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर। असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहे। असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे। असंख मलेश मल भख खाहे।

अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग बखान, जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए।

एक बार जो तुद पावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हाथ पैर तन दे पानी धोते उतरस खे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइए ओ धोए तो

तीरथ मल नाहो, सब गुण तेरे मैं नाही कोय, बिन गुण कीते भगत ना होय, स्वास्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहाण सदा मन चाओ, कमण सो वेला वखत कमण, कमण थित कमण वार, कमण से रुती माह कमण, जित होवा आकार, वेल न पाइया पंडती

जा करता सिर ठीक ओ साची, आपे जाने सोई किव कर आखा किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना, नानक आ

देवतियां दर नाली गाव है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी गावन जति सती संतोखी गाव है वीर करारी गावन पंडित पण रखीसर जुग जुग वेदा नाले गाव है मोहनिया मन मोहन सुरगा मच्छ पयाले गावन रतन उपाय तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गाव है जोध महाबल सूरा गाव है खाणी चारे गाव है खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से ही तुदनो गाव है जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस पावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात शाह सहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म पत चोली।

आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग बजोग दुहकार चलावह लेखे आवह भाग आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन केले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै।

अनाद अनिल अनाद अनाहक जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए पंडार जो किस पाया सो एकावार कर कर वे कह सिर जनहार नानक सच्चे की।

जाए। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आख हो कर्म। केते पवन पानी वह संतर, केते कान महेश, केते बर में काड़त करिय है।

नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड इथे नाद बनोद कोड आनंद सर्म खंड की वाणी रूप इथे घाट घड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्लां कथिया न जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे

गुप्त लिख जानन, लिख लिख धर्म विचारी, गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन तेरे सदा सुवारी, गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठी।

ब्राह्मण तुदनो पंडित पढ़ रखीस जुग जुग वेदा नाली गामन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मच्छ पाए आले गामन तुदनो रतन उपाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गामन तुदनो जोध महाबल सूरा गामन तुदनो खानी चारी गामन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद पावन रत्ते तेरे भगत रसाले।

सोई सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन अपाई कर कर देखे कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाह साहा पत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोई।

ती रात खसम बसार है ते कम जात नानक नावे बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करहु गुर पास हम कीरे किरम सतगुर सरना।

हम सिखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाव हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरन संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक।

हर हर जियो परिया, सैल पत्थर मह जंत उपाय, ता कारजिक आगे कर धरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ, जनन पिता लोक सुत बनता, हुए न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पौ करिया, उडे उड़ आवे सह कोसा, तिस पासे बचरे शरिया, तिन कवन खलावे कवन चगावे, मन मह सिमरन करिया, सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा वरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा, सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सिरजन हारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दा तारा, हर त्यावो

है तुझ जी, जन नानक तिन कुर्बाना, हर त्याव है हर त्याव है तुझ जी, से जन जुग मह सुखवासी, से मुक्त भये, जिन हर त्याया जी, तिन तूती जमती फासी, जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिन का भउ सब गवासी, जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनक अनेक अनंता, तेरी अनक करह हर पूजा जी, तप ताप है जप है बेअंता, तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई, तुद आपे पावे सोई वरतै जी, तू आपे करह सो होई, तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन

सो कर राख वडाई तोय रहाउ। विसे चसियां कड़ियां पहरा थिती वारी माह होआ। सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस। राग तनासरी महला पहला गगन में थाल। रब चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। धूप मल आन लो पवन चवरो करे। सगल बनराए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए। भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी। रहाउ सहस तव नैन नन नैन है तुह को। सहस मूर्त नना एक तो ही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन। सहस तव गंध इव चलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए। किस दै चानन सब मह चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए। जोत इस भावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभत मनो।

जित सेवियां सुख पाईऐ तेरी दरगाह चलै मान रहाउ सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच्चा नाम सुनह वखाण है जेतड़ी हौं तिन बलिहारै जाऊं तां मन खीवा जानिऐ जा महली पाए थां नाउ नीर चंगियाईयां सत परमल धनवा।

तिसमिन सब अपवित्र है जेता पहनन खान होर गल्लां सब कूड़ियां तुद भावे परवान श्री राग महल पहला जाल मोह कस मस कर

आओ घर मंदिर खुशी नाम की नदर तेरी परवार हुक्म सोई तुद भावसी होर आखण बहुत अपार नाम।

रहाउ। पूज लगे पीर आखिए सब मिले संसार, नाउ सदाए अपना होवे सिद्ध सुमार। जां पत लेखे ना पवे सभा पूज खुआर, जिनको सतगुरु था।

आखण आखी आखण तोट ना होए मंगण वाले के तड़े दाता एको सोए जिसके जी प्राण है मन बस्य सुख होए।

सच वणंजिया गुरपूरे साबास नानक वस्त पछाण सी सच सौदा जिस पास। श्री राग महल पहला धात मिले फुन धात कौ सिफती सिफत समाए लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ सच मिले संतोखिया हर जप एक पाए पाई रे संत जना की रेण संत सभा गुर पाई है मुक्त पदार्थ तेन रहाओ ऊचो थान सुहावना ऊपर महल मुरार सच करनी दे पाई है दर कर महल प्यार गुरमुख मन समझाई है आत्म राम विचार त्रिविध कर्म कमाई है आस अंदेसा होए क्यों गुर बिन त्रिकुटी छुट सी सहज मिले है सुख होए निज कार महल पछाणी है नदर करे मल धोए बिन गुर मैल ना उतरे बिन हर क्यों घर वास एको शब्द विचारी है अवर त्यागे आस नानक देख दिखाई है हों सद

काल कपूर जे धन कंत ना भावे ता सब अडंबर कूड सब रस भोगण बाद है सब शिंगार विकार जब लग शब्द ना भेदी है क्यों सो है गुरुद्वार नानक धन सुहागणी।

नानक दर प्रधान सो दरगाहा पहंदा जाय। श्री राग महल पहला तन जल बल माटी भया मन माया मोहे मनूर औगण फिर लागू पए कूर बजावे तूर बिन शब्द परमाई है दुबदा डोबे पूर मन रे शब्द तरहो चित लाए जिन गुरमुख नाम ना बूझिया मर जन्मै आवे जाय। रहाउ तन सूचा सो आखी जिसमें साचा नाउ भै सच राती देहोरी जेहवा सच सुआउ सच्ची नदर निहाली है

गुरमुख नाम सलाहिय हौ मैं निवरी पाही रहाव। सुन सुन गंडन गंडिय लिख पढ़ बुझह पार। तृष्णा अहनिस अगली हौ मैं रोग विकार। ओहो वे परवाहु अतोलवा गुरमुख कीमत सार। लख सियाणप जे करी लख सियों प्रीत मिलाप। बिन संगत साधना त्रापिया

जप दिन सरात गुरमुख हर धन जान सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान नित अहनस हर प्रभ सेविया सतगुर दिया नाम कूकर कूड़ कमाई है गुर निंदा पचै पचान परमे पूला दुख कणु जम मार करै खुलहान मनमुख सुख ना पाई है गुरमुख सुख सुभान ऐथै धंद पटाई है सच लिखत परवान हर सज्जन गुर सेवदा गुर करनी।

हर हीरा गुर माहे सत संगत सत गुर पाई है अहनस शब्द सलाहे रहाओ सच वखर धन रास लै पाई है गुर प्रगास ज्यों अगन मरै जल

मन मानक निर्मूल है, राम नाम पत पाई, मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिब लाई, आप गया सुख पाया, मिल सल लै सलन समाई, जिन हर हर नाम ना चेतियो, सो अवगुण आवै जाई, जिस सत गुरु पुरख ना भेटियो, सो भौ जल

गुर मिल पाओ जन लंगी है दरगाह पात परवान। नानक ते मुख उजले धुन उपजै शब्द निशान। श्री राग महला पहला वणज करहो वणजारिहो वखर लिहो संभाल। तैसी वस्त वसाही है जैसी निबह नाल। अगै साहू सुजान है लैसी वस्त संभाल। भाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर।

सुख होए, खोटे वणज बणजिए मन तन खोटा होए, ठाही फाथे मिर्ग ज्यो दुख घणो नेतरोए, खोटे पोते ना पवै तिन हर गुर दर्श ना होए, खोटे जात ना पत है खोट ना सी जस कोए, खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए, नानक मन समझाई है गुर कै शब्द साला, राम नाम रंग रतिया पार ना भरम तिना, हर जप लाहा अगला निरपव हर मन मा।

आपे रसिया आप रस आपे रावण हार आपे होवे चोलड़ा आपे सेज पतार रंग रत्ता मेरा साहिब राव रहिया भरपूर रहाओ आपे माछी मछली आपे पानी जाल आपे जाल मणकड़ा आपे अंदर लाल आपे बहु बिदरंगला सखिए मेरा लाल नेत्र वै सुहागणी देख हमारा हाल।

को रह न परिये पाई, सोई काजी जिन आप तजिया, एक नाम किया आधारू, है पी हो सी जाए न जासी, सच्चा सिर जन हारू, पांच वक्त निवा

क्या होए आपे सच भावे तिस सच अंधा कच्चा कच न कच रहाओ जा के रुख बिरख आराओ जेहि धात तेहा तिन नाओ फुल भाओ फल लिखिया पाए आप बीज आपे ही खाए कच्ची कंद कच्चा विच राज

अपना एक मन एक चित पाए, सतगुर मन कामना तीर्थ है, जिसनो दे बुझाए, मन चिंदिया वर पावना, जो इच्छा सो फल पाए, नाउ त्याय नाउ।

जिन्ना हर का साद आया हों किन बलिहार जास नानक नदरी पाई सच नाम गुणतास श्री राग महला तीजा बहु भेख कर परमाई मन हिरदय कपट कमाई हर का महल ना पावई मर विस्ता माही समाई मन रे ग्रह ही माही उदास सच संयम करनी सो करे गुरमुख होए परगास रहाओ गुर कै शब्द मन जीतिया गत मुक्त करे मह पाए हर का नाम त्याई है सत संगत मेल मिलाए जे लख इस्तरिया भोग करह नवखंड राज कमाहे बिन सतगुर सुख ना पावई फिर जोनी पाहे हर हार कंठ जिनी पहरिया गुर चरणी चित लाए तिन्ना पिछे रिद सिद फिरे ओना तिल ना कमाए जो प्रभ भावै सो थीए अवर ना करना जाए जन

भाई को ना मिले फिर आवे जाई सब मह एक वर्त दा एको रहिया समाई जिसनो आप दयाल हुई सो गुरमुख नाम समाई पढ़ पढ़ पंडित जोत की वाद करह विचार मत बुद्ध भवी ना बुझई अंतर लोभ विकार लख चौरासी भरम दे भ्रम भ्रम हुए खुआर पूर्व लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार सतगुरु।

खाई। पारस परसी है पारस हुई, ज्योति ज्योत सुमाई। जिनको पूर्व लिखिया तिन सत गुर मिलिया आई। मन भुखा भुखा मत करह, मत तू करह पुकार। लख चौरासी जिन सिरी, सब सह दे आधार।

से निर्मले हौ सद बनिहारे जास हृदय जिनकै हर वसै इत घट है परगास मन मेरे हर हर निर्मल त्याए तुर मस्तक जिनको लिखिया ते गुरमुख रहे लिव लाए रहाओ हर संत हो देखो नदर कर निकट वसै भरपूर गुरु।

समाए, तिनका जन्म सफल है, जो चल है सतगुर पाई, कुल उधार है अपना, धन जड़ेंदी माए, हर हर नाम त्याई है, जिसनो कृपा करे रजाए, जिन्नी गुरमुख नाम त्याया, विचो हो आप गुआए, वे अंदर हो बाहर हो निर्मले, सच्चे सच समाए, नानक आए से परवान है, जिन गुरमति हर त्याय, श्री राग महला तीजा, हर भगता हर तन रास है, गुरपूछ कर है वापार, हर नाम सलाहन सदा सदा, वखर हर नाम आधार, गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, हर भगता अतुट भंडार, भाई रे इस मन को समझाए, हे मन आलस क्या करहे, गुरमुख नाम त्याई रहाव, हर भगत हर का प्यार है, जे गुरमुख करे विचार, पाखंड भगत ना होवे, दुबदा बोल खुआर, सो जन रलाया ना रले, जिस अंतर विवेक विचार, सो सेवक हर आखी है, जो हर राख है उरतार, मन तन सौंपे आगे धरे, हो मैं विचो मार, तन गुरमुख सो

अनदिन नाम त्याय रहाउ। साची मैल ना लागई मन निर्मल हर त्याय। गुरमुख शब्द पछाणिय हर अमृत नाम समाय। गुरु ज्ञान प्रचंड बुलाया अज्ञान अंधेरा जाय। मनमुख मैले मल परी हऊ मैं तृष्णा विकार। बिन शब्द मैल ना उतरे मर जम है हुए खुआर। धातुर बाजी पलच रहे ना उरवार ना पार। गुरमुख जप तप संजमी हर कै नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याई है एक नाम करतार। नानक नाम त्याई है सबना जिया का आधार। श्री राग महला तीजा मनमुख मोहे ब्यापिया। बैराग उदासी ना होए शब्द ना चीने सदा दुख।

अहनस पूर रही नित आसा, सतगुर सेव मोह परजलै, घर ही माहे उदासा रहाव, गुरमुख कर्म कमावै बिगसै, हर बैराग आनंद, अनबिन भगत करे दिन राती, हौ मैं मारनी चंद, वड्डै भाग सत संगत पाई, हर पाया सहज आनंद, सो साधु बैरागी सोई।

गुर प्रसादी मन वसै हों मैं दूर करे इहो मन धावत तां रहे जां आपे नदर करे पाई रे गुरमुख हर नाम त्याए नाम निधान सद मन वसै महली पावै थाउ रहाउ मनमुख मन तन अंध है तिसनो ठौर ना ठाउ बहु जूनी पौंदा फिरै यूं सुन्ये घर काउ गुरमती घट चानना

पाय लाहा हर हर नाम मिले सहजी नाम समाय बिन गुर महल ना पाइए नाम ना प्राप्त होए ऐसा सतगुर लोड़ लहु जिद्दू पाइए सच सोए असुर संगारे सुख वसे जो तिस पावे सो होए जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होए एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए नानक एक जोत दोए मूर्ति शब्द मलावा होए श्री राग महला तीजा अमृत छोड़ बिख्या लुवाणी सेवा करह विडाणी अपना धर्म गवावह बूझह नाही अन दिन दुख मिहानी मनमुख अंध ना चेत ही डूब मोए बिन पानी मन रे सदा भजहो हर सरनाई गुर का शब्द अंतर वसै ता हर विसर ना जाई रहाओ एहो शरीर माया का पुतला विच हूं मैं दुष्टि पाई आवण जाना जम्मण मरना मनमुख पत गुआई सतगुर सेव सदा सुख पाया ज्योति ज्योत मलाई सतगुर की सेवा अत सुखाली जो इच्छे सो फल पाई जात सत तप पवित्र शरीरा हर हर मन वसाई सदा आनंद रह दिन राती मिल प्रीतम सुख पाई जो सतगुर की शरणागति हों तिनकै बल जाऊं दर सच्चै सच्ची वडियाई।

गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई है, जे लोचै सब कोई रहाऊ।

राय देख कुटंब मोहे लवाना चलदिया नाल ना जाई सतगुर सेव गुण निदान पाया तिस दी कीम ना पाई हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंते होए सखाई अपने मन चित कह कहाई बिन गुर आप ना जाई हर जीव दाता भगत वछल है कर कृपा मन वसाई नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वडियाई श्री राग महला तीजा धन जननी जिन जाया धन पिता प्रधान सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान दर सेवन संत जन खड़े पाएन गुणी निदान मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए गुर का शब्द मन वसै मन तन निर्मल हो।

गुरमुख बूझे कोए बिन बूझे कर्म कमावणे जन्म पदार्थ खोए रहाओ जिन्नी चाखिया तिन्नी साध पाया बिन चाखे भरम भुलाए अमृत साचा नाम है कहना कछु ना जाए पीवत हूं परवान भया।

कमाए। जात सत संयम नाम है, विण नाम है निर्मल ना होए। पूरे भाग नाम मन वसै, शब्द मिलावा होए।

हाथ संभाल है छड़ी ना कितै उपाय दूजे पाए दुख नाहिंदा बहुती दे सजाई नानक नाम लगे से उभरे

आनंदिन भगत करे सदा साचे की लिवलाए, नाम पदार्थ मन वसिया नानक सहज समाए। श्री राग महला तीजा, जिन्नी पुरखी सतगुर ना सेवेउ से दुखिए जुग चार, कर हुंदा पुरख ना पछाणिया अभमान मुटे अहंकार, सतगुरु क्या फिटकिया मंग थके संसार, सच्चा शब्द ना सेवेउ सब काज सुवारन हार, मन मेरे सदा हर वेख हदूर, जन्म मरण दुख पर हर है शब्द रहे आ परपूर, रहाउ सच सलाहन से सच्चे सच्चा नाम आधार, सच्ची कार कमावणी सच्चे नाल प्यार, सच्चा साहु वर्तदा कोई ना मेटन हार, मनमुख महल ना पायनी कूड़ मुठे कूड़ यार, हम मैं करता जग मोआ गुर बिन घोर अंधार।

कार सतगुर सेव मन निर्मला हौ मैं तजवे कार आप छोड़ जीवत मरे गुर कै शब्द विचार धंदा तावत रह गए लागा साच प्यार सच रते मुख जले तित साचे दरबार सतगुर पुरख ना मन्यो शब्द ना लगो प्यार इशनान दान जेता करह दूजे भाई खुआर हर जियो अपनी कृपा करे ता लागे नाम प्यार नानक नाम संभाल तू गुर कै हित अपार श्री राग महला तीजा किस हों सेवी क्या जप करी सतगुर पूछो जाय सतगुर का भाणा मन लई विचों आप गवाय एहा सेवा चाकरी नाम वसै मन आय नामै ही ते सुख पाई है सच्चै शब्द सुहाय मन मेरे अन दिन जाग हर चेत अपनी खेती रख ले कूंज पड़ेगी खेत रहाओ मन कियां इच्छा पूरियां शब्द रहया भरपूर भै भाए भगत करहें दिन राती हर जीव वेखे सदा हदूर सच्चा शब्द सदा मन राता भ्रम गया शरीरों दूर निर्मल साहिब पाया साचा गुणी गहीर जो जागे से उबरे सूते गए मोहाए सच्चा शब्द ना पछाणियो सुपना गया विहाय सुनिए घर का पाहुणा ज्यों आया त्यों जाय मनमुख जन्म बिरथा गया क्या मुँह देसी जाय सब किसी आपे आप है हम मैं विच कहन ना जाय गुर कै शब्द पछाणी है दुख हम मैं विचों गवाय सतगुर सेवन अपना हम तिनकै नागो पाय नानक दर सच्चै सच्यार है हम तिन बलिहारे जाओ श्री राग महला तीजा जे वेला वक्त विचार।

सहज सुपाई गुर का शब्द अमृत है जित पीतै तिख जाय इहो मन साचा सच रत्ता सच्चे रहिया समाय आखण वेखण बोलना शब्दे रहिया समाय बाणी वजी चहु जुगी सचो सच सुनाय हम मैं मेरा रह गया सच्चै लया मलाय तिनको महल हदूर है जो सच रहे लिवलाय नदरी नाम ते आई है विन कर्मा पाया ना जाय पूरे भाग सत संगत लह सतगुर भेटै जिसे आय अन दिन नामे रत्या दुख बिखिया विचों जाय नानक शब्द मलावड़ा नामे नाम समाय श्री राग महला तीजा अपना भौ तिन पायुन जिन गुर का शब्द बीचार सत संगति सदा मिल रही सच्चे के गुण सार दुबधा मैल चुकाइयन हर राखिया उर तार।

शब्द सवारन हार रहाव सत्य शब्द मन मोहया प्रभ आपे लय मलाय अनदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाय ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुर बूझ ना पाय जिनको पूर्व लिखिया सतगुर पेटिया तिन आय बिन नावे सब डुमणी दूजे पाए खवाय तिस बिन घड़ी ना जीवंदी दुखी रहन विहाय परम पुलाना अंदोला फिर आवे जाय नदर करे

आनंद निरावह पिरे अपना सहजी सच समाई रहाउ शब्द रतियां सुहागणी सच्चा शब्द शिंगार हर वर पाइन घर अपने गुर कै हित प्यार सेज सुहावी हर रंग रवे भगत भरे भंडार सो प्रभ प्रीतम मन वसै जे सब सह दे आधार फिर सलाह ने अपना तिन कै हो सद बलिहारै जाऊं मन तन अर्पी सिर देई तिन कै लागा पाई जिन्नी एक पछाणिया दूजा भाऊ चुकाई गुरमुख नाम पछाणिया नानक सच समाई श्री राग महला तीजा हर जी सच्चा सच तू सब किस तेरै चीरै लख चौरासी तरस दे फिरे बिन गुर भेटे पीरै हर जीओ बख्शे बख्श लय सूख सदा शरीरै गुर प्रसादी सेव करी सच गहर गंभीर है मन मेरे नाम रते सुख होए गुरमति नाम सलाही है दूजा अवर ना कोए रहाव धर्म राय नो हुक्म है बह सच्चा धर्म बीचार दूजे भाई दुष्ट आत्मा ओ तेरी सरकार अध्यात्मी हर गुण तास मन जप है एक मरार तिनकी सेवा धर्म राही करे धन सवारन हार मन के विकार मन है तजै मन चूकै मोह अभमान आत्म राम पछाणिया सहजे नाम समान बिन सतगुर मुक्त ना पाईऐ मन मुख फिरै देवान शब्द ना चीनै कथनी बदनी करे विख्या माही समान।

सोई। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होई। नानक नाम संभाल तू, जित सेवे है सुख होई। श्री राग महला तीजा, जग हमें मैल दुख पाया। मल लागी दूजे पाए, मल हमें धोती किवें न उतरे। जे सौ तीर्थ नहाए, बहु

का निर्मल हुए, मनमुख हर हर कर थके, मैल ना सकी तो होए रहाव, मन मैल भगत ना होवे, नाम ना पाया जाए, मनमुख मैले मैले मोए, जासन पत गुआए, गुर प्रसादी मन वसे, मल हउ मैं जाए समाए, ज्यों अंधेरै दीपक बाली है, त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए, हम किया हम करहेंगे, हम मूर्ख गावार, करने वाला विसरिया, दूजे पाए प्यार, माया जेवड दुख नहीं, सब भव थके संसार, गुरमती सुख पाई है, सच नाम उरतार, जिसनो मिले सो मिले, हम तिस बलिहारे जाऊं, ए मन भगती रत्या, सच बाणी निज थाऊं, मन रत्ते जिहवा रत्ती, हर गुण सच्चे गाऊं, नानक नाम ना विसरै, सच्चे माहि समाऊं, श्री राग महला चौथा कर पहला, मैं मन तन बिरहो अत अगला, क्यों प्रीतम मिले घर आए, जा देखा प्रभ अपना, प्रभ देखिया दुख जाए, जाए पुछा तिन सजना, प्रभ कित बिद मिले मलाए, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोए, हम मूर्ख मुग्ध शरणागति, कर कृपा मेले हर सोए रहाउ, सतगुरु दाता हर नाम का, प्रभ आप मलावे सोए, सतगुर हर प्रभ बुझिया, गुर जेवड अवर ना कोए, हौ गुर सरनाई टह पवा, कर दया मेले प्रभ सोए, मन हठ किने ना पाया, कर अपाव थके सब कोए, सहस सियाणप कर रहे, मन पूरे रंग ना होए, कूड़ कपट किने ना पाया।

गुर मान है, गुर सतगुर करे सबास, हौ गुर सालाहे न रजू, मैं मेले हर प्रभ पास, सतगुरु नो सब को लोचदा, जेता जगत सब कोए, बिन भागा दर्शन ना थी, भाग हीन बहर होए, जो हर प्रभ पाणा सो थिया, तुर लिखिया ना मेटै कोए, आपे सतगुरे आप हर, आपे मेल मलाए, आप दया कर मेल सी, गुर सतगुर पीछे पाए, सब जग जीवन जग आप है, नानक जल जल है समाए, श्री राग महला चौथा, रस अमृत नाम रस अत भला, कित बिद मिले रस खाए, जाए पुछो हो सोहागनी, तुसा क्यों कर मिलिया प्रभ आए, ओए वे परवाह ना बोलनी, हो मल मल तुआ तिन पाए, पाई रे मिल सज्जन हर गुण सार, सज्जन सतगुर पुरख है, दुख कड्डे हो मैं मार रहाव, गुरमुखियां सुहागनी, तिन दया पई मन आए, सतगुर वचन रतन है, जो मन्ने सो हर रस खाए, से वड भागी वड जानी है, जिन हर रस खादा गुर पाए, एहो हर रस वण तिन सबत है, भाग हीन नहीं खाए, बिन सतगुर पल्ले ना पवे, मन मुख रहे बिललाए, ओए सतगुर आगे ना निमह, ओना अंतर क्रोध बलाए, हर हर हर रस आप है, आपे हर रस होए, आप दया कर देवसी, गुरमुख अमृत चोए, सब तन मन हरिया होया, नानक हर वस्या मन सोए, श्री राग महला चौथा, दिन स चढ़ै फिर आथवे, रैन सबाई जाए, आव कटै नर ना बुझै, नित मूसा लाज टुकाए, गुड़ मिठा माया पसरिया, मनमुख लग माखी पचै पचाए, पाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए, पुत कलत मोह बिख है, अंत बेली कोए ना होए रहाओ, गुरमत हर लिव उबरे, अलिपत रहे सरनाए, उन्नी चलन सदा निहालिया, हर खर्च लिया पत पाए, गुरमुख दरगाह मनी है, हर आप लए गल लाए, गुरमुखा नो पंथ प्रगटा, दर ठाक ना कोई पाए, हर नाम सलाहन नाम मन, नाम रहन लिव लाए, अनहद तुनी दर वज दे, दर सच्चै सोभा पाए, जिन्नी गुरमुख नाम सलाहया, तिन्ना सब को कह सबास, तिनकी संगत दे प्रभ, मैं जाचक की अरदास, नानक भाग वड्डे तिन्ना गुरमुखा, जिन अंतर नाम परगास, श्री राग महला पंजवां कर पहला, क्या तू रत्ता देख कै, पुत्र कलत्र शिंगार, रस भोग है खुशियां करह, मान है रंग अपार, बहुत करह परमाईसी, वरत है हुए अपार, करता चेतना आवई, मन मुख अंध गुवार, मेरे मन सुख दाता हर सोए, गुर प्रसादी पाई है, कर्म प्राप्त होए रहाओ, कपड़ भोग लपटाया, सोयना रूपा खाक, हैवर गैवर बहु रंगे, किए रथ अथाक, किस ही चेतना पावे, बिसरिया सब साक, सिरजनहार पुलाया, विण नावे ना पाक, लेंदा बद दुआए तू, माया करह एकत, जिसनो तू पतिया एंदा, सो सन तुझे अनित, अहंकार करह अहंकारिया, व्याप

सुख साध संग पाया लिखिया लेख तिन पुरख बधाते दुख सहसा मिट गया रहाव जेते थान थनंतरा तेते भाव आया तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परया हुक्म चलाए निसंग होए वरतै अपरया सब को बस गत कर लयोन बिन नावे खाक रलिया कोट ते तीस सेवका सिद्ध साधक दर खरिया ग्रंबारी वड साहबी सब नानक सुपन थिया श्री राग महला पंजवा पलके उठ पपोलिए बिन बुझे मुग्ध अजान सो प्रभ चित ना आयु छूटैगी बेबान सतगुर सेती चित लाए सदा सदा रंग मान प्राणी तू आया लाह लैन लगा कित कफकड़ी सब मुकदी चली रैन रहाउ कुदम करे पस पंखी।

तां गुर का बचन कमाहे रहाउ हरि नाही नह डडोरी पक्की वडण हार लै लै दात पहुंतिया लावे कर तैयार जाहु आ हुकम किरसान दा तां लुण मिणिया खेतार पहला पैर तंदै गया दूजे भर सोया तीजे झाक चखाया चौथे भोर भया कद ही चेतना आयो जिन जियो पिंड दिया साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान जिसते सो जी मन पई मिलिया पुरख सुजान नानक डिठा सदा नाल हरे अंतर जामी जान श्री राग महला पंजवा सबे गल्ला विसरन इको विसर ना जाओ धंधा सब जलाए कै गुर नाम दिया सच सुआओ आसा सबे लाए कै इक आयास कमाओ जिन्नी सतगुर सेविया तिन

जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द काथ गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया हो है माथ मेरे मन एक स्यों चित लाए एक सबिन सब तंद है सब मिथ्या मोह माए रहाओ लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए जिस को पूर्व लिखिया तिन सतगुर चरण गहे सफल मूरत सफला घड़ी जित सच्चे नाल प्यार दुख संताप ना लगई जिस हर का नाम आधार बाहां पकड़ गुर काढ़िया सोई उतरिया पार थान सुहावा पवित है जिथे संत सभा ढोई तिस ही नो मिलै जिन पूरा गुरु लब्बा नानक बद्दा करता हां जिथे मिर्त ना जन्म जरा श्री राग महला पंजवां सोई त्याई जीअड़े सिर शाहां पातशाह तिस ही की कर आसमान जिसका सब सुविसाह सब सियाण।

ध्याए तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ तिसकी सरनी परमना जिस जेवड अवर ना कोई जिस सिमरत सुख होए घना दुख दर्द ना मूले होए सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए साध संगत होए निर्मला टटिया जम की फास सुख दाता पह पंजनो तिस आग्या कर अरदास मेहर करे जिस मेहरवान ता कारज आवै रास बहुतो बहुत बखानी है ऊचो ऊचा थाओ वरना चिहना बाहरा कीमत कह ना सकाओ नानक को प्रभ मया कर सच देव हो अपना नाओ श्री राग महला पंजवा नाम त्याए सो सुखी किस मुख उजल होए पूरे गुरते पाईए प्रगट सबनी लोए साध संगत कै घर वसै एको सच्चा सोए मेरे मन हर हर नाम त्याए नाम

माया का रंग सब फिक्का, जातु बिनस निदान, जां कै हृदय हर वसै सो पूरा प्रदान। साधु की हो रेणुका, अपना आप त्याग, अपार सियाणप सगल छड, गुर की चरणी लाग। तिसह प्राप्त रतन होए, जिस मस्तक होए भाग, तिसह प्राप्त भाई हो, जिस देवे प्रभ आप। सतगुर की सेवा सो करे, जिस बिनसै हम मैं ताप, नानक कौ गुर भेटिया, बिनसे सगल संताप। श्री राग महला पंजवा, एक पछाणु जी का, इको रखन हार, एक सका मन आसरा, इको प्राण आधार।

गुरपूरा आराध नित एकस की लिव लाग रहाओ इको भाई मित एक इको मात पिता एकस की मन टेक है जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनोह न विसरै जिन सब किस वस कीता कर इको बाहर इको थान थलंतर आप जी जंत सब जिन किए आठ पहर तिस जाप एकस सेती रत्या ना हुवी सोग संताप पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नाही कोई जियो पिंड सब तिसका जो तिस भावै सो होए गुरपूरै पूरा भया जप नानक सच्चा सोए श्री राग महला पंजवां जिन्ना सतगुर स्यों चित लाया से पूरे प्रधान जिनको आप दयाल हुए किन उपजै मन ज्ञान जिनको मस्तक लिखिया किन पाया हर नाम मन मेरे एको नाम त्याए सर्व सुखा सुख उपजह दरगाह पैंदा जाए रहाउ जन्म मरण का पाउ गया पाउ भगत गोपाल साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल जन्म मरण की मल कटी है गुरदर्शन देख निहाल थान थनंतर रव रहया

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान तिनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान जिन्नी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान श्री राग महला पंजवा मिल सतगुर सब दुख गया हर सुख वसिया मन आय अंतर ज्योत परगासिया एक सस्यो निवलाय मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखिया पाय गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचै नाय मेरे मन गुर शब्दी सुख होय गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोई रहाउ मन कीआं इच्छां पूरियां पाया नाम निदान अंतर जामी सदा संग करने हार पछान गुर प्रसादी मुख उजला जप नाम दान इशनान काम क्रोध लोभ बिनसिया तजिया सब अभमान पाया लाहा।

रह गया, आप हुआ मेहरवान, सच महल घर पाया, गुर का शब्द पछान, भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार, हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार, आठ पहर गुणसार दी रत्ती रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागरु नानक सद बलिहार, श्री राग महला पंजवा पूरा सतगुरु जी मिले, पाईए शब्द निदान कर कृपा प्रभ अपनी, जपिए अमृत नाम जन्म मरण दुख काटिए, लागे सहज ध्यान मेरे मन प्रभ सरनाई पाए, हर बिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए, रहाओ कीमत कहन ना जाइए, सागर गुणी अथाह वडभागी मिल संगति, सच्चा शब्द वसाह कर सेवा सुख सागर है, सिर शाह पातशाह चरण कमल का आसरा, दूजा नाही थाव मैं धर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाव, नीमाणिया प्रभ मान तू तेरे संग समाव, हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद, जी प्राण तन धन रखे कर कृपा राखी जिंद, नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद, श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच सियो, मरै न आवे जाय ना वे छोड़िया विछड़ै, सब मह रहिया समाय, दीन दर्द दुख भंजना सेवक कै सत पाए, अचरज रूप निरंजनो गुर मेलाया माय, भाई रे मीत करहो प्रभ सोय, माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोय, रहाउ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार, सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार, बालक बिरद ना जानिए निश्चल तिस दरबार, जो मंगिए सोई पाईए निधारा आधार, जिस पेखत किल विखहि रह मन तन होवे शांत, एक मन एक त्याई है मन की लाहे प्रांत, गुण निदान नवतन सदा पूर्ण जाकी दात, सदा सदा आराधी है दिन विसरहो नहीं रात, जिनको पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद, तन मन तन अर्पी सबो सगल वारिय एह जिंद, देखै सुनै हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद, किरत कणा नु पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद, श्री राग महला पंजवा मन तन धन जिन प्रभ दिया, रखिया सहज सवार सर्ब कला कर थापिया, अंतर ज्योत अपार, सदा सदा प्रभ सिमरिए अंतर रख उरतार, मेरे मन हर बिन अवर ना कोय, प्रभ सरनाई सदा रहो दुख ना व्यापे कोय, रहाव रतन पदार्थ मानका सोयना रूपा खाक, मात पिता सुत बंध पा कूड़े सबे साक, गिन कीता तिसह ना जानी मन मुख पास न पाक, अंतर बाहर रव रहया तिसनो जाने दूर, तृष्णा लागी रच रहया अंतर हों मैं कूर, भगती नाम विहूनिया आवह वंजह पूर, राख लिहो प्रभ करनहार जी जंत कर दया, बिन प्रभ कोई ना रखनहार महा बिकट जम भया, नानक नाम ना विसरौ कर अपनी हर मया, श्री राग महला पंजवा मेरा तन अर धन मेरा राज रूप मैं देस, सुत दारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेस, हर नाम हृदय ना वसई कार्य कितै ना लेख, मेरे मन हर हर नाम त्याए
कर संगत नित साध की गुरचरणी चित लाए रहाउ। नाम निदान त्याई है मस्तक होवै भाग, कार्ज सब सुवारी है गुर की चरणी लाग। होमै रोग भ्रम कटी है ना आवै ना जाग, कर संगत तू साध की अठ सठ तीर्थ नाओ। जियो प्राण मन तन हरी साचा इहो सुआउ। एथे मिलह वडाइया दरगह पावह थाउ, करे कराए आप प्रभ सब किस तिस ही हाथ। मारिया पे जीवाल दा अंतर बाहर साथ, नानक प्रभ शरणागती सर्ब कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा शरण पए प्रभ आपने गुरु हुआ कृपाल। सतगुर कै अपदेसे बिनसे सर्ब जंजाल, अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल। मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक निमख ना मनो वसार। रहाव गुण गोविंद नित गावी है अवगुण कटन हार। बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्थार, सहजे सिफती रत्या भवजल उतरे पार। तीर्थ वर्त लख संजमा पाइय साधु।

दास बिन सच्चे सब कूड़ है, अंते हुए बनास रहाउ साहिब मेरा निर्मला, तिस बिन रहन ना जाय, मेरे मन तन भुख अति अगली, कोई आन मलावे माई, चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर ना जाय, तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार, सतगुर दाता नाम का पूरा जिस पंडार, सदा सदा सलाही है अंत न पारावार, परवदगार सलाही है जिस दे चलत अनेक, सदा सदा आराधी है एहा मत वसेख, मन तन मिठा तिस लगे जिस मस्तक नानक लेख, श्री राग महला पंजवां संत जन।

हर जन हर लिव उदरी नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवां कर दूजा गोयल आया गोयली क्या

संता धारै पाप सगली जाहि हौ तिनकै बलिहार नै जे गुर की पैरी पाहि साध संगत मन वसै साच हर का नाऊ से वडभागी नानका जिन्ना मन एहो पाओ श्री राग महला पंजवा संच हर धन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार जिन तो साज सवारिया हर सिमर होए उदार जप मन नाम एक अपार प्राण मन तन जिनह दिया हृदय का आधार रहाओ काम क्रोध अहंकार माते व्याप्या संसार पौ संत सरणी लाग चरणी मिटै दुख अंधार सत संतोख दया कमावे ए करनी सार आप छोड़ सब हुए रेणा जिस दे प्रभ निरंकार जो दिसै सो सगल तू है पसरिया पासार कहो नानक गुर परम काटिया सगल

मान अपमान मंदे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन एहो कीर्त करला, कथन कहन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला। गाते अवगत।

हर हर नाम संभाल, साधु संगत मन वसे पूर्ण हो ऐ काल रहाओ। गुर समरथ अपार गुर, वडभागी दर्शन होए, गुर अगोचर निर्मला, गुर जीवड अवर ना कोई, गुर करता गुर करनहार, गुरमुख सच्ची सोए, गुर ते बाहर किश नहीं, गुर कीता लोड़े सो होए, गुर तीरथ गुर पार जात, गुर मनसा पूर

आर गुरु उचाय अगम अपार गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार जितड़े फल मन बांछी है तितड़े सत गुर पास

आस श्री राग महला पंजवां संत जन हो सुन पाई हो छूटन साच है नाई गुर के चरण सरेवणी तीरथ हर का नाम हागै दरगह मनिय है।

आई, नानक गुर शरणागति मरै न आवै जाय। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला, घर पहला अष्टपदियां। आख आख मन वावना ज्यों ज्यों जापै वाय, जिसनों वाहे सुनाई।

तड़ा लिखना जाने कोई जे सौ सायर मेलिए तिल ना पुजावे रोई कीमत किने ना पाईया सब सुन सुन आख सोई पीर पै कामर फालक साधक सुहदे और शहीद सेख मसायक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद बरकत तिन को अगली पढ़दे रहन दरूद पुछ ना साजे पुछ ना काही

तेरे जुगह जुगह पंडार महला पहला सबे कमत महलियां सगलियां करह श्रृंगार गणत गणावने।

दीपक शब्द विगासिया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार सुभा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार बिन पेर पुरख ना जानी साचे गुर कहित प्यार निस अंधारी सुतिए क्यों पिर बिन रैन विहाय अंक जलो तन जालियो मन धन जल बल जाय जा धन कंत ना राविया ता बिरथा जो बन जाय सेजै कंत मेह लड़ी सूती बूझ ना पाए हौ सुती पिर जागना किस को पूछो जाय सतगुर मेली पै वसी नानक प्रेम सखाय श्री राग महला पहला आपे गुण आपे कथै आपे सुन विचार आपे रतन परख तू आपे मोल अपार साचो मान महत तू आपे देवन हार हर जियो तू करता करतार ज्यो पावे त्यो राख तू हर नाम मिले आचार रहाओ आपे हीरा निर्मला आपे रंग मजीत आपे मोती उजलो आपे भगत।

शब्द पछाणिए साच रते गुरवाक तित तन मैल ना लगई सच कर जिस ओताक नदर करे सच पाई है।

जाली बद कहात गुर राखे से उबरे होर फाथे चो गै साथ बिन नावे चुन सुटी है कोई ना संगी साथ सचो सच्चा आखी सच्चे सच्चा थान जिन्नी सच्चा मन्या इन मन सच ध्यान मन मुख सूचे जानिए है गुरमुख जिन्ना ज्ञान सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मलाए साजन मिले सुख पाया जमदूत मोए बिख खाए ना मैं अंदर हौ वसा नाओ वसै मन आए बाज गुरु गोबार है बिन शब्द बूझ ना पाए गुरमति परगास हुई।

रहाउ। गिण राशि वापारिया तके कुंडा चार, मूल ना बुझै अपना वस्त रही घर बार। गिण वखर दुख अगला कूड़ मुठी कुड़ियार, लाहा एहन सनौतना परखे रतन विचार। वस्त लह कर अपने चल कारज सार, बण जारिया स्यों बणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार। संतां संगत पाई है।

प्रगत सब जानिए जे मन राखै ठाई ऐसा सतगुर जे मिले ता सहजे लय मलाई कस कस वट्टी लाइए परखे हित चित लाए खोटे ठोर ना पाईनी खरे खजाने पाए आस अंदेसा।

शब्द रत्ते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार नाम सलाहन सद सदा हर राख है उरतार सो क्यों मनहु विसारी है सब जिया का आधार शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दूजी वार शब्द ही ते पाईए हर नामे लगे प्यार बिन शब्द जग भूला फिरे मर जन्मे वारु वार सब सलाह है आपको बड़ो बडेरी होए गुर बिन आप ना चीनी है कहे सुने क्या होए नानक शब्द पछाण।

सुख से जड़ी बिन पिर बाद सिंगार दुख घणो दुहागणी ना कर सेज पतार मन रे राम जपो हो सुख होए बिन गुर प्रेम ना पाईए शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाईए हर वर सहज सिंगार सच माने पिर से जड़ी गूड़ा हित प्यार गुरमुख जान सियाणी है गुर मेली गुण चार सच मिनुह वर कामणी फिर मोही रंग लाए मन तन साच विगसिया कीमत कहण ना जाए हर वार घर सुहागणी निर्मल साच नाए मन मह मनुआ जी मरे ता फिर रावै नार इकतता गैराल मिले गाल मोतियन का हार संत सभा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार खिन मह उपजे खिन खपै

आवे जाए पवाई है पय किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मेटी है लिखिया लेखर जाए बिन हर नाम ना छुट्टी है।

जल बलो लोभ जलो अभमान नानक शब्द विचारी है पाइय गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसा।

अंतर राव रहिया बख्शे भगत पंडार रहाव। रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यो अधिको त्यो सुख घणो मन तन शांत शरीर। बिन जल घड़ी ना जीवई प्रब जाने अब पीर। रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चात्रक में सर पर थल हरियावली एक बूंद ना पवई के। कर्म मिले सो पाई है।

खवे दुध कौ खपण ना दे आपे मेल वशुन्या सच वडे आई दे रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मन मुख सो जी ना पवे गुरमुख सदा हजूर मन

गुरमत हुए ता पाई सच मिले सुख होय सच्चा नेहो ना टुटई जे सतगुर भेट सोय ज्ञान पदार्थ पाई त्रिभवन सोजी होय निर्मल नाम ना विसर।

माया परम भुलाई परम भुली दोहागणी ना फिर अंक समाय रहाओ भूली फिरै दसंतरी भूली ग्रह तज जाय भूली डूंगर थल चढ़ै पर मैं मन डोलाय तुरहु विछुनी क्यों मिलै गर्भ मुठी बिललाय बिछड़िया गुरमेल सी हर अस नाम प्यार साच सहज सोभा घणी हर गुण नाम आधार ज्यों पावै त्यों रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार अखर पढ़ पढ़ भुलिए भेखी बहुत अभमान तीरथ नाता क्या करे मन मह मैल गुमान गुर बिन किन समझाई है।

चाकरी मन निर्मल सुख होए गुर का शब्द मन वसिया हूं मैं बिचों खोए नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए कर्म मिले ता पाइए आप ना लया जाए गुर की चरनी लग रहो बिचों आप गवाए सच्चे से तीरतिया सच्चो पल्ले पाए पुल्लने अंदर सब को अपुल गुरु करतार गुरमत मन समझाया लागात सह प्यार नानक साच ना विसरे मेले शब्द अपार श्री राग महला पहला तृष्णा माया मोहनी सुत बंदत कर नार तन जोबन जग ठगिया

मैं तुझ बिन अवर न पावई, तू पावह सुख होए रहाउ। नाम सलाही रंग सिउ, गुर कै शब्द संतोख। जो दिसै सो चलसी,

तड़ी गुर बिन बूझ ना होए नाम वडाई जे मिले सच रपै पत होए जो तुद पावे से भले खोटा खरा ना कोई गुर सरनाई छुट्टी है मनमुख खोटी रास अष्ट धात पातशाह की घड़िए शब्द विगास आपे परखे पारखू पवे खजाने रास तेरी कीमत ना पवे सब डिठी ठोक बजाए कहने हाथ ना लगई सच टिके पत पाए गुरमत तू सलाहना होर कीमत कहन ना जाए जित तन नाम ना पावे तित तन

मन मुख जानै आपणी धियां पूत संजोग नारी देख भगासी नाले हरख सो सोग गुरमुख शब्द रंगावले अहनस हर रस भोग चित चलै वित जावणु साकत डोल डोलाय बाहर ढूंढ विगुचियै धर्म है वस्त सुथाय मनमुख होमै करमुसी गुरमुख पल्लै पाए साकत निर्गुण आरिया अपना मूल पछाण रखत बिंद का इहो तनु अग्नि पास पिराण पवन कै वस देवरी मस्तक सच निशान बहुता जीवन मंगी है मुआ ना लोड़ै कोई सुख जीवन तिस आखी है जिस गुरमुख वस्या सोय नाम विहूणे क्या गणी जिस हर गुर दर्शना होय ज्यों सुपने निस भुली है जब लग निंदरा होय इं सरपन कै वस जियड़ा अंतर हों मैं दोय गुरमत होए विचारी है सुपना इहो जग लोय अगन मरै जल पाई है जो बारक दूध माय बिन जल कमल सोना थी है बिन जल मीन मराय नानक गुरमुख हर रास

पूरा सतगुर रस मिलै गुर तारे हर नाउ रहाउ चलना चलना जे करी जाना चलन हार जो आया सो चल सी अमर सो गुर करतार पी सच्चा सालाहना सच्चा थान प्यार दर कर महला सोहने पक्के कोट हजार हस्ती घोड़े पाखरे लश्कर लख अपार किस ही नाल ना चलिया खप खप मुए असार सोयना रूपा।

अष्टपदियां। श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदियां। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, गुरमुख कृपा करे भगत की जय। बिन गुर भगत ना होए, आपे आप मलाए बूझे, ता निर्मल होवे।

बिन सतगुरु को मग ना जाने अंधे ठौर ना काई। हर सुख दाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई। पेई अड़ै जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया। अन दिन भगत करह दिन राती हमै मोच काया। जिस स्यों राता तैसो हुए सच्चे सच समाया। आपे नदर करे पाहु लाए गुर शब्दी बीचार। सतगुर सेवे सहज उपजे हमै तृष्णा मार। हर गुण दाता सद मन वसै सच रखिया उरतार। प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाई। नाम निधान हर मन वसै हमै दुख सब जाई। सतगुर शब्द सुनाया हम सद बलिहारै जाऊं। अपने मन चित कह कहाई बिन गुरे आप ना जाई। हर जियो भगत वशल सुख दाता कर कृपा मन वसाई। नानक सोभा सो

रहाउ। बिन सतगुर प्रतीत न आवी, नाम न लागु पाउ, सुपनह सुख न पावी, दुख मह सवै समाय। जे हर हर कीचै बहुत लोचियै, किरत न मेटिया जाय। हर का भाणा भगती मन्या, से भगत पए दर थाय। गुर शब्द दड़ावै रंग स्यों, बिन कृपा लया ना जाय। जे सौ अमृत नीरियै, पी बिख फल लागै ताय। से जन सच्चे निर्मले, जिन सतगुर नाल प्यार। सतगुर का भाणा कमावंदे, बिख होमै तज विकार। मन हठ कितै उपाय ना छूटियै, सिमरत शास्त्र सो दोह जाय। मिल संगत साधु उभरे, गुर का शब्द कमाए। हर का नाम

गुर कै पाणै जे चलहै ता अन दिन राचहै हर नाय रहाउ। पंखी बिरख सुहावड़े उडहै चहो दिस जाहि, जेता उडहै दुख घणे नित दाजहै तै बिल लाहि। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहि, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचै सहज सुपाई। साखा तीन नवारिया एक शब्द लिव लाई, अमृत फल हर एक है आपे देखवाई। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना शाओ, तिन्ना पास ना बैसिए ओना घर ना ग्राओ। कटिय तै नित जालिय ओना शब्द ना नाओ, हुक्मे कर्म कमावणे पय किरत फराओ। हुक्मे दर्शन देखना जह भी जह तह जाओ, हुक्मे हर हर मन वसै हुक्मे सच समाओ। हुक्म ना जान है बपड़े भूले फिर है गवार, मन हट कर्म कमा।

होई श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम त्याई है मनमुख बूझ ना पाई गुरमुख सदा मुख उजले हर वस्या मन आई सहजे ही सुख पाई है।

सदा सुहाग सुहागनी जे चलह सतगुर पाए सदा फिर नेह चल पाईए ना ओ मरे ना जाए शब्द मिली ना विछुड़े फिर कै अंक समाए हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए पाठ पढ़े ना बूझई भेखी भरम पलाए गुरमती हर सदा पाया रसना हर रस समाए माया मोह चकाया गुरमती सहज सुपाई बिन शब्द जग दुखिया फिर मन मुखा नु गई खाए शब्दे नाम त्याई है शब्दे सच समाए माया भूले सिद्ध फिर है समाध ना लगे सुपाई तीने लो व्यापत है अधिक रही लपटाए बिन गुर मुक्त ना पाई है ना दुगदा माया जाए माया किसनो आखिए क्या माया कर्म कमाए दुख सुख एहो जियो बद है हम कर्म कमाए बिन शब्द परम ना चुकई ना विचो हम जाए बिन प्रीति भगत ना हो गई बिन शब्द थाए ना पाए शब्दे हम मारिए माया का भ्रम जाए नाम पदार्थ पाईए गुरमुख सहज सुपाए बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए भगत वचल हर मन वसया सहज मिलिया प्रभ सोए नानक शब्दे हर सालाही है कर्म प्राप्त होए श्री राग महला तीजा माया मोह मेरे प्रभ कीना आपे परम पलाए मनमुख कर्म करह नहीं बूझह बिरथा जन्म गवाए गुरबाणी इस जग मह चानन कर्म वसह मन आए मन रे नाम जप हो सुख होए गुर पूरा सालाही है सहज मिले प्रभ सोई रहाओ परम गया पहु भागिया हर चरणी चित लाई गुरमुख शब्द कमाई है।

तय पाई। दैत पुत कर्म धर्म किस संजम ना पड़े, दूजा भाव ना जाने। सतगुरु भेटे निर्मल हुआ, अन दिन नाम बखाने। एको पढ़े एको ना बूझे, दूजा अवर ना जाने। खट दर्शन जोगी सन्यासी, बिन गुर परम पलाए,

पंडित पढ़ पढ़ वाद बखान है बिन गुर परम पलाई लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाई जां नाउ चेतै तां गत पाई जां सतगुर मेल मलाई सत संगत मह नाम हर उपजै जां सतगुर मिलै सुपाई मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाई सत बलिहारी गुर अपने बिटो जे हर सीती चित लाई सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर सीती रंग राता प्रभ निकट बसै सबना घट अंतर।

बिन गुर पाया न जाय, पल पल पंडित जोत की थके, भेखी परम पलाय, गुर भेटे सहज पाया, अपनी कृपा करे रजाय। भाई रे गुर बिन सहज न होए, शब्द ही ते सहज उपजे, हर पाया सच सोए रहाओ, सहजे गाव्या थाई पवे, बिन सहजे कथनी बाद, सहजे ही भगत उपजे, सहज प्यार बैराग, सहजे ही ते सुख शांत होए, बिन सहजे जीवन बाद, सहज सलाही सदा सदा, सहज समाद लगाई, सहजे ही गुण उचरै।

त्रै गुण भरम भलाए, पढ़िया गुणिया क्या कथिया, जा मुंडो हो कुथा जाए। चौथे पद में सहज है,

सहज मलाइसी शब्द मलावा हुई, बिन सहज सब अंध है माया मोह गुबार। सहज ही सूझी पई सच्चा शब्द अपार, आपे बख्श मलायन पूरे गुर करतार। सहजे अधिष्ट पछाणिय निरप

शब्द जीवत मरे गुरमुख पव जल तरना वड़े भाग नाउ पाईए गुरमत शब्द सुहाई आपे मन वसिया प्रभु करता सहजे रहिया समाई इक ना मनमुख शब्द ना पावे बंधन बंद पवाया।

समाते गुरमुख अमृत बाणी बोलह सब आत्म राम पछाणी एको सेवन एक अराध है गुरमुख अकथ कहानी सच्चा साहिब सेवी है गुरमुख वसै मन आए सदा रंग राते सच स्यों।

शब्द समाय। श्री राग महला तीजा, सतगुर सेवे मन निर्मला, भय पवित शरीर, मन आनंद सदा सुख पाया, भेटिया गहर गंभीर, सच्ची संगत बैसना।

पति उपजय सच्चे सच्चा नाम। जिन्नी हम मैं मार पछाणिया हम तिन बलिहार जाऊं। मन मुख सच ना जाननी।

ब्रह्म तन मन शीतल होए, काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोभ प्यार, चारे किलविख उन अग किए, हुआ असुर संगार, पोथी गीत कवित किश कदे न करन धरिया, चित आवै उस पार ब्रह्म ता निमख सिमरत तरिया, शास्त सिमरत बेद चार, मोखागर बिचरे तपे तपी सर जोगिया, तीरथ गमन करे खट कर्मा ते दुगणे, पूजा करता नाए रंग ना लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए, राज मिलख सिकदारिया रस भोगण बिसथार, बाग सुहावे सोहणे चलै हुक्म अफार, रंग तमाशे बहु विधि चाए लग रहिया, चेतना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया, बहुत तनाड अचारवंत सोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत पाइया साजन संग परीत, लश्कर तरकस बंद बंद जियो जियो सगली कीत, चेतना आयो पार ब्रह्म ता खड़ रसातल दीत, काया रोग ना छिदर किस ना किस काड़ा सोग, मृत ना आवी चित तिस अहनस भोगै भोग, सब किश कीतो ने अपना जिए ना संक धरिया, चेतना आयो पार ब्रह्म जम कंकर वस परिया, कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवै साधु संग, ज्यों ज्यों ओह वधाई है त्यों त्यों हर स्यों रंग, दुहा सनिया का खसम आप अवर ना दूजा थाउ, सतगुर तुठै पाया नानक सच्चा नाउ, तेरी राग महला पंजवां घर पंजवां, जानो नहीं पावै कवन बातां, मन खोज मार्ग रहाउ, ध्यानी ध्यान लावे है ज्ञानी ज्ञान कमावे है, प्रभ की नहीं जाता भगवती रहत जुगता, जोगी कहत मुक्ता तपसी तपहराता, मोनी मोन तारी सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता भगत नवे प्रकारा, पंडित वेद पुकारा गृहस्थी गृहस्थ तरमाता, एक शब्दी बहुरूप अवतूता कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता निरहार वर्ती अपरसा, एक लूक ना देवह दरसा एक मन ही ज्ञाता, काटना कि नहीं कहाया सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता सगल उकत उपावा, त्यागी सरन पावा नानक गुर चरण पराता।

किया। तू भोगी अंदर भोगिया, तेरा अंत न पाया, सुर्ग मच पयाल जियो, हौवारी हौवार ने कुर्बान तेरे नाम नु रहाओ। तुद संसार पाया, सिरे सिर तंदे लाया, वेख है कीता अपना, कर कुदरत पासा ढाल जियो, प्रगट पहार है जापदा, सब नावै नो प्रतापदा, सतगुर बाज ना पायो, सब मोही माया जाल जियो, सतगुर कहो बल जाई है, जित मिले परम गत पाई है, सुर नार मुन जन लोच दे, सो सतगुर दिया बुझाए जियो, सत संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम बखानी है, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो, एहो जगत परम पलाया, आपहु तुद खवाया, प्रताप लगा दोहागणी, भाग जिन्ना के नाए जियो, दोहागणी क्या निशानिया, खसम हो खुतिया फिर है निमानिया, मैले वेस तिन्ना कामणी, दुखी रहन विहाए जियो, सुहागणी क्या कर्म कमाया, पूर्व लिखिया फल पाया, नदर करे कह अपनी, आपे लए मलाए जियो, हुक्म जिन्ना नु मनाया, तिन अंतर शब्द वसाया, सहिया से सुहागणी, जिन सह नाल प्यार जियो, जिन्ना पाणे का रस आया, तिन विचों परम चुकाया, नानक सतगुर ऐसा जानिए, जो सब सह लए मलाए जियो, सतगुर मिले फल पाया, जिन विचों अहंकरण चुकाया, दुर्मत का दुख कटिया, भाग बैठा मस्तक आए जियो, अमृत तेरी बाणिया, तेरिया भगतां हृदय समाणिया, सुख सेवा अंदर रखे है, अपनी नदर करह निस्तार जियो, सतगुर मिलिया जानिए, जित मिलिया नाम बखानी है, सतगुर बाज ना पायो, सब थकी कर्म कमाए जियो, हौ सतगुर बिटोह कुमाया, जिन भ्रम भुला मार्ग पाया, नदर करे जे अपनी, आपे लए रलाए जियो, तू सबना माहे समाया, तिन करतै आप लुकाया, नानक गुरमुख प्रगट होया, जां को जोत धरी करतार जियो, आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, अपने सेवक की पैज रखिया, दोए कर मस्तक धार जियो, सब

मेरा गुण अवगन ना बिचारिया तब अपना बिरद संवारिया कंठ लाए कह रखियोन लगे ना तत्ती वाऊ जियो मैं मन तन प्रभु ते आया जिए इच्छे अड़ा फल पाया साहा पातशाह सिर कसम तू जप नानक जीवै नाऊ जियो तुदे आपे आप उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सचो सच वर्तदा जिस भावै तिसै बुझाई जियो गुर प्रसादी पाया तिथै माया मोह चकाया कृपा करके अपनी आपे लए समाए जियो गोपी नै गोवालिया तुदे आपे गोहे उठा लिया हुक्मी भांडे साजिया तू आपे भन सवार जियो जिन सतगुर स्यों चित लाया तिनी दूजा पाहु चुकाया निर्मल जोत तिन प्राणिया ओए चले जन्म सवार जियो तेरिया सदा सदा चंगे आईया मैं रात देह बड़े आईया अन मंगिया दान देवना कहो नानक सच संभाल जियो श्री राग महला पंजवा पै पाए मनाई सोए जियो सतगुर पुरख मलाया तिस जे वड़े अवन ना कोए जियो रहाओ गुसाई मेहंडा इठड़ा अम अबे थामु मिठड़ा पैन भाई सब सजना तुद जेहा ना ही कोए जियो तेरा हुक्मे सामने आया मैं सत का हल जो आया नाऊ बीजन लगा आस कर हर बोहल बख्श जमाए जियो हाँ गुर मिले एक पछाण दा दुईया कागल चेतना जान दा हर इक तै कारे लायोन ज्यो भावे तिवें नभाए जियो तुसी भोगे हो पुंचो हो भाई हो गुर दी बाण कवाए पैनाइयो हों हो आ माहर पिंड दा बाने आंदे पांज शरीक जियो हों आया सामे ते हंडिया पांज किरसान मुजेरे मेहंदिया कन कोई कड ना हंगई नानक बुट्टा को गगराऊं जियो हों वारी घुमा जामदा इक साहा तुद त्याए दा उजड़ थेहो वसायो हों तुद विटहो कुर्बान जियो हर इत्थै नित त्याहिंदा मन चिंदी सो फल पाएंदा सबे काज सवारियन लाहियन मन की भुख जियो मैं छड़िया सबो तंदड़ा गुसाई सेवी सचड़ा नौ निद नाम निदान हर मैं पल्ले बद्दा शिक जियो मैं सुखी हूँ सुख पाया गुरे अंतर शब्द वसाया सतगुर पुरख विखालिया मस्तक तर कै हाथ जियो मैं बद्दी सच धर्म साल है गुरसिखा लहंदा पाल कै पैर धुआं पखा फेरदा तिस निव निव लगा पाए जियो सुन गल्ला गुर पह आया नाम दान इशनान दड़ाया सब मुक्त हुआ सै सारड़ा नानक सच्ची बेड़ी चाड़ जियो सब श्रिष्ट सेवे दिन रात जियो दे कान सुनहो अरदास जियो फूक वजाए सब डिठिया तुसे आपे नयन छडाए जियो हुण हुक्म होआ मेहरवान दा पै कोई न किसै रियान दा सब सुखाली बुठिया एहो होआ हले मीराज जियो चिम चिम अमृत वरसदा बुलाया बोली खसम दा बहुमान।

बणजारिया मित्रा हर पाया उदर मंजार हर त्यावै हर उचरै बणजारिया मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपे आराधी विच अग्नि हर जप जीवया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीवया जिसकी वस्त तिस चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख बीचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिए कृपा तार दूजे पहरे रहण कै बण जारिया मित्रा मन लागा दूजे भाई मेरा मेरा कर पालिए बण जारिया मित्रा लै मात पिता गल लाई लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाई जो देवे तिसे ना जाने मूड़ा दित्ते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे सो करे विचार हर त्यावे मन लिव लाए कहो नानक दूजे पहरे प्राणी तिस काल ना कबहू खाए तीजे पहरे रहन कै बण जारिया मित्रा मन लगा आल जंजाल धन चितवै धन संचवै बण जारिया मित्रा हर नामा हर ना संभाल हर नामा हर हर कदे ना संभालै जे होवै अंत सखाई एहो धन संपै माया झूठी अंत छोड़ चलिया पछताई जिसनो कृपा करे गुरमेले सो हर हर नाम संभाल कहो नानक तीजे पहरे प्राणी जे जाए मिले हर नाल चौथे पहरे रहण कै बण जारिया मित्रा हर चलण वेला आंदी कर सेवहु पूरा सतगुरु बण जारिया मित्रा सब चली रहण विहांदी हर सेवहु खिन खिन ढिल मूल ना करहु जित अस्थिर जुग जुग होवो हर सीती सदमान हुरलिया जन्म मरण दुख खोवो गुर सतगुरु स्वामी भेद ना जानो जित मिल हर भगत सुखांदी कहो नानक प्राणी चौथे पहरे सफलियो रहण भगतां दी श्री राग महला पंजवा पहले पहरे रहण कै बण जारिया मित्रा धर पाए ता उदरे माहे दसी मासी मानस किया बण जारिया मित्रा कर मोहलत कर्म कमाहे मोहलत कर दीनी कर्म कमाणे जैसा लिखत तुर पाया मात पिता भाई सुत बनता तिन भीतर प्रभु संजोया कर्म सकर्म कराए आपे इस जनते वस किश नाही कहो नानक प्राणी पहले पहरे धर पाए ता उदरे माहे दूजे पहरे रहण कै बण जारिया मित्रा पर जवानी लहरी दे बुरा भला ना पछाणी बण जारिया मित्रा मन मत्ता अहमेव बुरा भला ना पछाणे प्राणी आगे पंथ करारा पूरा सतगुर कबहू ना सेवया सिर ठाडी जम जंदारा धर्म राय जब पकरस बबरे तब क्या जवाब करे कहो नानक दूजे।

साध संग भ्रम जाले मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे मन प्यारिया जी ओ मित्रा दिख सागर संसारी चरण कमल कर बोहित करते सहसा दुख न व्यापे गुरपूरा भेटै वडभागी आठ पहर प्रभ जापे आदि जुगादी सेवक स्वामी भगता नाम आधारी नानक सिख दे मन प्रीतम बिनहार झूठ पसारे मन प्यारिया जीओ मित्रा हर लदे खेप सवली मन प्यारिया जीओ मित्रा हर दर निश्चल मल्ली हर दर सेवे अलख अपेवे निश्चल आसन पाया तह जन्म ना मरन ना आवन जाना संसार दुख मटाया चित्रगुप्त का कागद फारिया जमदूता कछु ना चली नानक सिख दे मन प्रीतम हर लगे खेप सवली मन प्यारिया जीओ मित्रा कर संतां संग निवासो मन प्यारिया जीओ मित्रा हर नाम जपत परगासो सिमर स्वामी सुख गामी इच्छ सगली पुनिया पुरबे कमाए श्री रंग पाए हर मिले श्री वचुनिया अंतर बाहर सरबत रविया मन उपजिया विश्वासो नानक सिख दे मन प्रीतम कर संतां संग निवासो मन प्यारिया जीओ मित्रा हर प्रेम भगत मन लीना मन प्यारिया जीओ मित्रा हर जल मेल जीवे मीना हर पी आगाने अमृत बाने सर्व सुखा मन उठे श्री तर पाए मंगल गाए इच पुन्नी सतगुर तुठे लड़ लीने लाए नौ निद पाए नाओ सर्बस ठाकुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना श्री राग के शंत महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद दखना अठ मजाहु महापिरी पस्ते क्यों दीदार संत सरनाई।

स्वामी तार अनग्रह मन तन अंक समावे दखना सोहंदड़ो हबठाए कोय न दिसै दूजड़ो खुलड़े कपाट नानक सतगुर भेक ते संत तेरे बचन अनूप अपार संतन आधार बाणी बिचारी जियो सिमरत सास ग्रास

दे मन वांछत फल देत है स्वामी जी की बिरथा सारे नाथ के नाते सब कै साथे जप जुए जन्म ना हारी है नानक की बेनंती प्रभ पह कृपा कर पव जल तारी है दखना धूड़ी मजन साधखे साई थिए कृपाल लदे हब्बे थोकड़े नानक हर तन माल संत सुंदर स्वामी ताम भगत है विश्राम आसा लग जीव ते जियो मन तने गलतान सिमरत प्रभ नाम हर अमृत पीवते जियो अमृत हर पीवते सदा थिर थीवते बिकै बन फीका जानिया भये कृपाल गोपाल प्रभ मेरे साध संगत निदमानिया सर्व सो सुख आनंद कन प्यारे हर रतन मन अंतर सीवते एक

आप मोहियो जस नानक आप सुनियो हे संत प्रेम ठगौरी पाए रिझाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोहया जियो हर कंठ लग सोहया दोख सब जोहया भगत लखियण कर वस पए मन सर्ब सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बहुड़ ना माया होया कर गहलीने नानक प्रभ प्यारी संसार सागर नहीं पोहया दखना साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना भाग मथाए से नानक हर रंग मान।

कर गहलीने हर जसो दीने जोन ना तावे नह मरी। सतगुर दयाल कृपाल भेट तहरे काम क्रोध लोभ मारिया। कथन ना जाए अकथ स्वामी सदकै जाए नानक वारिया। श्री राग महला चौथा वणजारा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद। हर हर उत्तम नाम है जिन सिरिया सब कोई जियो। हर जी सबे प्रतपालदा घट घट रमैया सोए। सो हर सदा त्याई है तिस बिन अवर ना कोए। जो मोहे माया चित लाइंदे से छोड़ चले दुख रोए। जन नानक नाम त्याया हर अंत सखाई होए। मैं हर बिन अवर ना कोए। हर गुर सरनाई पाईऐ बणजारिया मित्रा वड भाग प्राप्त होए। रहाओ संत जना मिन पाईया हर किने न पाया नाव। विच हौं मैं कर्म कमावंदे ज्यों वेसवा पुत निनाव। पिता जात तां होई है गुर तुठा करे पसाओ। वड भागी गुर पाया हर एलस लगा पाओ। जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीरत कर्म कमाओ। मन हर हर लगा चाओ गुर पूरे नाम दरड़ाया। हर मिलिया हर प्रभ नाओ। रहाओ जब लग जोबन सास है तब लग नाम त्याए। चल दिया नाल हर चल सी हर अंते लए छाए। हों बलिहारी तिनको जिन हर मन उठायाए। जिन्नी हर हर नाम ना चेत्यो से अंत गए पछताए। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम त्याए। मन हर हर प्रीत लगाए वड भागी गुर पाया। गुर शब्दी पार लंघाए। रहाओ हर आपे आप उपाएंदा हर आपे देवैली। हर आपे परम भलाएंदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है से विरले के ई के। हौ बलिहारी तिनको जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया मन हर हर गुठड़ाए। मन हर हर जपन करे हर गुर सरनाई भज पौ जिंदू। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ। घट घट रमैया मन वसै क्यों पाईऐ कित भत। गुरपूरा सतगुर भेटीऐ हर आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नामै ते गत मत। मैं हर हर नाम वसाहु है हर नामे ही जत पत। जन नानक नाम त्याया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्याहु हो हर प्रभ सत। गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिनको पूर्व लिखिया से आए मेरे गुर पास। सेवक पाए वणजारिया मित्रा गुर हर हर नाम परगास। तन तन वणज वापारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले ते आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिन पाया जिन्ना आप तुठा गुणतास। हर त्यावहु सास ग्रास मन प्रीत लगी तिन्ना गुरमुखा। हर नाम जिन्ना रह रास रहाओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री राग की वार महला चौथा सलोका नाल। सलोक महला तीजा रागां विच श्री राग है जे सच तरे प्यार। सदा हर सच मन वसै निहचल मत अपार। रतन अमोलक पाया गुर का शब्द बीचार। जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा शरीर अकार। नानक सच्चै सच गुर सेवै सदा सच वापार। महला तीजा होर बिरहा सब तात है जब लग साहिब प्रीत ना होए। एहो मन माया मोहया वेखण सुनण ना होए। सह देखे बिन प्रीत ना उपजै अंधा क्या करे। नानक जिन अखी लीतियां
सोई सच्चा देह पौड़ी। हर इको करता एक इको दीवान हर, हर इक सैदा है अमर इको हर चित धर। हर तिस बिन कोई नाही डर भ्रम पहु दूर कर, हर तिसै नु सलाहे जे तुद रखै बाहर कर। हर जिसनो होए दयाल सो हर जप पहु बिकम तर। सलोक महला पहला दाती साहिब संदियां, क्या चलै तिस नाल इक जा गंदे नाल हन, इक ना सुतिया दे उठाल। महला पहला सिदक सबूरी साधका सबर तो सा मलायका, दीदार पूरे पायसा थाओ नाही खायका। पौड़ी सब आपे तुदे उपाय कै आप कारे लाई, तू आपे वेख विगसदा अपनी वड्याई। हर तुदो बाहर किछ नाही तू सच्चा साई, तू आपे आप वरतदा सबनी ही थाई। हर तसै त्याव संत जन हो जो लय छुड़ाई। सलोक महला पहला फक्कड़ जाति फक्कड़ नाओ, सबना जिया इका छाओ। आप हो जे को भला कहाए नानक तां पर जापै, जां पत लिखै पाए। महला दूजा जिस प्यारे सियोने हो किसे आगे मर चलिया, त्रिग जीवन संसार तां कै पाछै जीवना। पौड़ी तुदे आपे धरती साजी है, चंद सूरज दोए दीवे दस चार हट तुद साजिया। वाह पार करीवे इकना नो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे। तिन जम काल ना व्यापई जिन सच अमृत पीवे, वे आप छुट्टे परवार स्यों तिन पिछे सब जगत छुटीवे। सलोक महला पहला कुदरत करके बसिया सोए, वक्त भी चारे सो बंदा होए। कुदरत है कीमत नहीं पाए, जां कीमत पाए ता कही ना जाए। सरै सरयत करह विचार बिन बूझे कैसे पावे पार। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद, जिहे तिर देखा तेहे तिर मौजूद। महला तीजा गुर सभा एव ना पाईऐ, ना नेड़ै ना दूर। नानक सतगुर ता मिलै जां मन रहै हदूर। पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा, नवखंड चार वेद दस अष्ट पुराणा। हर सबना विच तू वरतदा हर सबना पाणा, सब तुझै त्यावहै जी जंत हर सार पाणा। जो गुरमुख हर अराध दे तिन्हों कुर्बाणा, तू आपे आप वरतदा कर चोज वडाणा। सलोक महला तीजा कलोम साजनी क्या सदाई है, हृदय ही लिख ले हो सदा साहिब कै रंग रहै। कबहू ना टूट स्नेहो कलोम साजनी जाए सी, लिखिया पी नाले जाए नानक सह प्रीत ना जाए सी। जो तुर छोड़ी सच्चै पाए। महला तीजा नदरी आम दा नाल ना चलई, वेखो को व्यो पाए। सतगुर सच दरड़ाया सच रहो लिवलाए, नानक शब्दी सच है कर्मी पल्ले पाए। पौड़ी हर अंदर बाहर एक तू, तू जान है भेत जो कीचै।

कर्म परापत होए, सत्य रत्ते गुर शब्द सियो, तिन सच्चे सदा लिव होए, नानक जिसनो मेले ना विछड़ै, सहज समावै सोई महला तीजा, सो भगौती जो भगवंत जानै, गुर प्रसादी आप पछाणै, धावत राखै इकत घर आणै, जीवत मरै हर नाम बखाणै, ऐसा भगौती उत्तम होए, नानक सच समावै सोए महला तीजा, अंतर कपट भगौती कहाए, पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए, पर निंदा करे अंतर मल लाए, बाहर मल धोवै मन की झूठ ना जाए, सत संगत सिंह बाद रचाए, अनबिन दुखिया दूजै भाए रचाए, हर नाम ना चेतै बहु कर्म कमाए, पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए, नानक बिन सतगुर सेवे मोख ना पाए, पौड़ी सतगुर जिनी त्याया से कर ना सुवाही, सतगुर जिनी त्याया से तृप्त अगाही, सतगुर जिनी त्याया तिन जम डर नाही, जिन को हुआ कृपाल हर से सत

पूरी कै पुलड़ गंदे डुम पयास पौड़ी। सो ऐसा हर नाम त्याई मन मेरे जो सबना उपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिया मन मेरे जो अंति अवसर लय छुड़ाए। सो ऐसा हर नाम जपिया मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भूख गवाए। सो गुरमुख नाम जपिया वडभागी तिन निंदक दुष्ट सब पैरी पाए। नानक नाम अराध सबना ते वड्डा सब नावे अग्गे आन निवाए। सलोक महला तीजा वेस करे कुरूप कलखणी मन फूटे कूड़ियार। फिर कै भाणे ना चल हुक्म करे गवार। गुर कै भाणे जो चल सब दुख निवारण हार। लिखिया मेट ना सकी है जो तुर लिखिया करतार। मन तन सौंपे कंत को शब्दे धरे प्यार। बिन नावे किने ना पाया देखो हृदय विचार। नानक सास वाले उस लखणी जे रावी सिरजनहार। महला तीजा माया मोह गवार है तिसदा ना दिसे उरवार ना पार। मनमुख अज्ञानी महा दुख पाए दे डुबे हर नाम विसार। भलके उठ बहु कर्म कमावे दूजे भाए प्यार। सतगुर सेवह अपना भव जल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावह सच नाम उरतार पौड़ी। हर जल थल महियल भरपूर दूजा नाहि कोय। हर आप बह करे नियाओ कूड़ियार सब मार कढोए। सचियारा दे वडियाई हर धर्म नियाओ की ओए। सब हर की करहो उस्तत जिन गरीब अना

नहीं जानत सुत बड़ा होत है इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध कटत है मोर मोर कर अधिक लाड धर पेखत ही जमराओ हसे ऐसा तैं जग भरम लाया कैसे बूझे जब मोहया है माया रहाओ कहत कबीर छोड़ बिखिया रस इत संगत निश्चो मरना रमैया जपो प्राणी अनत जीवन बाणी इन बिद भव सागर तरना जां तिस भावै तां लागै भाव परम भलावा विचों जाए उपजै सहज ज्ञान मत जागै गुर प्रसाद अंतर लिव लागै इत संगत नाही मरना हुक्म पछाण तां खसमै मिलना रहाओ दूजा श्री राग त्रिलोचन का माया मोह मन आग लड़ा प्राणी जरा मरण भौ विसर गया कटंब देख बिकसह कमला ज्यो पर कर जो है कपट नरा दूड़ा आयो हे जमह तना तिन आग लड़ै मैं रहन ना जाई कोई कोई साजन आई कह मिल मेरे बीठला लै बाहड़ी वलाई मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाओ अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी संसार सागर पै अमर भया माया मूठा चेत सनाही जन्म गवायो आलसिया विखम घोर पंथ चालना प्राणी राव सस तह ना प्रवेशं माया मोह तब बिसर गया जां तजियले संसारं आज मेरा मन प्रगट भया है देखियले धर्म राहु तह कर दल करन महाबली।

बदत त्रिलोचन रामैया श्री राग भगत कबीर जियो का अचरज एक सुनोरे पंडिया अब किस कहन न जाई सुर नार गण गंधर्व जिन मोहे त्रिभुवन में खुली लाई राजा राम अनहद किंगुरी बाजे जाकी दिष्ट नाद लिव लागे रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया कनक कलस एक पाया तिसमह तार चोय अत निर्मल रसमह रसन चुआया एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजिया तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा ऐसे ज्ञान प्रगटिया प्रखोतम कहो कबीर रंग राता और दुनी सब परम पलानी मन राम रसायन माता श्री राग

रे नारे गर्भ कुंडल जब आसत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मादना एहनस एक अज्ञान सो नागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनहु बिसारिया फिर पछताव हैगा मूड़िया तू कमल कमत भ्रम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरै अनरादा रहाओ बाल बनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोहे प्यापै रस मिसमेद अमृत बिख चाखी तो पंच प्रगट संतापै जप तप संयम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना अरादिया उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया तरुण तेज पर त्रै मुख जो है सर अपसर ना पछाणिया उन्मत काम महाबिख भूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख इहो मन गर्भिया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तूले तो भग मुख जन्म बगोया कुंडर केस कुसम ते तौले सपत पाताल की बाणी लोचन श्रम है बुद्ध बल लाठी ता काम पव समाधानी ता ते बिखै भई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछै पछताना निकुटी दे देख तुन उपजै मान करत नहीं बूझै लालच करै जीवन पद कारण लोचन कशु ना सूझै थाका तेज उड्या मन पंखी तारे आंगन ना सुखाई देनी कह सुनो रे भगत हो मरण मुक्त किन पाई श्री राग तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनक कटक

तुम जो नायक आचहु अंतर जामी प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी शरीर अराध मोको विचार देहु रवदास सम दल समझावै को राग माज चौपदे कर पहला महला चौथा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद हर हर नाम मैं हर मन पाया वड भागी हर नाम ते आया गुरपूरै हर नाम सिद्ध पाई को विरला गुरमत चलै जियो मैं हर हर खर्च लिया बन पलै मेरा प्राण सखाई सदा नाल चलै गुरपूरै हर नाम दड़ाया हर निश्चल हर तन पलै जियो हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया कोई आन मलावै मेरे प्राण जीवाया हौ रह ना सका बिन देखे प्रीतमा मैं नीर वहे वह चलै जियो सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई हौ रह ना सका बिन देखे मेरी माई हर जियो कृपा करहो गुरमेल हो जन नानक हर तन पलै जियो माज महला चौथा मद सूदन मेरे मन तन प्राणा हौ हर बिन दूजा अवर ना जाना कोई सज्जन संत मिलै बड़ भागी मैं हर प्रभ प्यारा दसै जियो हौ मन तन खोजी पाल पलाई क्यों प्यारा प्रीतम मिलै मेरी माई मिल सत संगत खोज दसाई।

करहो प्रित पाला। मेरा मात पिता गुर सत गुर पूरा, गुर जल मेल कमल विगसै जियो। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवै, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावै। हर हर दया करहु गुर मेलो, जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। माज महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सत संगत हर गुण गाए, जग पौजल

मित्र सखा सो प्रीतम भाई, मैं दसे हर नर हरिय जियो, मेरी बेदन हर गुर पूरा जाने, हो रह ना सका बिन नाम वखाणी, मैं औखद मंत्र दीजै गुरपूरे, मैं हर हर नाम उधरिय जियो, हम चातरक दीन सतगुर सरनाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई, हर जल निद हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिय जियो, माज महला चौथा हर जन संत मिलो मेरे भाई, मेरा हर प्रभ दसो मैं भुख लगाई, मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन भीजै जियो, मिल सतसंग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन पाणी, हर हर अमृत हर मन भावै, मिल सतगुर अमृत पीजै जियो, वडभागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटा खावै, बिन भागा सतसंग ना लभै, बिन संगत मैल परिजै जियो, मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पीजै जियो, माज महला चौथा हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग राता हर रस पी आया, हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पौंदा जियो, आवहु संत मैं गल में लाइए, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाइए, हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौंदा जियो, वड भागी हर संत मलाया, गुरपुरे हर रस मुख पाया, भागहीन सतगुर नहीं पाया, मन मुख गर्भ जूनी नित पौंदा जियो, आप दयाल दया प्रभ धारी, मल हूं मैं बिखिया सब निवारी, नानक हट पटन विच काया, हर लैंदे गुरमुख सौदा जियो, माज महला चौथा हौ गुण गोविंद हर नाम त्याई, मिल संगत मन नाम वसाई, हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी, मिल सतगुर हर रस की चै जियो, तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता, जाए पुछा जन हर की बाता, पाम मनुआ मल मल धुआ, मिल हर जन हर रस पीचै जियो, सतगुर दातै नाम दिड़ाया, वडभागी गुर दर्शन पाया, अमृत रस सच अमृत बोली, गुरपुरै अमृत लीचै जियो, हर सत संगत सत पुरख मिलाइयै, मिल सत संगत हर नाम त्याइयै, नानक हर कथा सुनी मुख बोली,

रहाओ। एक घड़ी ना मिलते ता कल युग होता, हुण कद मिली है प्रिय तुद भगवंता। मोहे रहन ना विहावे नींद ना आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। हौ कोली जियो कोल कमाई, तिस सच्चे गुर दरबारे जियो रहाओ। भाग होवा गुर संत मलाया, प्रभ अवनासी घर मह पाया। सेव करी पल चसा न बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। हौ कोली जियो कोल कमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ। राग माज महला पंजवा, सारुत सहावी जित तुद संभाली। सो काम सुहेला जो तेरी काली, सो रिदा सुहेला जित रिदै तू उठा। सबना के दातारा जियो, तू सांझा साहिब बाप हमारा। नौ निद तेरे अखुट भंडारा, जिस तू देहे सो तृप्त अघावे। सोई भगत तुम्हारा जियो, सब को आस्ते तेरी बैठा। घट घट अंतर तू है बुठा, सबे सांझी वाल सदाइन। तू किसे न दिस है बाहरा जियो, तू आपे गुरमुख मुक्त कराए। तू आपे मन मुख जन्म पुआए, नानक दास तेरा बलिहार है। सब तेरा खेल दसाहरा जियो। माज महला पंजवा, अनहद वाजे सहज सुहेला। शब्द आनंद करे सद केला, सहज गुफा महतारी लाई। आसन ऊच सवारिया जियो, फिर किर अपने ग्रह में आया। जो लड़िंदा सोई पाया, तृप्त अगाई रहया है संत हो। गुर अनुपो पुरख दिखारिया जियो, आपे राज ने आपे लोगा। आप निर्वाणी आपे भोगा, आपे तख्त बह सच न्याई। सब चूकी कूक पकारिया जियो, जेहा डिठा मैं तेहो कहया। तिस रस आया जिन भेद लहया।

सा कुलवंती सा सबरहाई जो पिरकै रंग सवारी जियो महमा तिसकी कहन ना जाए जो पिर मेल लई अंग लाए फिर सुहाग वर अगम अगोचर जन नानक प्रेम साधारी जियो माज महला पंजवा खोजत खोजत दर्शन चाहे भांत भांत बन बन अवगाहे निर्गुण सरगुण हर हर मेरा कोई है जियो आन मलावै जियो खट सासत विचरत मुख ज्ञाना पूजा तिलक तीरथ इशनाना निवली कर्म आसन चौरासी इन मह शांत न आवै जियो अनक बरख किए जप तापा गमन किया धरती परमाता एक खिन हृदय शांत न आवै जोगी बहुड़ बहुड़ उठता वै जियो कर कृपा मुहि साध मलाया मन तन सीतल धीरज पाया प्रभ अविनाशी बसिया कट पीतर हर मंगल नानक गावै जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म अपरंपर देवा अगम गोचर अलख अपेवा दीन दयाल गोपाल गोविंदा हर त्यावो हो गुरमुख गाती जियो गुरमुख मधसूदन निस्तारी गुरमुख संगी कृष्ण मरारी दयाल दमोदर गुरमुख पाईए होत किते न भांती जियो निरहारी केशव निरवैरा कोट जना जाके पूजह पैरा गुरमुख हृदय जा कै हर हर सोई भगत एकांती जियो अमोग दर्शन बेअंत अपारा वड समरथ सदा दातारा गुरमुख नाम जपिए तित तरिए गत नानक बिरली जाती जियो माज महला पंजवा कहया करना दिता लेना गरीबा अनाथा तेरा माना सब किश तू है मेरे प्यारे तेरी कुदरत कौ बल जाई जियो पाणे उजड़ पाणे राहा पाणे हर गुण गुरमुख गावा पाणे परम पवै बहुजूनी सब किस तिसै रजाई जियो ना को मूरख ना को सियाणा वरतै सब किस तेरा पाणा अगम अगोचर बेअंत अथाहा तेरी कीमत कहन ना जाई जियो खाक संतन की देहो प्यारे आए पया हर तेरे द्वारे दर्शन पेखत मन आगावे नानक मिलन सुपाई जियो माज महला पंजवा दुख तदे जा विसर जावे भुख व्यापै बहु विद तावे सिमरत नाम सदा सुहेला जिस देवै दीन दयाला जियो सतगुर मेरा वड समरथा जिये संभाली ता सब दुख लत्ता चिंता रोग गई हो पीड़ा आप करे प्रतपाला जियो बारक वांगी हो सब किश मंगा दें दे तोट नाही प्रभ रंगा पैरी पै पै बहुत मनाई दीन दयाल गोपाला जियो हौ बलिहारी सतगुर पूरे जिन बंधन काटे सगले मेरे हृदय नाम दे निर्मल किए नानक रंग रसाला जियो माज महला पंजवा लाल गोपाल दयाल रंगीले गहर गंभीर बेअंत गोविंदे ऊच अथाह बेअंत स्वामी सिमर सिमर हौ जीवा जियो दुख भंजन निदान अमोले निरपो निरवैर अथाह अतोले अकाल मूर्त अजूनी संभो मन सिमरत ठंडा थीवा जियो सदा संगी हर रंग गोपाला ऊच नीच करे प्रतपाला नाम रसायन मन तृपतायन गुरमुख अमृत पीवा जियो दुख सुख प्यारे तुद त्याई एह समत गुरु ते पाई नानक की धर तू है ठाकुर हर रंग पार परीवा जियो माज महला पंजवा धन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया सफल दर्शन नेत्र पेखत तरिया धन मूरत चसे पल घड़िया

मन निर्मल हुआ, हर मार्ग चलत भ्रम सगला खोया, नाम निधान सतगुरु सुनाया, मिट गए सगले रोगा जीव, अंतर बाहर तेरी बाणी, तुद आप कथी तै आप बखानी, गुर कहया सब एको एको, अवर ना कोई होएगा जीव, अमृत रस हर गुर ते पिया, हर पहनन नाम भोजन किया, नाम रंग नाम चोज तमाशे, नाउ नानक कीने भोगा जीव, माज महला पंजवा, सगल संतन पह वस्त एक मांगो, करो बिनंती मान त्यागो, वार वार जाई लख वरिया, देहो संतन की तू राजीओ, तुम दाते तुम पुरख बधाते,

मन कुर्बानी जिन तू जाता जो तुद मन पानी तिन कै संग सदा सुख पाया हर रस नानक तृप्त अगाना जीयो माज महला।

आपे तुद संभालिया दियो। तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुपत प्रगट प्रभ आपे। नानक दास सदा गुण गावे, एक पोरी नदर निहालिया दियो। माज महला।

हर जस लेखा से चरण सहावे जो हर मार्ग चले हौ बाल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारी साध संग किन माही उधारी किल बिख काट हुआ मन निर्मल

दयाला सगले तृप्त अगाए जियो वाण त्रेण त्रे पवन की तुन हरिया कर्णहार खिन पीतर करिया गुरमुख नानक तिसह आराधी मन की आस पुजाए जियो माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप तू मेरा

मेरा माणा, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, जी जंत सब तुद उपाय, जित जित पाणा तित तित लाए, सब किस कीता तेरा हुवै, नाही किस असाड़ा जियो, नाम त्याए महा सुख पाया।

माज महला पंजवा जी प्राण प्रभ मन है अधारा भगत जीव है गुण गाए अपारा गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो मनसा तार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मटावे हास मनोरथ पूरन होवे टेटत गुर दरसाया जियो अगम अगोचर किस मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी खुदी मिटी चूका पुलावा गुरमन ही मह प्रगटाया जियो आनंद मंगल कल्याण निदाना सुख सहज हर नाम बखाना कोई कृपाल स्वामी अपना नाव नानक कर मह आया जियो माज महला पंजवा सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी तू प्रीतम ठाकुर अत पारी तुमरे करतब तुम ही जानो तुमरी ओट गोपाला जियो गुण गावत मन हरिया होवे कथा सुनत मल सगली खोवे।

सुख पाया, ठांड पाई प्रभ आपी जीव, सब किश बहुतो बहुत उपाया, कर कृपा प्रभ सगल रजाया, दात करहु मेरे दातारा, जी जंत सब त्रापे जीव, सच्चा साहेब सच्ची नाई, गुर प्रसाद तिस सदा त्याई।

खिन पीतर हर हर हर गुण जापे जीओ माज महला पंजवां। आओ साजन संत मीत प्यारे मिल गावह गुण अगम अपारी गावत सुनत सबे ही मुक्ते सो त्याय जिन हम किए जीओ जन्म जन्म के।

कर कृपा प्रभ भक्ति लाभ हो सच नानक अमृत पिए जियो माज महला पंजवां पये कृपाल गोविंद गुसाई मेघ वरसै सबनी थाई दीन दयाल सदा कृपाला ठांड पाई करतारी जियो अपने जी जंत प्रित पारी ज्यों बारक माता संभारी दुख भंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारी जियो जल थल पूर रहया मेहरवाना सद बलिहार जाइए कुर्बाना रैन दिन सतिस सदा त्याई जे खिन मह सगल उदारी जियो राख लिए सगले प्रभ आपे उतर गए सब सोग संतापे नाम जपत मन तन हरियावल प्रभ नानक नदर निहारे जियो माज महला पंजवां जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अस्थल सोइन चौबारे जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा से ही नगर उजाड़ी जियो हर रुखी रोटी खाए संभाले हर अंतर बाहर नदर निहाले खाए खाए करे बद फैली जान विसु की वाड़ी जियो संता से तीरंग न लाए साकत संग विकर्म कमाए दलाब दे खोई अज्ञानी जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो तेरी शरण मेरे दीन दयाला सुख सागर मेरे गुरु गोपाला।

नानक दान किया दुख भंजन रत्ते रंग रसाली जियो माज महला पंजवा मन तन तेरा तन पी तेरा तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा जियो पिंड सब

सगल मनोरथ पूरन होए, कदे ना होए दुखाला जीओ। माज महला पंजवा, पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया, जल थल महियल दह दिस वरसाया। शांत भई बुझी सब तृष्णा, आनंद भया सब ठाई जीओ। सुख दाता दुख भंजन हारा,

तुद त्याई जीओ। माज महला पंजवा, सभी सुख पए प्रभ तुठे, गुरपूरे के चरण मन उठे, सहज समाद लगी लिव्य अंतर, सोरा

गुर के चरण बसे मन माही, अंगीकार किया तिन करतै, दुख का डेरा टाहया जीओ, मन तन बसया सच्चा सोई, बिखड़ा थान ना दिसै कोई, दूत दुश्मन सब सज्जन हुए, एको स्वामी आहया जीओ, जो किछ करे सो आपे आपै, बुद्ध सियाणप किछु ना जापै, अपनिया संतां नु आप सहाई, प्रभ भरम भलावा लाहया जीओ, चरण कमल जन का आधारू, आठ पहर राम नाम वपारू, सहज आनंद गावह गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्ब समाहया जीओ, माज महला पंजवां, सो सच मंदर जित सच त्याई है, सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है, सा धरत सुहावी जित वस है हर जन,

जन तेरे सच शब्द मन माणो जीओ सच सलाहन वड भागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है।

जय सागर कटिया जम की फासा जीव चार पदार्थ हर की सेवा पार जात जप अलख अपेवा काम क्रोध किल बिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जीव पूर्ण भाग भये जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वसया जिस अंतर परवान गिरस्त उदासा जीव माज महला पंजवा सिमरत नाम हृदय सुख पाया कर कृपा भगती प्रगटाया संत संग मिल हर हर जपिया।

ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर प्रभ सबना गल्ला जोगा जीओ छिन मह थाप उथापन हारा आप एकंती आप पसारा लेप नहीं जग जीवन दाते दर्शन दिते लहन विजोगा जीओ अंचल लाए सब शिष्ट तराई अपना नाओ आप जपाई गुर बोहित पाया कृपाते ना

ऐसा भली जाए। सोई सियाणा सो पतवंता, हुक्म लग है जिस मीठा जियो। सब परोई इकत धागै, जिस लाए लए सो चरणी लागै। ऊंद कवल जिस होए परगासा, तिन सर्व निरंजन।

अन दिन नित जागी बाहां पकड़ तिस स्वामी मेले जिसकै मस्तक लहना चरण कमल भगता मन उठे बिन परमेश्वर सगले मुठे संत जना की धूड़ नित बांच है नाम सच्चे का गहना उठत बैठत हर हर गाइए जिस सिमरत वार निहचल पाइए नानक कहो प्रभु होए दयाला तेरा कीता सहना राग माज अष्टपदियां।

माया मोह चुकावणिया हौ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारणिया गुरमती परगास हुआ जी अन दिन हर गुण गावणिया रहाउ तन मन खोजे ता नाउ पाई धावत राखै ठाक रहाई गुर की बाणी अन दिन गावै सहजे भगत करावणिया इस काया अंदर वस्त असंखा गुरमुख साच मिलै ता वेखा नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द बजावणिया सच्चा साहेब सच्ची नाई गुर प्रसादी मन वसाई आन दिन सदा रह रंग राता दर सच्चै सो जी पावणिया पाप पुन की सार ना जानी दूजै लागी भरम पुलाणी।

दिन जागी दर सच्चै सोभा पावणिया रहाउ। आप सुने तै आपे वेखै जिसनो नदर करे सोई जन लेखै। आपे लाए लए सो लागै गुरमुख सच कमावणिया। जिस आप भुलाए सो किथै हथ पाई पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाई। जिन सतगुर मिलिया से वड भागी पूरै कर्म मिलावणिया। ते यड़ै तन अन दिन सुती कंतव सारी अवगण मुत्ती।

जन निर्मल दर सत्य नाम सुहावणिया देखा मांगे तां किन दीऐ सुख नाही पुन दूऐ तीऐ आपे बख्श लए प्रभ साचा आपे बख्श मलावणिया आप करे चै आप कराए पूरे गुर कह शब्द मलाई नानक नाम मिले वडियाई आपे मेल मलावणिया माज महला तीजा इको आप फिरै परछन्ना गुरमुख वेखा ता एहो मन भिन्ना।

सदा नाली गुर प्रसादी को नदर निहाली मेरा प्रभ अत ऊचो ऊचा कर कृपा आप मनावणिया माया मोहे एहो जग सुत्ता।

तुद सलाहे नारजा कबहू सच्चे नावै की भुख लावणिया एको वेखा अवर ना बिया गुर प्रसादी अमृत पिया।

आज महला तीजा आपे रंगे सहज सुपाई गुर कै शब्द हर रंग चढ़ाई मन फन रत्ता रसना रंग चलूली पै पाए रंग चढ़ावणिया हौ वारी जी ओ वारी निरपो मन वसावणिया गुर किरपा ते हर निरपो त्याया बिख पौ जल शब्द तरावणिया रहाव मन मुख मुग्ध करह चतुराई नाता धूता थाई ना पाई जिहा आया तेहा जासी कर अवगण पछो तावणिया मन मुख अंधे किशु ना सूजै मरन लखाए आए नहीं बूजै मन मुख कर्म करे नहीं पाई बिन नामै जन्म गवावणिया सच करनी शब्द है सार पूरा गुर पाईऐ मुख द्वार अन दिन बाणी शब्द सुनाई सच राते रंग रंगावणिया रसना हर रस राती।

गुरमुखो वैसो इकस सिंह निवलाई, दूजा भरम गुर शब्द जलाई, काया अंदर वणज करे वापारा, नाम निधान सच पावणिया, गुरमुख करनी हर कीरत सार, गुरमुख पाए मोख द्वार, आनंद रंग रत्ता गुण गावे, अंदर महल बुलावणिया, सतगुर दाता मिले मिलाया, पूरे भाग मन शब्द वसाया, नानक नाम मिले वडियाई, हर सच्चे के गुण गावणिया, माज महला तीजा, आप मंझाए ता सब किछ पाई, गुर शब्दी सच्ची लिवलाई, सच वणंजह सच संग्रह है।

शब्द बड़ियाई देवणिया रहाऊ वेला वखत सब सुहाया जित सच्चा मेरे मन पाया सच्चे सेवै सच वड़ियाई गुर किरपा ते सच पावणिया पाओ भोजन।

निर्मल बाणी शब्द वखाण है, सच्चे सेव सदा सुख पायन, नौ निद नाम मन वसावणिया, सुथान सुहाया जो हर मन पाया, सत संगत बह हर गुण गाया, अन दिन हर सलाह है साचा, निर्मल नाद बजावणिया, मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूड़ कमावण दुख लागै पारा, परमे भूले फिरन दिन राती, मर जन्म है जन्म गवावणिया, सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर कै शब्द आधारा, नानक नाम मिलै वडियाई, दुख सुख सम कर जाननिया, माज महला तीजा, तेरिया खाणी तेरिया बाणी, बिन नावै सब परम पलाणी, गुर

रहाउ। पंडित पढ़ है साधना पाव है, दूजे भाई माया मन परमाव है, माया मोहे सब शुद्ध गुआई।

विद माया, पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, चौथे पद की सार न पावणिया, आपे रंगे रंग चढ़ाए, से जल राते गुर शब्द रंगाए, हर रंग चढ़िया अत अपारा, हर रस रस गुण गावणिया, गुरमुख रिद सिद्ध सच संयम सोई, गुरमुख

गुरमुख जात पत सब आपी, नानक गुरमुख नाम त्याई, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा, उत्पत पर लो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर ओ पत होवे। गुरमुख वरतै सब आपे सच्चा, गुरमुख अपाए समावणिया। हौ वारी जीओ वारी, गुरपूरा मन वसावणिया। गुर ते शांत भगत करे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया। रहाउ गुरमुख धरती गुरमुख पाणी, गुरमुख पवन बै संतरे।

मूड़ा बाहर पाली, मनमुख अंधे फिरहै बेताली। जिथे वत होवे तिथों कोई ना पावे, मनमुख परम भुलावणे।

हर पाई, हर सियो सहज समावनिया रहाउ। पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया। बिन भागा गुर पाई है नाही, शब्द है मेल मनावनिया। गुरमुख अलिप्त रहै संसारी, गुर कै तकिया नाम आधारी। गुरमुख जोर करे क्या तिसनो, आपे खप दुख पावनिया। मनमुख अंधे सुध ना काई, आत्म घाती है जगत कसाई। निंदा कर कर बहु पा

उठावै, बिन मजूरी भार पहुंचावणिया। इहो जग वाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली। जेही वासना पाए ते ही वरतै, वासु वास जनावणिया। मनमुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अघम अपारा। दुखिए नित फिर है बिललांदी, बिन गुर शांत ना।

पावणिया। किस बाजहूं सच्ची मैं होर न कोई, जिस लाई लय सो निर्मल होई। नानक नाम वसै घट अंतर, जिस देवै सो पावणिया। माज महला।

अमृत नाम तिया वणिया रहाउ। अमृत बोले सदा मुख वैणी, अमृत वेखै परखै सदा लैणी। अमृत कथा कह सदा दिन राती, अवरां आख सुनावणिया। अमृत रंग रत्ता लिवलाई, अमृत गुर परस

अमृत शब्द अमृत हर बाणी सतगुर सेवै हृदय समाणी नानक अमृत नाम सदा सुख दाता पी अमृत सब भुख लह जावणिया माज महला तीजा अमृत वरसै सहज सुपाई गुरमुख विरला कोई जन पाई अमृत पी सदा तृप्तासी कर कृपा तृष्णा बुझावे।

बनाई। नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समावणिया। सबना उपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कनेरी। तुझते बाहर किस ना होवे, गुरमुख सोजी पावणिया। गुरमुख तत है बिचारा,

अंतर मन मोह है। अमृत मन तन बाणी रत्ता अमृत सहज सुनावणिया मनमुख भूला दूजै भाए खुआए।

सच राती सच सुन आख बखानिया मनसा मार सच समाणी इन मन जीती सब आवन जानी सतगुर सेवे सदा मन निश्चल निज घर वासा पावणिया गुर कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह शब्द जलाया सचो सचा वेख सलाही गुर शब्दी सच पावणिया जो सच राते तिन सची लिब लागी हर नाम संभाल है से वड भागी सच्चा शब्द आप मलाई सत संगत सच गुण गावणिया लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे ओह अगम अगोचर शब्द सुध होवे अन दिन सच शब्द सलाही होर कोई ना कीमत पावणिया पढ़ पढ़ था के शांत ना आई तृष्णा जाले सुध ना काई बिख विहाज है बिख मोह प्यासी कूड़ बोल बिख खावणिया गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाणा नानक एको नाम वरतै मन अंतर गुर प्रसादी पावणिया माज महला तीजा वर्ण रूप वरतह सब तेरे मर मर जमह फिर पवह कनेरे तू एको निश्चल अगम अपारा गुरमति बूझ बुझावणिया हौ वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया किस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई गुरमति आप

सब थाई ज्योति ज्योत मलावणिया तिसना अगन जले संसारा लोभ अभिमान बहुत अहंकारा मर मर जन्मे पत गुआई अपनी बिरथा जन्म गुआवणिया गुर का शब्द को विरला बूझे आप मारे तात्रे पवन सूझे।

माया मोह इस मनहन चाई अंतर कपट दुख पावनिया गुरमुख भगत जा आप कराई तन मन राता सहज सुपाई वाणी वज्जे शब्द बजाई गुरमुख भगत।

किसै मलाई, गुर शब्द मिलहै से विछड़ह नाही। सहजे सच समावणिया, तुझते बाहर कछु ना होए, तू कर कर वेखहै जानहै सोई।

बहु कर्म कमावे मुक्त न पाई, देश अंतर पवे दूजे भाई खुआई। बिरथा जन्म गवाया कपटी, बिन शब्द है दुख पावनिया। तावत राखै ठाक रहाई, गुर प्रसादी परम पद पाई। सतगुर आपे मेल मलाई, मिल प्रीतम सुख पावनिया। एक कूड़ लागे कूड़े फल पाई, दूजे भाई बिरथा जन्म गवाई। आप डुबे सगले कुल डुबे, कूड़ बोल बिख खावनिया। इस तन मह मन को गुरमुख देखै, भाई भगत जा हो मैं सुखै। सिद्ध साधक मोल धारी रहे लिवलाई, तिन पी तन मह मन ना दिखावनिया। आप कराए करता सोई, होर के करे कीता क्या होई। नानक जिस नाम देवै सो लेवै, नामो मन वसावनिया। माज महला तीजा, इस गुफा मह अखुट भंडारा। इस विच वसै हर अलख अपारा, आपे गुपत प्रगट है आपे। गुर शब्दी आप वियावनिया, हों वारी जियो वारी। अमृत नाम मन वसावनिया, अमृत नाम महारस मीठा। गुरमती अमृत पी आवनिया, रहाओ। हों मैं मार बजर कपाट खुलाया, नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया। बिन शब्द नाम ना पाई कोई, गुर कृपा मन वसावनिया। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। ज्योति ज्योत मिली मन मा

दिन राती गुरमति शब्द सुनावणिया बिन शब्द अंतर अनेरा ना वस्त लह ना चूकै फेरा सतगुर हाथ कुंजी होरत दर खुलै नाही गुर पूरै भाग मलावणिया गुपत प्रगट तू सबनी थाई गुर प्रसादी मिल सोजी पाई नानक नाम सलाहे सदा तू गुरमुख मन वसावणिया। माज महला तीजा गुरमुख मिले मलाए आपे काल ना जो है दुख ना संतापे हउमै मार बंधन सब तोड़ै गुरमुख शब्द सुहावणिया। हउ वारी जियो वारी हर हर नाम सुहावणिया गुरमुख गावै गुरमुख नाचै हर सेती चित लावणिया। रहाउ गुरमुख जीवै मरै परवान आर जा ना सीजै शब्द पछाण गुरमुख मरै ना काल ना खाई गुरमुख सच समावणिया। गुरमुख हर दर सोभा पाई गुरमुख विचों आप गवाई आप तरै कुल सगले तारी गुरमुख जन्म सवारणिया। गुरमुख दुख कदे ना लगै शरीर गुरमुख हौ मैं चूकै पीर गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागै गुरमुख सहज समावणिया। गुरमुख नाम मिलै वडियाई गुरमुख गुण गावै सोभा पाई सदा आनंद रहै दिन राती गुरमुख शब्द करावणिया। गुरमुख आन दिन शब्दे राता गुरमुख जुग चारे है जाता गुरमुख गुण गावै सदा निर्मल शब्दे भगत करावणिया। बाज गुरु है अंध अंधारा

कराए गुरमुख हिरदै उठाए आप आई नानक नाम मिलै वडियाई पूरे गुर ते पावणिया माज महला तीजा एका जोत जोत है शरीरा शब्द दिखाए सत

पढ़ बुझ मानव सामणिया गुरमुख पढ़े हर नाम सलाह है दर सच्चा सुबा पावणिया रहाउ अलक अपेयो हर रहे आसमाई उपाय न किती पाया जाई कृपा करी ता सतगुर पीटै नदरी मेल मनावणिया दूजे पाए पड़े नहीं दूजे त्रेविद माया कारण लूजे त्रेविद बंधन टूटे गुरशब्दी गुरशब्दी मुक्त करावणिया एहो मन चंचल वासना आवे दुबदा लागे दह दिस तावे बिख का कीड़ा बिख मैं राता बिख ही माही पचावणिया हौ हौ करे तै आप जनाई बहु कर्म करे किस थाए ना पाई तुझते बाहर किसु ना होवै बख्शे शब्द सुहावणिया उपजै पचै हर बूजै नाही अन दिन दूजै पाए फराही मन मुख जन्म गया है बिरथा अंत गया पछतावणिया फिर परदेश शिंगार बनाई मन मुख आंधे से

कै शब्द पुछाता अन दिन भगत करे दिन राती सहजे ही सुख पावनिया सब मैं वरतै इको सोई गुरमुख विरला बूझै कोई नानक नाम रते जन सोहै कर किरपा आप मलावनिया माज महला तीजा मनमुख पढ़ै पंडित कहावै दूजै पाए महा दुख पावै बिख्या माते।

गुर सेवा ते हर मन वसिया, हर रस सहज पी आवणिया रहाउ। वेद पढ़े हर रस नहीं आया, वाद वखाणे मोहे माया। अज्ञान मत्ती सदा अंधियारा, गुरमुख बूझ हर गावणिया। अकथो कथिय शब्द सुहावे, गुरमति मन सचो पावे। सचो सच रवह दिन राती, इहो मन सच रंगावणिया। जो सच रत्ते तिन सचो पावे, आपे दे ना पछो तावे। गुर कै शब्द सदा सच जाता, मिल सच्चे सुख पावणिया। कूड़ पसत तिन्ना मैल ना लागे, गुर प्रसादी अन दिन जागे। निर्मल नाम वसै कट पीतर, ज्योति ज्योत मलावणिया। त्रै गुण पढ़े हर तत् ना जाने, मूलों भुले गुर शब्द ना पछाने। मोह व्यापे किस सूजै नाही, गुर शब्दी हर पावणिया। वेद पकारै त्रिविध माया,

मोह जलाई सो हर सिउ चित लाई हर दर महली शोभा पावणिया रहाउ देवी देवा मूल है माया सिमरत शास्त जिन उपाया काम क्रोध पसरिया संसारी आए जाए दुख पावणिया तिस विच ज्ञान रतन एक पाया गुर प्रसादी मन वसाया जात सत संयम सच कमावै गुरपूरै नाम त्यावणिया पे अड़ै तन परम फुलाणी दूजै लागी फिर पछोताणी हलत पलत दोवै गवाई सुपनै सुख ना पावणिया पे अड़ै तन कंत संभाले गुर प्रसादी वेखै नाले फिर कै सहज रह रंग राती शब्द शिंगार बनावणिया सफल जन्म जिन्ना सतगुर पाया दूजा भाओ गुर शब्द जलाया एको रव रहिया घट अंतर मिल सत संगत हर गुण गावणिया सतगुर ना सेवे सो काहे आया त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया मनमुख नाम चित ना आवै बिन नावै बहु दुख पावणिया जिन शिष्ट साजी सोई जाने आपे मिलै शब्द पछाणे नानक नाम मिलिया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लखावणिया माज महला चौथा आदि पुरख अपरंपरे।

आप लिखत तुर पाई, नानक नाम मिले पौ भंजन, गुर शब्दी सुख पावणिया। माज महला पंजवा कर पहला, अंतर अलख न जाई लखिया, नाम रतन लै गुजा रखिया, अगम अगोचर।

सत्या तारी वडपागी दर्शन पावणिया रहाउ साधक सिद्ध जिसै कौ फिर दे ब्रह्मे इंद्र ध्यान हिरदे कोट ते तीसा खोजह ता को गुरमेल हिरदय गावणिया आठ पहर तुद जापे पवना धरती सेवक पायक चरना खाणी बाणी सर्ब निवासी सबना कह मन पावणिया साचा साहिब गुरमुख जापै पूरे गुर कै शब्द संजापै जिन पिया से त्रिपता से सच्चे सच अगावणिया तिस कर सहजा सोई सोहेला अणद बनोद करे सद केला सो तलवंता सो वड साहा जो

माज महला पंजवां कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता कौन सो ज्ञानी कौन सो बक्ता कौन सो गृह कौन उदासी कौन सो कीमत पाए लियो किन बिद बादा किन बिद छूटा किन बिद आवन जावन टूटा कौन कर्म कौन निहकर्मा कौन सो कह कहाए जियो कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया किन बिद मिलिया किन बिद बिछरे एह बिद कौन प्रगटाए जियो कौन सो अखर जित धावत रहता कौन अपदेश जित दुख सुख सम सहता कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याई किन बिद कीर्तन गाए जियो गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता गुरमुख ज्ञानी गुरमुख बक्ता तन गिरहि उदासी गुरमुख गुरमुख कीमत पाए जियो हउमै बादा गुरमुख छूटा गुरमुख आवन जावन टूटा गुरमुख कर्म गुरमुख निहकर्मा गुरमुख करे सो सुपाए जियो गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया गुरमुख मिलिया मनमुख विछरे गुरमुख बिद प्रगटाए जियो गुरमुख अखर जित तावत रहता गुरमुख अपदेश दुख सुख सम सहता गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याय गुरमुख कीर्तन गाए जियो सगली बणत बणाई आपे आपे करे कराए थापे इकस ते होयो आनंता नानक एकस माहे समाए जियो माज महला पंजवा प्रभ अबनासी ता क्या काड़ा हर भगवंता ता जन खरा सुखाला।

कर कृपा दास नदर निहाली गुण गावह पूर्ण अबनासी कह सुन तोट ना आवणिया एथे उथे तू है रखवाला मात गर्भ मह तुम ही पाला माया अग्न ना पो है तिनको रंग रते गुण गावणिया क्या गुण तेरे आख संभाली मन तन अंतर तुद नदर निहाली तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी तुद बिन अवर ना जाननिया जिसको तू प्रभ पया सहाई तिस तत्ती वाओ न लगे काई तू साहेब सरन सुखदाता सत संगत जप प्रगटावणिया तू ऊच अथाह अपार अमोला तू साचा साहेब दास तेरा गोला तू मीरा साची ठकुराई नानक बल बल जावणिया माज महला पंजवा घर दूजा नित नित दयो संभाली है मूल ना मनहु विसारी है रहाओ संतां संगत पाई है जित जम कह पंथ ना जाई है।

राम जित घर हर कंतना प्रगटई पाठ नगर से ग्राम सरब सिंगार तंबोल रस सन देहि सब खाम।

जन्म जना जल तलमई अल पूरिया रविया विच बना सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा जिन्नी रावया सो प्रभु तिन्ना भाग मना हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मलाई सो प्रभु तिसकै पाए लगा वैसाख तीरन क्यों वाडियां जिन्ना प्रेम बशोह हर साजन पुरख वसार कै लगी माया तोह पुत्र कलत्तर ना संग तना हर अवनासी ओह पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मोह इक सहर के नाम बिन अगे लई है खोहे दयो वसार विगुचना प्रभ बिन अवर ना कोई प्रीतम चरणी जोड़।

रंगीला तिस धनी जिस कह भाग मथन असाड़त पंदा तिस लगे हर नाह ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधि आस दुइये भाई वगुचिये गल पई सो जम की फास जेहा बीजै सो लुणे मथे जो लिखियास रैण विहानी पछताणी उठ चली गई निराश जिनको साधु भेटिए सो दरगहा हुए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन हुए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास असार सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यो प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा विया दिसन सभ्य शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल

मन लोचदा कर्म मिलावन हार जिन्नी सखिए प्रभ पाया हों तिन कै सद बलिहार नानक हर जी मया कर शब्द सवारन हार सावन तिना सुहागनी जिन राम नाम उरहार भादोए परम पलानिया दूजे लगा हेत लख शिंगार बनाया कारज नाही केत जित दिन देह बिनससी तित वेलै कहसन प्रेत पकड़ चलायन।

दोष ना काहू जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिन मह कौड़े होए गए जितड़े माया भोग विच ना कोई कर सके किस ठहरू वह रोज कीता किशु ना हो गई लिखे।

कबहू उतर से जम कै बस फड़िया जिन्नी राव्या प्रभ अपना से दिसन नित खड़िया रतन जवे हर लाल हर कंठ तिना जड़िया नानक बांछे धूड़ तिन प्रभ सरणी दर पड़िया मंगर प्रभ आराधना बहुड़ ना जन्मड़िया पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हर ना मन भिद्या चरनार बिंद दर्शन लगड़ा सा ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी ला बिख्या पोहे ना सकई।

लाख बेरियां, हर सज्जन अगम अगाह, शरण पई नारायण नानक दर पैया, पोख सोहंदा सर्ब सुख जिस बख्शे वे परवाह, माग मज्जन संग साधुआ तूड़ी कर इशनान, हर का नाम त्याए सुन सबना नो कर दान, जन्म कर्म मल उतरे मन ते जाए गुमान, काम

जहान अठ सठ तीर्थ सगल पुन जी दया परवान जिसनो देवे दया कर सोई पुरख सुजान जिन्ना मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुर्बान माग सुचे से कांडी है जिन पूरा गुर मेहरवान फल गुण आनंद उपार्जन हर सज्जन प्रगटे आए संत सहाई राम के कर कृपा दिया मलाई सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नाही जाए इच्छ पुन्नी वड भागणी वर पाया हर राय मिल सहिया मंगल गावही गीत गोविंद अलाए हर जिहा अवर ना दिसई कोई दूजा लवै ना लाए हलत पलत सुवारियों निश्चल दितियन जाय संसार सागर ते रखियन

जी की बिरथा सुह सुनी हर समृत पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना का आधार ससुरे पीए तिस कंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम अगाध बोध किसे अंत न पारावार सेवा सा तिस भाव सी संता की होए शार दीना नाथ दयाल देव पतत उदारण हार आद जुगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई ना जाने को नाही तो लनहार मन तन अंतर वस रही नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रभ को सेम दे तिन कै सद बलिहार संत आराधन सद सदा सबना का बखशिंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दिकीन जिंद गुर शब्दी आराधिये जपिये निर्मल मंत कीमत कहन ना जाइये।

खाय। जिन रच रचिया तिसह ना जाने, अंधा अंध कमाय। जां भजै तां ठीक कर होवै, घाड़त घड़ी ना जाय। नानक गुर बिन नाही पत, पत बिन पार ना पाई। महला दूजा, दिन दे थाम हूं दिता चंगा, मन मुख ऐसा।

ज्यो भावै त्यो रख तू, सब करे तेरा कराया। इकना बख्श है मेल लह, गुरमति तुझ लाया। एक खड़े करह तेरी चाकरी, विण नावै होर ना पाया। होर कार वे कार है, एक सच्ची कार है लाया। पुत कलत कटंब है, एक अलिपत रहे जो तुद पाया। ओहे अंदर हो बाहर हो निर्मले, सच्चै नाहे समाया। सलोक महला पहला, सोइने कै पर्वत गुफा करी। कै पानी पयाल, कै विच धरती कै आकाशी। उर्द रहा सिर पार, पुर कर काया कपड़ पहरा। तुआ सदाकार, बग्गा रत्ता पियला काला। बेता करी पुकार, हुए कुचील रहा मल तारी। दुर्मत मत विकार, ना हूं ना मैं ना हूं। नानक शब्द विचार। महला पहला, वस्त्र पखाल पखाले काया। आपे संयम होए, अंतर मैल लगी नहीं जाने। बाहर हूं मल मल धोवे, अंधा भूल पया जम जाले। वस्त पराई अपनी कर जाने, हऊ मैं विच दुख काले। नानक गुरमुख हऊ मैं टुटे, ता हर हर नाम त्यावे। नाम जपे नामो आराधे, नामे सुख समावे पवड़ी। काया हंस संजोग मेल मलाया, तिन्ही किया वजोग जिन उपाया। मूर्ख भोगे भोग दुख सबाया, सुख हो उठे रोग पाप कमाया। हरख हो सोग वजोग उपाय खपाया, मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया। सतगुर हाथ नबेड़ झगड़ चुकाया, करता करे सो होग ना चले चलाया। सलोक महला पहला, कूड़ बोल मुरदार खाई। अवरी नो समझावन जाई, मुठा आप महाए साथ है। नानक ऐसा आगू जापे। महला चौथा, जिसदे अंदर सच है, सो सच्चा नाम मुख सच अलाई। ओहो हर मार्ग आप चलदा, होर नानू हर मार्ग पाई। जे अगे तीर्थ होए ता मल लह, छप्पड़ नहातै सगवी मल लाई। तीर्थ पूरा सतगुरु, जो अन दिन हर हर नाम त्याई। ओहो आप छुट्टा कुटंब सियो, दे हर हर नाम सब सृष्ट छडाई। जन नानक तिस बलिहार नै, जो आप जपै अवरा नाम जपाई। पौड़ी एक कंद मूल चुन खाहे, वन खंड वासा। एक भगवा वेश कर फिर है, जोगी सन्यासा। अंदर तृष्णा बहुत, साधन भोजन की आसा। बिरथा जन्म गवाई, ना गिरही ना उदासा। जम काल सिरहो ना उतरै, त्रे विद मनसा। गुरमति काल ना आवै नेड़ै, जा होवै दासन दासा। सच्चा शब्द सच मन, घर ही माहे उदासा। नानक सतगुर सेवने अपना, से आसा ते निरासा।

जिस लाभ लोभ अहंकारा नाउ पढ़िया नाउ बुझिया गुरमति विचारा गुरमति नाम धन खटिया भगती परे भंडारा निर्मल नाम मन्निया गर सच्चै सचियारा।

तिस भाव सी नानक रखै लाज महला पहला हक पराया नानका उस सुअर उस गाय गुर पीर हा माता भरी जा मुरदार न खाए गली पिस्त ना जाइए छुट्टे सच कमाए मारन पाहे हराम मैं होए हलाल न जाए नानक गली कूड़ी कूड़ो पल्ले पाए महला पहला पंज निवाजा वक्त पंज पंजा पंजे नाम पहला सच हलाल दुई तीजा खैर खुदाई चौथी नीयत रास मन पंजवी सिफत सनाई करनी कलमा आख कै ता मुसलमान सदाई नानक जेते कूड़ियार कूड़े कूड़ी पाई पौड़ी एक रत्न पदार्थ वणज दी एक कच्चै दे वापारा सतगुर तुठे पाईयन अंदर रतन भंडारा विण गुर किने ना लद्या अंधे भौंक मोए कूड़ियारा मनमुख दूजै पच मोए ना बूझ विचारा एक सबाजो दूजा को नहीं किसे आगे करह पुकारा एक निरतन सदा भौंक दे एक ना भरे तुजारा विण नावै होर धन नाही होर बिख्या सब छारा नानक आप कराए करे आप हुक्म सवारन हारा सलोक महला पहला मुसलमान कहावन मुश्किल जां होए ता मुसलमान कहावै।

मरण जीवन का भरम चुकावै रब की रजाई मन्ने सिरे उपर करता मन्ने आप गवावै तौ नानक सर्ब जिया मेहरमत होए ता मुसलमान कहावै।

कामनी मोह तजै ता अंजन माहे निरंजन पावे तज मान अभमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम लिवलावे नानक साचा मन वसै साच शब्द हर नाम समावे पौड़ी राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो हट पटन बाजार हुक्मी तहसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर्ब भरे भंडार रीते एक खणे ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे बाग मिलख घर वार किते से अपने तंबू पलंग निवार सराय के लालती नानक सच दातार सनाखत कुदरती सलोक महला पहला नदियां होवे तीनवा सोम होवे दुध कीओ सगली धरती सक्कर होवे खुशी करे नित जीओ।

महला पहला पार अठारह मेवा हुए गरुड़ा हुए सुआऊ चांद सूर्य दोए फिर दे रखी है निश्चल होए थाव पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ महला पहला जे देह दुख लाई है पाप ग्रह दोहरा रात पीने राजे सिरे ऊपर रखी है।

पवड़ी। बद फैली गै बाना खसम ना जाने, सो कहिया देवाना आप ना पछाने। कलहा बुरी संसार वादे खपी है, बिनना वै बेकार परमे पची है। राहा दो है एक जाने, सोई सिजसी कुफर गो कफराने पया धजसी। सब दुनिया सुबहान।

जिस मन वसिया सोई, नानक अवर न जीवै कोई, जे जीवै पत लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए, राज रंग माल रंग, रंग रत्ता नचै नंग, नानक ठगया मुठा जाए, बिन नावै पत गया गवाए, महला पहला क्या खादै क्या पैंदै होए, जा मन नाहीं सच्चा सोए, क्या मेवा क्या घ्यो गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास, क्या कपड़ क्या सेज सुखाली, की जह भोग बलास, क्या लश्कर क्या नेब खवासी।

तार खसम पठाया, तबल बाज बीचार शब्द सुनाया। एक होए असवार एक ना साखती, इकनी बदे पार इक ना ताखती। सलोक महला पहला, जा पक्का ता कटिया, रही सो पलरवार सन की सारा चिथिया। कण लया तन झाड़, दोए पुड़ चक्की जोड़ कै पीसन आए बहेठ। जो दर रहे सो उबरे, नानक अजब डिठ। महला पहला, वेख जे मिठा कटिया, कट कुट बद्दा पाए। खुंडा अंदर रख कै देन सो मल सजाए। रस कस टटर पाई, तपै तै विल लाए। पी सो फोग संभालिए।

खाले थली करे असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे स्वाह जेते जी जीवह लै साहा जीवाले ताके असाहा नानक ज्यों ज्यों सच्चे पावे त्यों त्यों दे ग्राह महला पहला एक मास हारी एक त्रिण खाहे एक ना शक्ति अमृत पाए एक मिटिया मह मिटिया खाए एक पौन सुमारी पौन सुमार एक निरंकारी नाम आधार जीवे दाता मरे ना कोए नानक मुठे जाहे नाही मन सोए पौड़ी पूरे गुर की कार कर्म कमाई है गुरमति आप गवाए नाम त्याई है दूजी कार है लाग जन्म गवाई है विण नावै सब विस पैंजै खाई है सच्चा शब्द सलाहे सच समाई है विण सतगुर सेवे नाही सुख निवास फिर आई है दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है नानक सच खरा सलाहे पत स्यों जाई है सलोक महला पहला तुद भावै ता वावह गावह तुद भावै जल नावह जा तुद भाव

पूरा जा का बोल, नानक पूरा जे करे कटे नाही तोल। पौड़ी जा तू ता क्या होर, मैं सच सुनाई है मुठी तंदे चोर, महल ना पाई है इन चित कठोर, सेव गवाई है जित घट सच ना पाई, सो पन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वट, तोल तोलाई है कोई न आखे घट, हों मैं जाई है लइयन खरे परख, दर भी नाई है सौदा इक तहट, पूरे गुर पाई है। सलोक महला दूजा, अठी पैरी अठ खंड, नावा खंड शरीर इस विच नौ निद नाम एक, पाल है गुणी गहीर, कर्मवंती सालाया ना।

आबास बोलन फादल नानका दुख सुख खसमे पास महला दूजा पौन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिन सरात दोई दाई दाया खिले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उज्जले होर कीती छुट्टी नाल पौड़ी सच्चा भोजन पाओ सतगुर दसिया सच्चे ही पतियाए सच विगसिया सच्चा कोट गराए निज घर वसिया सतगुर तुठे नाउ प्रेम रहस्या सच्चा दै दी बाण कूड़ ना जाइए झूठो झूठ बखान सो महल खवाइए सच्चा शब्द निशान ठाक ना पाइए सच सुन बुझ बखान महल बुलाइए सलोक महला पहला पहरा अगन हिवै कर बाधा भोजन सार कराई सगले दुख पानी कर पीवा धरती हाक चलाई तरत राजी अंबर तोली पिछे टंक चढ़ाई एवड वड्डा मावा नाही सबसे नत चलाई एता तान हुआ मन अंदर करी पे आख कराई जेवड साहेब तेवड दाती दे दे करे रजाई नानक नदर करे जिसे ऊपर

गुण गाहक एक वन भुखिया भुख ना उतरै गली भुख ना जाए नानक भुखा तां रजै जां गुण कह गुणी समाए पौड़ी बिन सच्चे सब कूड़ कूड़ कमाई है बिन सच्चे कूड़ियार बन चलाई है बिन सच्चे तन शार शार रलाई है बिन सच्चे सब भुख जे पैंजै खाई है।

ठगियो ठग आईऐ जाइऐ तन मह तृष्णा अग शब्द बुझाइऐ सलोक महला पहला नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरिया सदा पक्कै करम ध्यान।

यार मन वसाइए मोहत ना चसा विलम भरिय पाइये गुर प्रसादी बुज सच समाइए सलोक महला पहला तुम्मी तुम्मा विस आकत तूरा निम फल मन मुख वसह तिस जिस तू चेतना आवही नानक कहिए किस हंडन कर्मा बाहरी महला पहला मत पंखे रू किरत साथ कब उत्तम कब नीच कब चंदन कब अक डाल कब उच्ची परीत नानक हुक्म चलाई है।

खट दर्शन कह भेख किसे सच समावना सच्चा पुरख अलख शब्द सुहावना मन्ने नाउ बसंख दरगाह पावना खालक कौ आदेश ताडी जावना नानक जुग जुगई।

पौड़ी खसमै कै दरबार टाडी वसिया सच्चा खसम कलाण कमल विगसिया खसम पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरस्या सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दस्या सच्चा शब्द विचार काल वधोसिया ढाडी कथे अकथ शब्द सवारिया नानक गुण गहरास।

रहे जे सौ तो वन पाए नानक बख्शे बख्शी है नाही ता पाही पाए महला पहला नानक बोलन चखना दुख छड मंगी है सुख सुख दुख दोए दर कपड़े पहर है जाए मनुख जिथे बोलन हारी है तिथे चंगी चुप पौड़ी चारे कुंडा देख अंदर पालिया सच्चा पुरख अलख सिरज निहालिया उजड़ भुले राह गुर वेखा लिया सतगुर सच्चे वाह सच संभालिया पाया रतन कराह दीवा बालिया सच्चा शब्द सलाहे सुखिए सच वालिया ने डरिया डर लग गर्भ से गालिया नाम भुला जग फिर बेतालिया सलोक महला तीजा पै विच जमै पै मरे पी पौ मन मह होय नानक पै विच जे मरै।

नानक भैवन जे मरे मुहे काले उठ जाय पौड़ी। सतगुरु हुए दयाल ता शरदा पूरी है, सतगुरु हुए दयाल ना कबहू चूरी है। सतगुरु हुए दयाल ता दुख ना जानी है, सतगुरु हुए दयाल ता हर रंग माणी है। सतगुरु हुए दयाल ता जम का डर के हा, सतगुरु हुए दयाल ता सद ही सुख देहा। सतगुरु हुए दयाल ता नव निद पाई है, सतगुरु हुए दयाल ता सच समाई है। सलोक महला पहला सिर खुहाए पी है मलवाणी, जूठा मंग मंग खाही फूल फदीहत मुहे लैन पड़ासा। पानी देख सगाही भेडा वांगी सिर खोहायन, भरियन हथ सुआही माऊ पीऊ किरत गुआयन। टब्बर रोवन ताही ऊना पिंड ना पत्तल किरिया ना दीवा, मुए कथाऊ पाही अठसठ तीरथ देन ना ढोई।

इत के होम जग सद पूजा पय कार्य सो है गुरु समुंद नदी सब सिखी नाते जित वडे आई नानक जे सिर खुते नावन नाही ता सत चट्टे सिर शाई महला दूजा अग्नि पाला की करे सूरज के ही रात चंद अनेरा की करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस विच सब किछ।

ताया सच्ची सिफत सालाहा कपड़ा पाया सच्चा अमृत नाम पूजन आया गुरमति खादा राज तिन सुख पाया ताडी करे पसाऊ शब्द बजाया नानक सच सलाहे पूरा पाया शुद्ध राग गौड़ी ग्वारी महला पहला चौपदे दुपदे

ना डूबै तरै, जिन किश किया सो किश करै, हुक्मे आवै हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म समाए, हंस हेत आसा समान, तिस विच भूख बहुत नैसान, पाओ खाना पीना आधार, बिन खादे मर होए गवार, जिसका कोए कोई कोए कोए, सब को तेरा तू सबना का सोए, जाके जी जंत धन माल, नानक आखन बिखम बीचार, गौड़ी महला पहला, माता मत पिता संतोख, सत भाई कर इहो वसेख, कहना है किछ कहन न जाए, तौ कुदरत कीमत नहीं पाए, रहाओ शर्म सुरत दोए ससुर भए, करनी कामन कर मन लए, साहा संजोग व्याह वजोग, सच संतत कहो नानक जोग, गौड़ी महला।

तट तीर्थ जाही, रत्न पदार्थ काट ही माही, पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाणे, पीतर होंदी वस्त ना जाने, हौ ना मुआ मेरी मुई बलाई, ओ ना मुआ जो रहे आसमाई, कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदर ना आया, गौड़ी महला पहला दखनी, सुन सुन बूझे मन नाऊ, ताँ कै सद बलिहारे जाऊ आ।

सुनो कर हाट गुर मिल खोले बजर कपाट साध मिले पूरब संजोग सच रहस्य पूरे हर लोग मन तन दे लै सहज सुभाए नानक तिनकै लागो पाए गौड़ी महला पहला काम क्रोध।

मुंडै पड़वाऊ जेवा इंद्री एक सुवाऊ दिष्ट वकारी नाही पहु पाऊ आप मारे ता पाए नाऊ शब्द मरे फिर मरन ना होए बिन मुए क्यों पूरा होए परपंच व्याप रहया मन दोए फिर नारायण करे सो होए बोहित चढ़ो जा आवे वार थाके बोहित दरगाह मार सच सलाही तन गुरुद्वार नानक दर कर एक अंकार गौड़ी महला पहला।

मन मानिया अमृत रस पीजे रहाउ जन्म जीत मरण मन मानिया आप मुआ मन मन ते जानिया नजर पई घर घर ते जानिया जत

उठाओ। नानक गुरमत सहज समाओ, गौड़ी महला पहला। सतगुर मिले सो मरण दिखाए, मरन रहन रस अंतर पाए। गर्भ निवार गगन पुर पाए, मरन लिखाए आए नहीं रहना। हर जप जाप रहन हर सरना रहाओ, सतगुर मिले तदुबदा भागे। कमल बगास मन हर प्रभ लागे, जीवत मरे महारास आगे। सतगुर मिले सच संयम सूचा, गुर की पौड़ी ऊचो ऊचा। कर्म मिले जम का पौ मूचा, गुर मिले मिल अंक समाया। कर कृपा कर महल दिखाया, नानक हों मैं मार मलाया। गौड़ी महला पहला।

गुरबचनी सच शब्द पछाता तेरा तान नाम की वडियाई नानक रहना भगत सरनाई गौड़ी महला पहला जिन अकथ कहाया अपयो पी आया अन पै बिसरे नाम समाया क्या डरिए डर डर है समाना पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाओ जिस नर राम हृदय हर रास सहज सुभाए मिले साबास जाहे सवारे सांझ बयाल इत उत मन मुख बांधे काल अहनस राम हृदय से पूरे नानक राम मिले ब्रह्म दूरे गौड़ी महला पहला जन्म मरे त्रै गुण हितकार चारे वेद कथ है आकार तीन अवस्था कह बखियान तुरिया अवस्था।

गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म ना हुए है मरना रहाऊ। चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत सासत पंडित मुख सोई। बिन गुर अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जाके हृदय बसया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई। हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद। जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा माहि निराश बुझाया। दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रह सुखाली। बाजी एहु संसारु, लाभ लोभ मुच कूड़ कमावे। बहुत उठावे पारू, तू काया मैं रुल दी देखी। ज्यों तारू पर शारु, सुन सुन सिख हमारी। सो कृत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहुड़ न आवे वारी रहाउ। हौ तुदे आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी। निंदा चिंदा करह पराई, झूठी लाए तिबारी। वेल पराई जो है जियड़े, करह चोरी बुरियारी। हंस चलिया तू पिछे रही, छुट्टड़ हुई है नारी। तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया। कर चोरी मैं जा किश लिया, ता मन भला पाया। हलत ना सोबा पलत ना ढोई, अहला

सुन मूरख मन अजाना होग तिस का पाना रहाऊ। साहू हमारा ठाकुर पारा हम तिसके बन जारी। जियो पिंड सब रास तिस की मार आपे जी वाले। गौड़ी चेती महला पहला अवर पंच हम एक जना क्यों राखो कर बार मना।

थी सातना अमृत केल करे नित कामन अवर लुटेन सो पंच जना ताहे मड़ोली लूटिया देहरा सातन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना।

तिनकी पंख होवे जे नानक तो मूड़ा किश पाई रे। गौड़ी चेती महला पहला कत की माई बाप कत केरा किदू थाम हो हम आई अगन बिंब जल पीतर नि

केते पशु अपाय, केते नाग कुली मह आई, केते पंख उड़ाई, हट पटन बिज मंदर पन्ने, कर चोरी कर आवे, अगों देखै पिछों देखै, तुझते कहां छुपावे, तट तीरथ हम नव खंड देखे, हट पटन बाजारा, लैके तकड़ी टोलन लागा, घट ही मह वणजारा, जीता समुंद सागर।

राम का। मूढ़े फिर पाश पछताहे रे रहाउ, अनता तन तरनी तरे अनत ना चाहे आ जाए। अनत को चाहन जो गए से आए अनत गवाए। आपन लिया जे मिले ता सब को पागठ होए,

गौरी बैरागण महला पहला हरनी हुआ बन बसा कंद मूल चुन खाऊं गुर प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हो जाऊं जियो मैं बनजार नाम की तेरा नाम बखर वापार जी रहाऊ कोकिल हुआ अम बसा सहज शब्द विचार सहज सुपाए मेरा सहु मिले।

सहु वसै हौ मिलोंगी बाहां पसार। नागन होआ तर वसा शब्द वसै पहु जाय। नानक सदा सुहागणी जिन ज्योति ज्योत समाए। गौड़ी पूर्बी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखिए करते का हुए बिचार। तित कर गाव हो सोहिला सिवर हो सिरजनहार। तुम गाव हो मेरे नरपहु का सोहिला हौ वारी जाऊं। जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालियन देखे गा देवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कवन समार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल। देहो सज्जन आसी सड़िया ज्यो होए साहिब स्यो मेल। कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन। सदन हारा सिमरिया नानक से दे आवन। राग गौड़ी गवारी महला तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर

शब्द पछाण सतगुर कह पहे ब्रह्म पहु जाई पैरा कह सच रंग समाई रहाउ गुर मिले हर मन वसै सुपाई मेरा प्रभ भारा कीमत नहीं पाई।

वै जो पांडा हुई ऊंदे पांडे टिके ना कोई गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच पांडा जिस शब्द प्यास गौरी गुवारी महला तीजा।

साची वाणी शब्द विचार गावत रहै जे सतगुर पावे मन तन राता नाम सुहावे रहाउ एक गावे है एक भगत करे नाम ना पावे बिन असने सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना पिर राखिया सदा उरतार भगत करह मूर्ख आप जनाव है नच नच टप्पे हैं बहुत दुख पाव है नचे टप्पे हैं भगत ना होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वशल भगत कराए सोए सच्ची भगत बिचों आप खोए मेरा प्रभ साचा सब बिद जाने नानक बख्शे नाम पछाणे गौरी गुआरी महला तीजा मन मारे तात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोई मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे दे वडियाई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाउ गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन मैं मत मैं गल मिकदारा गुर अंकस मार जी वालन हारा मन असाद साधे जन कोए अचार चरे ता निर्मल होए गुरमुख एहो मन लया सवार हौ मैं विचों तजे वकार जो तुर राखियन मेल मलाए कदे ना विचण है शब्द समाए अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा हम मैं विच सब जग बहुराना दूजे पाए परम पुलाना बहु चिंता चितवे आप ना पछाना धंधा करतियां आन दिन वेहाना हिरदय राम रमहु मेरे पाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाउ गुरमुख हिरदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हौ मैं मारे गुर शब्द पछाता कृपा करे प्रभ कर्म बधाता से जन सच्चे जो गुर शब्द मलाए

पोतै पुन तिन हम मैं मारी। नानक जो नाम रते तिन को बलिहारी। गौड़ी ग्वारी महला तीजा, तू अकथ क्यों कथिया जाई। गुर शब्द मारन

साई। गुरमुख भगत हर नाम समाई, आपे दात करे दातार, पूरे सतगुर स्यों लगे प्यार। नानक नाम रते तिन कहो जयकार, गौड़ी ग्वारी महला तीजा। एक सते सब रूप है रंगा, पौन पानी बैसंतर सब सहलंगा। पिन पिन वेखे हर प्रव रंगा, एक अचरज एको है सोई। गुरमुख विचारे बिरला कोई, रहाउ सहज पवै प्रभ सब नीथाई। कहां गुप्त प्रगट

रहाव। असंत अनाड़ी कदे ना बूझै, कथनी करे तै माया नाल लूझै। अंध अज्ञानी कदे ना सीजै, इस जुग में राम नाम निस्तारा। बिरला को पाई गुर शब्द विचारा, आप तरै सगले कुल उधारा। इस

राम जपहु हो पवजन उतरु हो पार रहाउ परमे आवे परमे जाय एहो जग जन्मया दूजे पाय मन मुख ना चेतै आवे जाय आप भुला के प्रभ आप भुलाया एहो जियो वडाणी चाकरी लाया महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया कृपा कर सतगुरु मलाए एको नाम चेते विचो परम चकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए गौड़ी गुआर दी महला तीजा जिन्ना गुरमुख त्याया।

बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार, बंधन बांधियो माया पास, जन नानक छूटे गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती ऊपर मेघला बरस।

तेरी तुझ ही माही समाही। इतने जन्म भूल परे से जा पाया ता भूले नाही। जाका कार्ज सोई पर जाने जे गुर कै शब्द समाही।

आ निर्मला हम अवगण यारी हर शरणागत राख लेहु मूढ़ मुग्ध निस्तारी सहज आनंद सदा गुरमति हर हर मन त्याया सज्जन हर प्रभ पाया कर सोहिला गाया हर दया तार प्रभ बेनती हर हर चेताया जन नानक मंगे धूड़ तिन जिन सतगुर पाया गौड़ी गुआरी महला चौथा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंडित शास्त्र सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूर्ख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भज मन मेरे तर भौजल तू तारी रहाओ सन्यासी बेपूत लाए दे सवारी पर त्रय त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूर्ख हर आस तुम्हारी।

चौथा निर्गुण कथा कथा है हर की पज मिल साधु संगत जन की तर पौ जल कथ कथा सुन हर की गोविंद सत संगत में लाई हर रस रसना राम गुण गाय रहाओ जो जन त्याव है हर हर नामा तिन दासन दास करहो हम रामा जन की सेवा उत्तम कामा जो हर की हर कथा सुनावे सो जन हमरे मन चित पावे जन पग रेन वड भागी पावे संत जना स्यों प्रीत बन आई जिनको लिखत लिखिया तुर पाई ते जन नानक नाम समाई गौड़ी ग्वारी महला चौथा माता प्रीत करे पुत खाए मीने प्रीत पई जल नाए सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए ए हर जन हर मेलो हम प्यारे जिन मिलिया दुख जाहे हमारे रहाओ ज्यों मिल बशरे गऊ प्रीत लगावे कामन प्रीत जा पिर घर आवे हर जन प्रीत जा हर जस गावे सारिंग प्रीत बसै जल तारा नरपत प्रीत माया देख पसारा हर जन प्रीत जपै निरंकारा नर प्राणी प्रीत माया धन खाते गुरसिख प्रीत गुर मिलै गलाते जन नानक प्रीत साध पग चाटे गौड़ी ग्वारी महला चौथा भीखक प्रीत भीख प्रभ पाए भूखे प्रीत होवै अन खाए गुरसिख प्रीत गुर मिल आघाए हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी कर कृपा लोच पूर हमारी रहाओ चकवी प्रीत सूरज मुख लागे मिले प्यारी सब दुख त्यागे गुरसिख प्रीत गुरु मुख लागे बशरे प्रीत खीर मुख खाए हृदय बिगसै देखै माए गुरसिख प्रीत गुरु मुख लाए होर सब प्रीत माया मोह काचा बिन सजाए पूरा कच पाचा जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा गौड़ी ग्वारी महला चौथा सतगुर सेवा सफल है बनी जित मिल हर नाम त्याया हर तनी जिन हर जपया तिन पीछे छूटी कनी गुरसिख हर बोलो हो मेरे भाई हर बोलत सब पाप लह जाई रहाओ जब गुर मिलिया तब मन वास आया तावत पंच रहे हर त्याया अन दिन नगरी हर गुण गाया सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई तिन कूड़ त्यागे हर लिब लाई ते हर दरगाह मुख उजल पाई गुर सेवा आप हर पावे कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावे नानक गुरमुख हर आप तरावे गौड़ी ग्वारी महला चौथा हर आपे जोगी डंडा तारी हर आपे रव रहिया बनवारी हर आपे तप तापै लाए तारी ऐसा मेरा राम रहिया भरपूर निकट वसै नाही हर दूर रहाओ हर आपे शब्द सुरत तुन आपे हर आपे वेखै विगसै आपे हर आप जपाए आपे हर जापे हर आपे सारिंग अमृत तारा हर अमृत आप पी आवन हारा।

त्यों हर जन हर हर बोलता हर बोल सुख पावे बिक संचय हटवानिया बह हाथ कमाए मोह झूठ पसारा झूठ का झूठे लपटाए त्यों हर जन हर तन संचया हर खर्च लै

गौड़ी बैरागण महला चौथा नित दिन सरात लालच करी पर मैं परमाया वेगार फिरे वेगारिया सिर पार उठाया जो गुर की जन सेवा करी सो कर कै काम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कै कम लाए नित हर गुण गावे हर नाम समाए रहाउ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजी अर्थ सब माया कै बंद है कै दान ले कै नरपत मर जाया तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद कीचे बहु भांत कर माया कहताई जान लाहा दे ता सुख मने टूटे मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे।

हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा जिन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा हौ कुर्बानी गुरे अपने जिन बिछड़िया मेलिया मेरा सिरजनहार।

अपनी कृपा धार रहाउ। हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत न आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लह हर पावे। हम अपराधी राखे गुर संगति, अपदेश दियो हर नाम छडावे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोल है तब विस्म होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छडाए। तू गुर पिता, तू है गुर माता, तू गुर बंधप मेरा सखा सखाए। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जान हो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे।

कपड़ पहनन दिया रासे अन्न को गाणी जिन दिए सो चेतना आवई पशु हों कर जानी सब कीता तेरा वरतदा तू अंतर जामी हम जंत बचारे क्या करहे सब खेल तुम स्वामी जन नानक हाट विहाजिया हर गुलम गलामी गौड़ी बैरागण महला चौथा ज्यों जननी सुत जन पालती राखह नदर मजार अंतर बाहर मुख दे ग्रास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है यानी तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाणी रहाओ जैसी गगन फरंती उड़ती कपरे बागे वाली ओह राखै चीत पीछे बिच बचरे नित हृदय सार संभाली त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखै जी नाली जैसे काती तीस बतीस है विच राखै रसना मास रात केरी कोई जानो मास काती कै किस हाथ है सब वसगत है हर केरी त्यों संत जना की नर निंदा करह हर राखै पैज जन केरी भाई मत कोई जानो किसी कै किस हाथ है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर कै वस है कोई लाग ना सके बिन हर का लाया ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावहु जन नानक जो अंति अवसर ले छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लहिए मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिले हों खिन खिन करी नमस्कार मेरा गुर पूरा क्यों मिले रहाओ कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा इच्छ पुन्नी जन केरिया ले सतगुर तूरा हर भगत दरड़ावे हर भगत सुने तिस सतगुर मिलिए टोटा मूल ना आवई हर लाभ नित दृढ़िए जिस को हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उधरे हर गुण गावाही महला चौथा गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग भया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हौ गोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करहो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब जोत सबाई हर निकट वसै हर कोली हर हर निकट वसै सब जग कै अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुरपूरै सिर वेचियो गुर पै मोली हर जी अंतर बाहर तुम सरनाग तुम वड पुरख वडोली जन नानक अन दिन हर गुण गावे मिल सतगुर गुर वे चोली गौड़ी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीश्वर पुरख बधाते जित मार्ग तुम प्रेर हो स्वामी तित मार्ग हम जाते राम मेरा मन हर से तीराते सत संगत मिल राम रस पाया हर राम मैं नाम समाते रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सरनाते दुर्मत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप प्रभ ठाकुर तुम जेवड़ अवर ना दाते
जन नानक नाम लए ता जीवै, हर जपियै हर कृपा ते, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, करहो कृपा जग जीवन दाते, मेरा मन हर से तीराचे, सतगुर बचन दियो अत निर्मल, जप हर हर हर मन माचे, राम मेरा मन तन बेद लियो हर साचे, जेहे काल कै मुख जगत सब ग्रसया, गुर सतगुर कै बचन हर हम बाचे, रहाउ जिनको प्रीत नाही हर सेती, ते साकत मूड़ नर काचे, इनको जन्म मरण अत भारी, विच विष्टा मर मर पाचे, तुम दयाल सरन प्रतपालक, मोको दीजै दान हर हम जाचे, हर के दास दास हम कीजै, मन निरत करे कर नाचे, आपे साहा वड्डे प्रभु स्वामी, हम बन जा रे है ताचे, मेरा मन तन जियो रास सब तेरे, जन नानक के साहा प्रभ साचे, गौड़ी पूर्वे महला चौथा, तुम दयाल सर्व दुख भंजन, एक बिनो सुनो दे काने, जिस ते तुम हर जाने स्वामी, सो सतगुर मेल मेरा प्राने, राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने, हम मूढ़ मुगद अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर कै बचन हर हम जाने, रहाउ जितने रस अनरस हम देखे, सब कितने फीक फीकाने, हर का नाम अमृत रस चाखिया, मिल सतगुर मीठ रस गाने, जिनको गुर सतगुर नहीं पीटिया, ते साकत मूढ़ देवानी, तिनके कर्महीन तुर पाए, देख दीपक मोहे पचाने, जिनको तुम दया कर मेलो, ते हर हर सेव लगाने, जन नानक हर हर हर जप प्रगटे, मत गुरमत नाम समाने, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी, कहो कितै हर पहु नसीऐ, हर आपे बख्श लए प्रभ साचा, हर आप छुड़ाए छुटिऐ, मेरे मन जप हर हर हर मन जपिऐ, सतगुर की सरनाई भज पौ मेरे मना, गुर सतगुर पीछै छुटिऐ रहाउ, मेरे मन सेवहु सो प्रभ सर्ब सुख दाता, जित सेवै निज कर वसीऐ, गुरमुख जाए लहो कर अपना, कस चंदन हर जस कसीऐ, मेरे मन हर हर हर हर हर जासे उत्तम, लैला हर मन हसीऐ, हर हर आप दया कर देवै, ताय अमृत हर रस चखीऐ, मेरे मन नाम बिना जो दूजै लागे, ते साकत नर जम कुटिऐ, ते

लेखा छुटिया जन नानक हर प्रभ पूरे किए खिन मासा तोल ना कटिया गौड़ी पूर्वे महला चौथा हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरे मेरा जियो पिंड सब तेरी दया करहो हर दर्श दिखावहो मेरे मन तन लोच कनेरी राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी गुर कृपाल कृपा किंचत गुर कीनी हर मिलया आए प्रभ मेरी रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम हर जानो मेरी अन दिन नाम जपी सुख पाई नित जीवा आस हर तेरी गुर सतगुर दाते पंथ बताया हर मिलया आए प्रभ मेरी अन दिन अनद पया वड़ पागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश्वर करते सब वसगत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पैज जन केरी गौड़ी पूर्वी महला चौथा इहो मनुआ खिन ना टिकै बहु रंगी दह दह दिस चल चल हांडी गुरपुरा पाया वड पागी हर मंत्र दिया मन ठाढे राम हम सतगुर लाले कांडे रहाओ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु साढ़े पर उपकार पुन बहु किया बहु दुत्तर तार पराढ़े जिनको प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गाडन गाडी ज्यों पानी कागद बिनस जात है क्यों मन मुख गर्भ गलाडी हम जानिया कछु ना जान है आगे ज्यों हर राख है त्यों ठाढ़ी हम पूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे कांडी गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करोद नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडाई पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाई कर साधु अंजलि पुन वड्डाई कर डंडोत पुन वड्डाई रहाओ साकत हर रस साधना जानिया तिन अंतर हम मैं कंडाई ज्यों ज्यों चल है चुभे दुख पावे जम काल सह सिर डंडाई हर जन हर हर नाम समाणी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डाही जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडाई गौड़ी पूर्वी महला चौथा इस गढ़ में है हर

बहु दूध पी आई बिकनिक सह फूल फलीठा हर प्रभ्यान मलाव गुर साधु कस गरुड़ शब्द मुख लीठा जन नानक गुर के लाले गोले लग संगत करुआ मीठा गौड़ी पूर्वी महला चौथा।

मस्तक पाग सुपागी राम गुरमत हर लिव लागी रहाउ कट कट रमैया रमत राम राई गुर शब्द गुरु लिव लागी हो मन तन देवो काट गुरु कहो मेरा भ्रम पहो गुर बचनी भागी अंधियारै दीप ज्ञान जलाई गुर ज्ञान गुरु लिव लागी अज्ञान अंधेरा बिनस बनासेउ कर वस्त लही मन जागी साकत बदक माया तारी तिन जम जो हन लागी हुन सतगुर आगै सीस ना बेचिया हुए आवह जाहे अभागी हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर हम शरण प्रभु हर मांगी जन नानक की लज पात गुरु है सिर बेचे हो सतगुर आगी गौड़ी पूर्वी महला चौथा हम अहंकारी अहंकार अज्ञान मा

गुर कै बचन हर पाया रहाउ। मेरा ही अरे प्रीत राम राय की, गुरमार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सतगुर आगे, जिन विछड़िया हर गल लाया। मेरा अंतर प्रीत लगी देखन को, गुर हृदय नाल दिखाया। सहज आनंद भया मन मोरे, गुर आगे आप बिचाया। हम अपराध पाप बहु कीने, कर दुष्टि चोर चुराया। अब नानक शरणागत आए, हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, गुरमत बाजे शब्द अनाहद। गुरमत मनुआ गावे, वड भागी गुर दर्शन पाया। तन तन गुरु लिव लावे, गुरमुख हर लिव लावे रहाउ। हमरा ठाकुर सतगुर पूरा, मन गुर की कार कमावे। हम मल मल तो वह पाम गुरु के, जो हर हर कथा सुनावे। हृदय गुरमत राम रसायन, जिहवा हर गुण गावे। मन रसक रसक हर रस आगानी, फिर बहोर न भूख लगावे। कोई करे उपाव अनेक बहुतेरी, बिन कृपा नाम ना पावे। जन नानक को हर कृपा तारी, मत गुरमत नाम दृढ़ावे। राग गौड़ी माज महला चौथा, गुरमुख जिंदू जप नाम करम्मा। मत माता मत जियो नाम मुख रामा, संतोख पिता कर गुरपुरख अजन्मा। वड भागी मिल रामा, गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो। गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो, वड भागी मिल सुगड़ सुजाणी जियो। मेरा मन तन हर रंग पिन्ना, आवहु संत हो मिल नाम जपाहा। विच संगत नाम सदा ले लाहा जियो, कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो। मिल पूर्व लिखियड़े तुर कर्मा, सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो। मन मोर कुह कियड़ा शब्द मुख पाया, हर अमृत बुठड़ा मिलया हर राया जियो। जन नानक प्रेम रतन्ना, गौड़ी माज महला चौथा। आओ सखी गुण कामन करी हा जियो, मिल संत जना रंग माण रलिया जियो। गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो, हर तुठै टुल टुल मिलिया जियो।

जियो। हर हर नाम प्रगासिया मेरे गोविंदा, सब दालत दुख लह जाही जियो। हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा, वडभागी नाम समाही जियो। नैनी मेरे प्यारिया, नैनी मेरे गोविंदा, किने हर प्रभ डिठड़ा नैनी जियो। मेरा मन पन बहुत बैरा गया मेरे गोविंदा, हर बाजो हूं धन कुम लैनी जियो। संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा, मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो। हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा, मैं सुख विहानी रैनी जियो। मैं मेलोह संत मेरा हर प्रभ सज्जन, मैं मन तन भुख लगाइया जियो। हो रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम, मैं अंतर बिरहो हर लाइया जियो। हर राया मेरा सज्जन प्यारा, गुर मेले मेरा मन जीवाइया जियो। मेरा मन तन आसा पूरिया मेरे गोविंदा, हर मिलिया मन वादाइया जियो। वारी मेरे गोविंदा, वारी मेरे प्यारिया, हौ तुद विकण हो सदवारी जियो। मेरा मन तन प्रेम परम का मेरे गोविंदा, हर पूंजी राख हमारी जियो। सतगुर विष्ट

हरे आपे सब कट भोग दा मेरे गोविंदा आपे रसिया भोगी जियो हर सुजान ना भुलई मेरे गोविंदा आपे सतगुर जोगी जियो आपे जगते उपाए दा मेरे गोविंदा हरे आप खेले बहुरंगी जियो एक ना भोग पगाए दा मेरे गोविंदा एक नगन फिर है ना।

हर कथा मंग है हर चंगी जीओ, हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा। हर भगता लोच मन पूरी जीओ, आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा। रब रहया नहीं दूरी जीओ, हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा। हर आप रहया भरपूरी जीओ, हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा। हर वेखै आप हदूरी जीओ, हर अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा। हर आप बजाए त्यों वाजे जीओ, हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा। गुर शब्दी हर प्रभ गाजे जीओ, आपे सरन पुआएंदा मेरे गोविंदा। हर भगत जना राख लाजे जीओ, वडभागी मिल संगती मेरे गोविंदा। जन नानक नाम सिद्ध काजे जीओ, गौड़ी माज महला चौथा। मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जीओ, मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जीओ। हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जीओ, मेरा नाम सखा हर पाई जीओ। गुण गावो संत जीओ, मेरे हर प्रभ केरे जीओ। जप गुरमुख नाम जीओ, भाग वडेरे जीओ। हर हर नाम जीओ, प्राण हर मेरे जीओ। फिर बहुड़ ना पवजल फेरे जीओ, क्यों हर प्रभ वेखा। मेरा मन तन चाओ जीओ, हर मेलो संत जीओ। मन लगा पाओ जीओ, गुर शब्दी पाईए हर प्रीतम राव जीओ। वड भागी जप नाओ जीओ, मेरा मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जीओ। हर मेलो संत जीओ, गोविंद प्रभ पासा जीओ। सतगुर मत नाम सदा प्रगासा जीओ, जन नानक पूरे अड़ी मन आसा जीओ। गौड़ी माज महला चौथा, मेरा बिरही नाम मिलै ता जीवा जीओ। मन अंदर अमृत गुरमत हर लीमा जीओ, मन हर रंग रतड़ा हर रस।

प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो। गुर मेले संत हर सुगड़ सुजान जियो। हौ नाम बितहु कुरबान जियो। हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो। हर दसहु संतो जी हर खो।

पंजवां राग गौड़ी गुआरी चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद इन बेद कुशल होत मेरे भाई।

सुसलै पेखारी एक कुशल मोको सतगुरु बताया हर जो किश करे सो हर किया भगता पाया जन नानक कहो मैं मार समाया इन बिद कुशल होत मेरे भाई इउं पाईए हर राम सहाई रहाओ दूजा गौड़ी गुआररी महला पंजवा क्यों भ्रमिए भ्रम किसका होई जा जल थन महियल रविया सोई गुरमुख उबरे मनमुख पत खोई जिस राखै आप राम दयारा तिस नहीं दूजा को पहुंचन हारा रहाओ सब मह वरतै एक अनंता ता तू सुख सो होए अचिंता ओहो सब किस जाने जो वरतंता मनमुख मोए जिन दूजी प्यासा बहु जोनी पवह तुर किरत लिखियासा जैसा बीजह तैसा खासा देख दर्श मन पया विगासा सब नदनी आया ब्रह्म परगासा जन नानक की हर पूर्ण आसा गौड़ी गुआर री महला पंजवा कई जन्म पय कीत पतंगा कई जन्म गजमीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल एह दे संजरिया रहाओ कई जन्म सैल गिर करिया कई जन्म गर्भ हिर खरिया कई जन्म साख कर उपाया लख चौरासी जोन प्रमाया साध संग भयो जन्म परापत कर सेवा पज हर हर गुरमत त्याग मान झूठ अभमान जीवत मरह दरगाह परवान जो किश होआ सो तुझ ते होग अवर ना दूजा करने जोग ता मिलिए जा लह मलाई कहो नानक हर हर गुण गाई गौड़ी गुआर री महला पंजवा कर्म भूम मह बोह नाम पूर्ण होए तुम्हारा काम फल पावह मिटै जम त्रास नित गावह हर हर गुण जास।

तिस की ओट निमुख माही होवै तेरी छोट सदा निकट कर तिसनु जान प्रभ की आग्या सत करमान गुर कै बचन मटाव हो आप हर हर नाम नानक जप जाप गौड़ी गुआर री महला पंजवा गुर का बचन सदा अबनासी गुर कै बचन कट्टी जम फासी गुर का बचन जी कै संग गुर कै बचन रचै राम कै रंग जो गुर दिया सुमन कै काम संत का किया सत करमान रहाव गुर का बचन अटल अशेद गुर कै बचन कट्टे भ्रम भेद गुर का बचन कतहु ना जाय गुर कै बचन हर के गुण गाय गुर का बचन जी कै साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर कै बचन नरक ना पवै गुर कै बचन रसना अमृत रवै गुर का बचन प्रकट संसार गुर कै बचन नया व्यहार जिस जन होए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौड़ी गुआर री महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ मह राखिया जिन कर जतन जिन दीनी सोभा वडियाई तिस प्रभ को आठ पहर त्याई रमैया रेन साध जन पावो गुर मिले अपना खसम त्याव रहाओ जिन कीता मूड ते बक्ता जिन कीता बेसुरत ते सुरता जिस प्रसाद नवै निद पाई सो प्रभ मन ते बिसरत नाही।

सास ग्रासा जिस प्रसाद माया सिलक काटी गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी कहो नानक इसते किश नाही राखन हारे कौ सलाही गौड़ी गुआरी महला पंजवा तिसकी शरण नाही पहु सोग उसते बाहर कछु ना होग तजी सियाणप बल बुद्ध बिकार दास अपने की राखनहार जप मन मेरे राम राम रंग राम।

तन मन शीतल पहे जन्म जन्म के किल विख गए सर्व निदान पेखे मन माए अब ढूंढन काहे को जाए प्रभ अपने जब पहे दयाल पूर्ण होए सेवक काल।

पूर्ण पूर रहे हो सब जाय, गुर पूर सब परम चकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा, अगले मोए से पाछे परे, जो उबरे से बांध लख खरे।

रहाउ हस पवन हस्त असवारी जोआ चंदन सेज सुंदर नारी नट नाटक आखारे गाया तामह मन संतोख न पाया तख्त सभा मंडन दोलीचे सगल मेवे सुंदर बागीचे अखेर बिरत राजन की लीला मन ना सुहिला पर पंच हीला कर कृपा संतन सच कहया सर्व सुख यो आनंद लहया साध संग हर कीर्तन गाईए कहो नानक वड भागी पाईए जां कै हर तन सोई सुहेला प्रभ कृपा ते साध संग मेला रहाउ दूजा गौड़ी गुआरवी महला पंजवां।

संसार जो हलाहल सो पीवै बवरा अमृत नाम जानै कर कौरा साध संग कै नाही नेर लख चौरासी ब्रह्मता पेर एकै जाल फहाए पंखी रस रस भोग करहै बहुरंगी कहो नानक जिस पये कृपाल गुरपूरै ताके काटे जाल। गौड़ी गुआररी महला पंजवां तौ किरपा ते मार्ग पाई है प्रभ किरपा ते नाम ते आई है प्रभ किरपा ते

राम गुण गाओ, निमक निमक हर हर हर त्याओ, आन ना सुनिए कतहु जाइए, साध संगत बड़ पागी पाइए, आठ पहर जिहवे आराध, पार ब्रह्म ठाकुर आगाद, इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसनी अमोली, बनस्पत मौली फल फूल पेडे, एह रस राती बहुर ना छोड़े, आन ना रस कस लवै ना लाई, कहो नानक गुर पए है सहाई, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, मन मंदर तन साजी बार, इस ही मत ही बस्त अपार, इस ही पीतर सुनियत साह, कवन बापारी जाका उहां वसाह, नाम रतन को व्यवहारी, अमृत भोजन करे आहारी, रहाओ मन तन अर्पी सेव करी जय, कमन सो जुगत जित कर पीजै, पाए लगो तज मेरा तेरै, कमन सो जन जो सौदा जोरै, महल साहा का किन बिद पावै, कमन सो बिद जित पीतर बुलावै, तू वड साह जाके कोट बन जारे, कमन सो दाता ले संचारे, खोजत खोजत निज कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया, कर कृपा जब मेले साह, कहो नानक गुर कै विसार, गौड़ी महला पंजवां गवाररी, रैन दिनस रह इक रंगा, प्रभ को जान है सद ही संगा, ठाकुर नाम कियो उनवर्तन, तृप्त अगावन हर कै दर्शन, हर संग राते मन तन हरे, गुर पूरे की सरनी परे, रहाउ चरण कमल आत्म आधार, एक निहार है।

मुक्ते मुक्ते सदा अलिपत जोग अरजुगते दिस है सब मह सब ते रहते पार ब्रह्म का हुए ध्यान धरते संतन की महिमा कमन बखानो अगाध बोध किस मित नहीं जानो पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय तूर संतन की नानक दी जय गौड़ी गुआरी महला पंजवा तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत तू मेरा प्रीतम तुम संग हीत तू मेरी पत तू है मेरा गहना तुझ बिन निमख ना जाई रहना।

आत्म बसना। निरपो नाम जपूं तेरा रसना। तू मेरी नावनिद तू पंडार, रंग रसा तू मन है आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन ताने अंतर तू ही ते आया, मरम तुम्हारा गुरते पाया। सतगुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी गुआरी महला पंजवां, व्यापत हरक सोग विस्थार। व्यापत सुरग नर के अवतार, व्यापत धन निरधन पेख सोभा। मूल ब्यादि व्याप सलोभा, माया व्यापत बहु प्रकारी। संत जीव है प्रभ ओट तुम्हारी रहाउ। व्यापत हम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्तर संग राता। व्यापत हस्त घोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता। व्यापत भूम रंक अर रंगा, व्यापत गीत नाद सुन संगा। व्यापत सेज महल शिंगार, पंच दूत व्यापत अंधियार। व्यापत कर्म करे हों फासा, व्यापत गिरस्त व्यापत उदासा। चार व्यवहार व्यापत ए जात, सब किश व्यापत बिन हर रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राए, ताको कहां व्यापै माई। कहो नानक जिन तूर संत पाई, ताके निकट न आवे माई। गौड़ी गुआरी महला पंजवां, नैन हो नींद पर दृष्ट बेकार। श्रवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठे साध। मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रह। साबत वस्त ओ अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रस माती, ग्रह अपने की खबर ना जाती। मुसनहार पंच बटवारी, सुने नगर परे ठगहारी। उन तेरा कै बाप ना माई, उन तेरा कै मीत ना पाई। दर्ब स्याणप ना होए रहते, साध संग ओए दुष्ट वस होते।

सो जागै जिस प्रभ कृपाल, एह पूंजी साबत धन माल, रहाउ दूजा गौड़ी ग्वारी महला पंजवा, जाकै वस खान सुल्तान, जाकै वस है सगल जहान, जाका किया सब किश होए, तिसते बाहर नाही कोई, कहो बेनंती अपने सतगुर पाए, काज तुम्हारे दे निभाहे रहाउ, सब ते ऊच जाका दरबार, सगल भगत जाका नाम आधार, सर्ब व्यापत पूर्ण तनी, जाकी शोभा कट कट बनी, जिस सिमरत दुख डेरा टह, जिस सिमरत जम किशु ना कह, जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे, संत सभा कहो सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण आधार, कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोको नाम निवास, गौड़ी ग्वारी महला पंजवा, सतगुर दर्शन अग्न निवारी, सतगुर भेट तहों मैं मारी, सतगुर संग नाही मन डोले, अमृत बाणी गुरमुख बोले, सब जग साचा जा सच महराती, शीतल शांत गुरते प्रभ जाते रहाउ, संत प्रसाद जपै हर नाऊ, संत प्रसाद हर कीर्तन गाऊ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह परम, साध रेण मज्जन सब धर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मह ए हमरी जिंद, किरपा निध किरपाल त्यावो, साध संगता बैठन पावो, मोहे निर्गुण कौ प्रभ कीनी दया, साध संग नानक नाम लया, गौड़ी ग्वारी महला पंजवा, साध संग जपियो भगवंत, केवल नाम दियो गुरमंत, ताज अभमान पये निर्वैर, आठ पहर पूजो गुर पैर, अब मत बिनसी दुष्ट बेगानी, जब ते सुनिया हर जस कानी।

पार ब्रह्म स्यो लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपुरै मेटिया अंधियारा नानक का प्रभ अपर अपारा गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जा कै कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पौ न व्यापै अमृत नाम हृदय हर जापै पार ब्रह्म परमेश्वर त्याई है।

जामी सुख निदान हर अलख स्वामी जी जंत तेरी सरनाई नानक नाम मिले बड़ियाई गौड़ी गुआरी महला पंजवा जी जुगत जा कह है हाथ सो सिमरहो अनाथ को नाथ प्रब चित आए सब दुख जाए पै सब बिन सह हर कह नाए बिन हर पव काहे का मन है हर बिसरत काहे सुख जान है रहाओ जिन तारे बहु तरन आगास जाकी ज्योत जी परगास जाकी बख्शना में तय कोए सिमर सिमर प्रभ निरपो होए आठ पैर सिमर हो प्रभ नाम अनक तीरथ मज्जन।

पुरख जपै भगवान आठ पहर हर हर गुण गाऊं कहो नानक कहो तिस बल जाऊं राग गौड़ी ग्वारी महला पंजवा चौपदे दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो परायो सोई अपना जो तज छोड़न तिस सियो मन रचना कहो गसाई मिली ऐ के जो बिबरजत तिस सियो नेह रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती सत होवन मन लगे ना राती बावे मार्ग टेढ़ा चलन।

परे पंडार अखूट अतोल, खाव है खर्च है रल मिल पाई, टूट न आवे वद दो जाई। कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाने लियार लाए। गौड़ी महला पंजवा, डर डर मरते जब जानिए दूर, डर चूका देखिया भरपूर। सतगुर अपने कहो बलिहार, छोड़ न जाई सर पर तारे। रहाव दुख रोग सोग बिसरे जब नाम, सदा आनंद जा हर गुण गाम। बुरा भला कोई ना कही जै, छोड़ मान हर चरण गही जै। कहो नानक गुर मंत्र चितार, सुख पावे साचे दरबार। गौड़ी महला पंजवा, जांका मीत साजन है समिया, तिस जन कहो कहो का की कमिया। जां की प्रीत गोबिंद स्यों लागी, दुख दर्द भ्रम ता का भागी। रहाव जां कहो रस हर रस है आयो, सो अन रस नाही लपटायो। जा का कहया दरगाह चले, सो किसको नदर ले आवे तले। जां का सब किस ता का होए, नानक ता को सदा सुख होए। गौड़ी महला पंजवा, जां कै दुख सुख सम कर जापै, ता को काड़ा कहां बियापै। सहज आनंद हर साधु माहे, आज्ञाकारी हर हर राय। रहाओ जां कै अचिंत वसै मन आए, ता को चिंता कतहु नाहि। जां कै बिन सियो मन ते परमा, ता कै कछु नाही डर जमा। जां कै हृदय दियो गुरनामा, कहो नानक ता कै सगल निधाना। गौड़ी महला पंजवा, अगम रूप का मन महथाना, गुर प्रसाद किन बिरले जाना। सहज कथा के अमृत कुंटा, जिस प्राप्त तिस लै पुंचा। रहाव अनहत बाणी थान निराला, ता की धुन मोहे गोपाला। तह सहज अखारे अनेक अनंता, पार ब्रह्म के संगी संता। हरख अनंत सोग नहीं बिया, सो कार गुरु नानक को दिया। गौड़ी महला पंजवा, कवन रूप तेरा अरादो, कवन जोग काया ले साधो। कवन गुण जो तुझ लै गावो, कवन बोल पार ब्रह्म री जावो। रहाओ कवन सो पूजा तेरी करो, कवन सो बिद जित पव जल तरो। कवन तप जित तपिया होए, कवन सो नाम हमें मल खोए। गुण पूजा ज्ञान ध्यान, नानक सगल काल, जिस कर कृपा।

देव आद पुरख अपरंपर देव तिसे ऊपर मन कर तू आसा आद जुगाद जा का परवासा जा की प्रीत सदा सुख होए नानक गावे गुर मिल सोए गौड़ी महला पंजवां मीत करे सोई हम माना मीत के करतब कुशल समाना एकाटेक मेरे मन चीत जिस किस करना सो हमरा मीत रहाओ मीत हमारा वे परवाहा गुर कृपा ते मोहे असनाहा मीत हमारा अंतर जामी सम्राट पुरख पार ब्रह्म स्वामी हम दासे तुम ठाकुर मेरे मान महत नानक प्रभ तेरे गौड़ी महला पंजवां जाको तुम पए समरथ अंगा।

खात पीत खेलत हस्त बिस्तार कवन अर्थ मृतक शिंगार जो ना सुनह जस परमानंदा पस पंखी त्रिगद जोन ते मंदा कहो नानक गुरमंत्र दृढ़ाया केवल नाम प्रिद माहि सुमाया गौड़ी महला पंजवा काकी माई काको बाप नाम तरीक झूठे सब साक काहे को मूर्ख पखलाया

माया वड्याई सो वड्डा जिन राम निबलाई रहाउ भूमिया भूम ऊपर नित लुजै छोड़ चलै तृष्णा नहीं बुझै कहो नानक एहो तत बीचारा बिन हर भजन नाही छुटकारा गौड़ी महला पंजवां पूरा मार्ग पूरा इशनान सब किश पूरा हिर

हर कै मार्ग पतत पनीत, पूरी शोभा पूरा लोकीक, करनहार सद वसै हदूरा, कहो नानक मेरा सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, संत की धूर मिटे अग कोट, संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट, संत का दर्श पूर्ण इशनान, संत कृपा ते जपिए नाम रहाव, संत कै संग मिटिया अहंकार, दृष्ट आवे सबे कंकार, संत सो प्रसन्न आए वस पंचा, अमृत नाम हृदय ले संचा, कहो नानक जा का पूरा कर्म, तिस भेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा, हर गुण जपत कमल परगासै, हर सिमरत त्रास सब नासै, सामत पूरी जित हर गुण गावे, बड़े भाग साधु संग पावे रहाव, साध संग पाईए निदनामा।

अपराध भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब ताज अनाथ इक सरने आयो ऊच अस्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसया करनहार नानक मन बसया गौड़ी महला पंजवा कर कर टहल रसना गुण गावो चरण ठाकुर कै मार्ग धामो भलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम पै पार उतरिया रहाओ नेतर संतन का दर्शन पेख प्रभ अवनासी मन महलेख सुन कीर्तन साध पह जाए जन्म मरण की त्रास मटाए चरण कमल ठाकुर उरतार दलब दे नानक निस्तार गौड़ी महला पंजवां जाको अपनी कृपा धारे सो जन रसना नाम उचारे हर बिसरत सहसा दुख व्यापे सिमरत नाम परम पौ भागै रहा।

ऐल करत जन सूहै तां कौ माया अगन ना पूहै। मन तन मुख हर नाम दयाल नानक तजी अले।

टिकाई, दुख बिन से सुख हर गुण गाई, गुर पूरा पेटिया लिवलाई रहाउ। हर का नाम दियो गुर मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत, आनंद भये गुर मिलत कृपाल, कर किर

साध संग मिल भजह गोपाला गौड़ी महला पंजवां कल कलेश गुर शब्द निवारी आवन जान रही सुख सारी पै बिन से निरभउ हर त्याया साध संग हर के गुण गाया।

पूरा गुड़ काढ़े, जन्म जन्म के टूटे गांडे। कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जिस भेटत गत पई हमारी।

नमाय अमृत दृष्ट संच्य जीवाय काटे कष्ट पूरे गुरुदेव सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ मिट गई चिंत पुन्नी मन आसा कर दया सतगुर गुणतासा दुख नाठे सुख आए समाए ढील ना परी जा गुरु फुरमाए इच पुन्नी पूरे गुर मिले नानक ते जन सुफल फले गौड़ी महला पंजवां ताप गए पाई प्रभ शांत शीतल पए कीनी प्रभ दात प्रभ कृपा ते पए सोहेले जन्म जन्म के बिछरे मेले रहाओ सिमरत सिमरत प्रभ का नाओ सगल रोग का बिनसे आठाओ सहज सुपाए बोले हर वाणी आठ पहर प्रभ सिमरहु प्राणी दुख दर्द जम नेड़ ना आवे कहो नानक जो हर गुण गावे गौड़ी महला पंजवां पले दिनस पले संजोग जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग ओह बेला को हौ बल जाऊ जित मेरा मन जपै हर नाउ रहाउ सफल मूरत सफल ओह करी जित रसना उचरै हर हरी सफल ओह माथा संत नमस्कारस चरण पनीत चलह हर मार्ग कहो नानक भला मेरा कर्म जित पेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवां गुर का शब्द राख मन माहे नाम सिमर चिंता सब जाहे बिन

कर हर हर अखर मन मह लेख रव रहे आ सरबत स्वामी गुण गावे नानके अंतर जामी गौड़ी महला पंजवां पै मह रचियो सब संसारा तिस भौ नाही जिस नाम आधारा भौ न व्यापै तेरी सरना जो तुद पावै सोई करना रहाओ सोग हरख मह आवन जाना इन सुख पाया जो प्रभ पाना अग्न सागर महाव्यापै माया ते शीतल जिन सतगुर पाया राख ले प्रभ राख नहारा कहो नानक क्या जंत विचारा गौड़ी महला पंजवां तुमरी कृपा ते जपिए नाउ तुमरी कृपा ते दरगाह थाउ तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए तुमरी कृपा ते सदा सुख होए रहाओ तुम मन बसे तो दुख न लागे तुमरी कृपा ते ब्रह्म पौ भागे पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी सगल कटा के अंतर जामी करो अरदास अपने सतगुर पास नानक नाम मिले सच रास गौड़ी महला पंजवां तन बिना जैसे थोथर तुखा नाम विहून सुने से मुखा हर हर नाम जपहु नित प्राणी नाम विहून त्रिग देह बिगानी रहाओ नाम बिना नाही मुख भाग परत बिहून।

तू है मेरा स्वामी, सब किस तुम ते तू अंतर जामी, पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट, तेरी शरण उदर है जन कोट रहाव, जेते जी तेते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख कनेरे, जो किस वरतै सब तेरा पाना, हुक्म बूझै सो सच समान, कर कृपा दीजै प्रवदान, नानक सिमरै नाम निदान, गौड़ी महला पंजवा, ताका दर्श पाईऐ वडभागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाकै हर वसिया मन माही, ताको दुख सुपने पी नाही रहाव, सर्व निदान राखे जन माहे, ताकै संग किल विख दुख जाए, जन की महिमा कथि न जाए, पार ब्रह्म जन रहया समाए, कर कृपा प्रभु बिनो सनीजै, दास की धूर नानक को दीजै, गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण बसै मन आए, भज मन मेरे एको नाम, जी तेरे कै आवै काम रहाव, रैन दिनस गुण गाओ अनंता, गुरपूरे का निर्मल मंता, छोड़ अपाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख, विक्रम सागर तेई जन तरे, नानक जा कौ नदर करे, गौड़ी महला पंजवा, हृदय चरण कमल प्रभ तारे, पूरे सतगुर मिल निसतारे, गोविंद गुण गाव हो मेरे भाई, मिन साधु हर नाम त्याई रहाव, दलभ देह होई परवान, सतगुर ते पाया नाम निशान, हर सिमरत पूरन पद पाया, साध संग पै परम मटाया, जत कत देखो तत रहया समाए, नानक दास हर की सरनाए, गौड़ी महला पंजवा, गुरु जी के दर्शन कौ बल जाओ, जप जप जीवा सत गुर नाओ, पार ब्रह्म पूर्ण गुरदेव, कर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन धन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होए परवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत धूर पाईऐ वड भागी, नानक गुर भेटत हर स्यों लिव लागी, गौड़ी महला पंजवा, करै दुह कर्म दिखावै होर, राम की दरगाह बांधा चोर, राम रमै सोई रामाणा, जल थल महियल एक समाना रहाव, अंतर बिख मुख अमृत सुनावै, जमपुर बाता चोटा खावै, अनक पड़दे मह कमावै विकार, खिन मह प्रगट होवे संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस कृपाल विधाता, गौड़ी महला पंजवा, राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपूरा जिस दे बुझाए, हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूर्ण पुरख बधाता रहाव, संत संग बैस गुण गाए, ताका रंग न उतरै जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया, गुर रंगे से पये निहाल, कहो नानक गुर पये है दयाल, गौड़ी महला पंजवा, सिमरत स्वामी किल विख नासे, सुख सहज आनंद निवासे, राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिटियो अंदेसा रहाव, साध संग कस पौ ना परांति, गुण गोपाल गाय है दिन राती, कर कृपा प्रभ बंधन छोट, चरण कमल की दीनी ओट, कहो नानक मन पई प्रतीत, निर्मल जस पीवह जन नीत, गौड़ी महला पंजवा, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द भ्रमता का भागा, हर तन को वापा।

जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिट है कलेश चरण कमल मन मह प्रवेश उच्चरो हो राम नाम लख बारी अमृत रस पीवो हो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध कै संग किल विख सब धोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजै साध रवाला गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए तिस स्यों आलस क्यों बने माए खसम बिसार आन कम लागह कौडी बदले रतन त्यागह रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत कत सुभा

प्रभ अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माहे ध्यान सगल तीरथ मज्जन इशनान हर दिन हर सिमरन मेरे पाई कोट जन्म की मल लह जाई रहाओ हर की कथा रित माहे बसाई मन बाशत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जां कैर दैवसै भगवान कहो नानक से जन पूरे जिन्ना प्राप्त साधु तूरे गौड़ी महला पंजवा खांदा पैंदा मुकर पाए तिसनो जो है दूत धर्म राय तिस स्यों बेमुख जिन जियो पिंड दीना कोट जन्म परमह बहु जूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस करे सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनो बिसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उधर कृपा सुख सागर पार ब्रह्म तेरी सरनाए बंधन काट तरह हरनाए रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को कीनो मीत सगल मनोरथ मुकत पद दीत ऐसा मीत करहु सब कोई जाते बिरता कोई ना होए रहाओ अपने सुआए हृदय लै तारिया दुख दर्द रोग सगल बदारिया रसना गीदी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम अनक बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महला पंजवा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे पीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर चरण मिटी खुद तास रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान जां कर दे वसह भगवान।

कहो नानक अटल एह धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा भेटे गुरसोई तित बल रोग ना व्यापै कोई राम रमन तरन पै सागर सरल सूर फारे जमकागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम एह आसर पूर्ण पय काम जप तप संयम पूरी बडियाई

अंधला पारी दुख लागे राम नाम चितारी तेरे दास को तू ही वडियाई माया मगन नरक ले जाई रहा।

सदा सदा सिमरो प्रभ स्वामी मिल नानक हर अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा आठ पहर संगी बटवारी कर कृपा प्रभ लय निवारी ऐसा हर रस रमहु सब।

उक्त फल पाए। उक्त सियानप इससे कश नाही, कर कृपा नानक गुण गाही। गौड़ी महला पंजवा, थाती पाई हर को नाम। बिचर संसार पूर्ण सब काम, वड भागी हर कीर्तन गाइए। पार ब्रह्म तू देह ता पाइए रहाउ, हर के चरण हृदय उरतार। भव सागर चढ़ उतरह पार, साधु संग करहो सब कोय। सदा कल्याण फिर दुख ना होय, प्रेम भगत भज गुणी निदान। नानक दरगाह पाइए मान, गौड़ी महला पंजवा। जल थल महियल पूर्ण हर मीत, ब्रह्म बिन से गाए गुण नीत। उठत सोवत हर संग पहरुआ, जा कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाउ। चरण कमल प्रभ हृदय निवास,

नानक प्रभ राखे देहाथ गौड़ी महला पंजवा हर हर नाम मज्जन कर सूचे कोट ग्रहण पुन फल मूचे रहाव हर के चरण हृदय मह बसे जन्म जन्म के किल विख नसे साध संग कीर्तन फल पाया जम का मार्ग दृष्ट न आया मन बच क्रम गोविंद आधार ताते छुट्यो बिख संसार कर कृपा प्रभ कीनो अपना नानक जाप जपे हर जपना गौड़ी महला पंजवा पौ सरनाई जिन हर जाति मन तन शीतल चरण हर राति पै भंजन प्रभ मन ना बसाही दरपत दरपत जन्म बहुत।

जन्म जरा मृत जिसवास, सू सम्रथ सिमर सास ग्रास, मीत साजन सखा प्रभ एक, नाम स्वामी का नानक टेक। गौड़ी महला पंजवां, बाहर राख्यो हृदय संभाल, घर आए गोविंद लै नाल, हर हर नाम संतन कै संग, मन तन राता राम कै रंग रहाउ। गुर प्रसादी सागर तरिया, जन्म जन्म के किल विख सब हिरिया, सोभा सुरत नाम भगवंत, पूरे गुर का निर्मल मंत, चरण कमल हृदय मह जाप, नानक पेख जीवै प्रताप। गौड़ी महला पंजवां, तन इहो थान गोविंद गुण गाए, कुशल खेम प्रभ आप बसाए रहाउ। विपत तहां जहां हर सिमरन नाही, कोट आनंद जह हर गुण गाही, हर बिसरे दुख रोग कनेरे, प्रभ सेवा जम लगे ना नेरे, सोवड भागी निश्चल थान, जह जपिए प्रभ केवल नाम, जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी, नानक को मिलिया अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवां, जो प्राणी गोविंद त्यावै, पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावे, साधु संग सिमर गोपाल, बिन नामै झूठा धन माल रहाउ। रूपवंत सो चतुर सियाणा, जिन जन मानिया प्रभ का पाणा, जग मह आया सो परवान, घट घट

बिन कर पूजी सौदे को तावै बिन पूंजी नानक राम नाम जप चीत सिमर स्वामी हर सामीत गौड़ी महला पंजवा सा मत निर्मल कहियत तीर राम रसायन पीवत बीर हर के चरण हृदय कर ओट जन्म मरन ते होवत छोट रहाव सो तन निर्मल जित उपजै न पाप राम रंग निर्मल प्रताप साध संग मिट जात बिकार सब ते ऊज एहो उपकार प्रेम भगत राते गोपाल नानक जाचे साधरवाल गौड़ी महला पंजवा ऐसी प्रीत गोविंद सिंह लागी मेल लए पूर्ण वडभागी रहाव परता पेख बिगसै ज्यो नारी त्यों हर जन जीवै नाम चतारी पूत पेख ज्यो जीवत माता ओत पोत जन हर स्यो राता लोभी आनंद करै पेख तना जन चरण कमल स्यो लागू मना।

रसायन जो जन गीते चरण कमल प्रेम भक्ति बीते रहाव आन रसादि सह सब चार नाम बिना निह फल संसार अंध

पान लेत जिस सिरजनहार गौड़ी महला पंजवां नित प्रत नावन राम सर कीजै झोल महारस हर अमृत पीजै रहाउ निर्मल उदक गोविंद का नाम मज्जन करत पूर्ण सब काम संत संग तह गोष्ट होए कोट जन्म के किल विख खोए सिमरह साध करह आनंद मन तन रविया परमानंद जिसह प्राप्त हर चरण निदान नानक दास तिसह कुर्बान गौड़ी महला पंजवां।

संत संग जप केवल नाम, कर्म तर्म नियम ब्रत पूजा, पार ब्रह्म बिन जान ना दूजा, ता की पूर्ण होई काल, जा की प्रीत अपने प्रभ नाल, सो वैष्णो है अपर अपार, कहो नानक जिन तजे बिकार, गौड़ी महला पंजवां, जीवत छाड़ जाहे देवाने।

रहाउ। बिखैठ गौरी जिन जिन खाई, ताकी तृष्णा कबहू न जाई। दारण दुख दुत्तर संसार, राम नाम बिन कैसे उतर सपार। साध संग मिल दुए कुल साध, राम नाम नानक आराध। गौड़ी महला पंजवा, गरीबा उपर जे खिंजै दाड़ी। पार ब्रह्म सा अग्न मह साड़ी, पूरा न्याओ करे करतार। अपने दास को राखन हार, रहाउ आद जगाद प्रगट प्रताप। निंदक मुआ उपज वड ताप, तिन मारिया जे रखे न कोई। आगे पाचे मंदी सोए, अपने दास राखे कंठ लाए। शरण नानक हर नाम ते आए। गौड़ी महला पंजवा, महजर झूठा की तने आप। पापी को लागा संताप, जिसह सहाई गोविंद मेरा। तिसको जम नहीं आवे नेरा, रहाउ साची दरगाह बोले कूड़। सिर हाथ पछोड़े अंधा मूड़, रोग व्यापे कर दे पाप। अदली होए बैठा प्रभ आप, अपन कमाए आपे बांधे। दर्ब गया सब जी कै साथे, नानक शरण परे दरबार। राखी पैज मेरे करतार, गौड़ी महला पंजवा। जन की धूर मन मीठ खटानी, पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी। रहाउ अहम बुद्ध मन पूर थिधाई, साध तूर कर सुध मंजाई। अनक जला जे धोवै देही, मैल न उतरै सुध न तेही। सतगुर भेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर काटिया पौ काल। मुकत भुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा।

कहो नानक जिस कृपा तार है हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचार है गौड़ी महला पंजवां थिर कर बैसो हर जन प्यारी।

बादशाह सहा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपव होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी महला पंजवा, हर संग राते पाहे ना जले, हर संग राते माया नहीं चले, हर संग राते नहीं डूबे जला, हर संग राते सुफल फला, सब पै मिटह तुम्हारे नाई, पेटत संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर संग राते मिटै सब चिंता, हर सिंह सो रचै जिस साध का मंता, हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूर्ण आस, हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अन दिन जागे, हर संग राता सहज कर वसै, हर संग राते ब्रह्म पौ नसै, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, कहो नानक तिन कहो बल जाई, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही, गौड़ी महला पंजवा, उदम करत सीतल मन पहे, मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पहे आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल कर आए, पेटत साध संग गई बलाए रहाओ, नेत्र पनीत पेखत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस, गोबंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया, जन की कीनी आप सहाय, सुख पाया लग दासह पाए, आप गया ताया पह पहे, कृपा निदान की सरनी पए, जो चाहत सोई जब पाया, तब ढूंढन कहां को जाया, अस्थिर पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन, गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इशनान, लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिट है साधु शरण दयाल रहाव, बहुत उर्द तप साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन अरादे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ सिंह मन माने, अगाध बोध हर अग्न अपारी, नाम जपत नाम हृदय बिचारी, नानक कहो प्रभ कृपा तारी, गौड़ी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुर हृदय बसाया, गुरु गोबिंद पार ब्रह्म पूरा, किसह अराध मेरा मन तीरा रहाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाम, ताते सिद्ध पहे सगल काम, दर्शन देख सीतल मन पहे, जन्म जन्म के किल बिख गए, कहो नानक कहां पै पाई, अपने सेवक की आप पैज रखाई, गौड़ी महला पंजवा, अपने सेवक को आप सहाई, नित प्रत पारे बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उबरे सब कोए, कर्ण करावन पूर्ण सच सोए रहाव, अब मन बसया करने हारा, पै बिन से आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के किल बिखलाते, कहन न जाए प्रभ की वडियाई, नानक दास सदा सरनाई, राग गौड़ी चेती महला पंजवा दो पदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम को बल पूरन पाई, ताते बिरता ना व्यापै काई रहाओ, जो जो चितवै दास हर माई, सो सो करता आप कराई, निंदक की प्रभ पत गुआई, नानक हर गुण निरपो गाई, गौड़ी महला पंजवा, भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर,
गर्त परत गह लेहो अंगोरिया रहाओ। श्रवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटत पिंगोरिया। दीना नाथ अनाथ करना में, साजन मीत पिता महतरिया। चरण कमल हृदय गह नानक, पै सागर संत पार उतरिया। राग गौड़ी बैरागन महला पंजवा।

रहाउ। तुझ बिन करी ना जीवना, त्रिग रहना संसार। जी प्राण सुख दातिया, निमख निमख बलिहार जी। हस्त अलंबन देहो प्रभ, गर्त हो उदर गोपाल। मोहे निर्गुण मत थोरिया, तू सद ही दीन दयाल। क्या सुख तेरे सम्मला, कवन विधि विचार। सरल समाई दास हित, ऊचे अगम अपार। सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध, नाम महारस माहे। सो प्रसन्न भये केसवा, सेजन हर गुण गाहे। मात पिता सुत बंध पो, तू मेरे प्राण आधार। साध संग नानक भजै, बिख तरिया संसार। गौड़ी बैरागण रोहोए के, संत के घर महला पंजवां।

हाल। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी। जिन हर पाया से बड़ भागी, ब्रह्मादिक सनकादिक चाहै। जोगी जति सिद्ध हर आहै, जिस है प्रापत सो हर गुण गाहै। ताकि शरण जिन बिसरत नाही, बड़ भागी हर संत मलाही।

ना रस पंकज अत तीखियन मोह की फास काटन हार जगत गुरु गोविंद चरण कमल ताके करो निवास।

रास गौड़ी महला पंजवा हर पीखन को सिमरत मन मेरा आस प्यासी चितवो दिन रैनी है कोई संत मलावे नेरा रहाओ सेवा करो दास दासन की अनक पांत तिस करो निहोरा तुला तार तोले सुख सगले बिन हर दर्स सबो ही थोरा संत प्रसाद गाए गुण सागर जन्म जन्म को जात बोहोरा आनंद सुख पेटत हर नानक जन्म किरतार्थ सफल सवेरा राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किन बिद मिले गुसाई मेरे राम राय कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मुहे मार्ग दे बताई रहाओ अंतर अलख न जाई लखिया विच पड़दा हूं मैं पाई माया मोहे सबो जग सोया एहो परम कहो क्यों जाई एका संगत इकत ग्रह बस्ते मिल बात ना करते पाई एक बस्त बिन पंच दोहेले वह बस्त अगोचर ठाई जिसका ग्रहो तिन दिया ताला कुंजी गुर संपाई अनक अपाव करे नहीं पावे बिन सतगुर सरनाई जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिवलाई पंच जना मिल मंगल गाया हर नानक भेद ना पाई मेरे राम राय इन बिद मिले गुसाई सहज भया भ्रम खिन मह नाठा मिल ज्योति ज्योत समाई रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीतले सतगुर मुझे बतायो रहाओ जत कत देखो तत तत तुम ही मोहे एहो विश्वास हुए आयो कै पह करो अरदास बेनती जो सुन तो है रघुरायो लहयो सहसा बंधन गुर तोरे ता सदा सहज सुख पायो होना सा सोई फुन होसी सुख दुख कहां दिखायो खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर परदा खोल दिखायो नौ निद नाम निदान एक ठाई तौ बाहर कैठ जायो एक कनक अनक पांत साजी बहु प्रकार रचायो कहो नानक परम गुरु खोई है इव तत्तह तत मलायो गौड़ी महला पंजवा औद कटै दिन सरै नार।

आज्ञा है बसन सुहेला। यह संसार विकार सहसी मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी, जिस है जगाए पी आए हर रस अकथ कथा तिन जानी। जा को आए सुई विहाजो हो हर गुर ते मन है बसेरा, निज कर महल पाव हो सुख सहजे बहुर ना हुए गो फेरा। अंतर जामी पुरख बधाते श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास इही सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। गौड़ी

राखु राखन हारी खेद करह और बहुत संताव है। आयु शरण तुहारी कर कर हारियु अनक बहु भांति छोड़ है कतहु नाही। एक बात सुन ताकि ओटा साध संग मिट जाही। कर कृपा संत मिले मोहे तिन ते धीरज पाया। संती मंत दियो मोहे निरपो गुर का शब्द कमाया। जीत लये ओए महा बिखादी सहज सुहिली बाणी। कहो नानक मन भया परगासा पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा ओ अबनासी राया निरपो संग तुम्हारे बस्ते

हो प्रभु कृपाला, राज जोबन अवध जो दिसै, सब किस जोग मह घाटिया, नाम निधान सद नव तन निर्मल, एहो नानक हर तन खाटिया। गौड़ी महला पंजवा, जोग जुगत सुन आयो गुरते, मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ, नौ खंड पृथ्वी इस तन मह रविया, निमक निमक नमस्कारा, दीखिया गुर की मुंदरा कानी, दृढ़े हो एक निरंकारा, पांच चेले मिल पए एकतरा, एक सकै वस किए, दस बैरागने आग्याकारी, तब निर्मल जोगी थिए, परम जराए चराई बेपूता, पंथ एक कर पेखिया, सहज सूख सो कीनी भुगता, जो ठाकुर मस्तक लेखिया, जह पौ नाही तहां आसन बांधे हो, सिंघी अनहत बानी, तत बीचार डंडा कर राखे हो, जुगत नाम मन पानी, ऐसा जोगी वडभागी पेट, माया के बंधन काटे, सेवा पूज करो तिस मूर्त की, नानक तिस पग चाटे। गौड़ी महला पंजवा, अनूप पदार्थ नाम सुनो, सगल त्याए ले मीता, हर औखद जाको गुरदिया, ताके निर्मल चीता रहाओ, अंधकार मिट्यो ते तन ते, गुर शब्द दीपक परगासा, भ्रम की जाली ताकी काटी, जाको साध संगत विश्वासा, तारी ले पवजल तारू बिखड़ा, बोहित साधु संगा, पूर्ण होए मन की आसा, गुर भेट्यो हर रंगा, नाम खजाना भगती पाया, मन तन तृप्त अगाए, नानक हर जियो तां को देवै, जां को हुक्म मनाए। गौड़ी महला पंजवा, दया मया कर प्राण पत मोरे, मोहे अनाथ सरन प्रभ तोरी, अंध कूप मह हाथ दे राखो, पशु सियानप उकत ना मोरी रहाओ, कर्म करावन सब किश तुम ही, तुम समरथ नाही अनहोरी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, से सेवक जिन भाग मथोरी, अपने सेवक संग तुम प्रभराते, पोत पोत भगतन संग जोरी, प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहै, जैसे दृष्ट ओह चंद चकोरी, राम संत मह भेद किश नाही, एक जन कई मह लाख करोरी, जा कहिय प्रगट प्रभ होआ, आनदिन कीर्तन रसन रमोरी, तुम समरथ अपार अति ऊचे, सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी, नानक को प्रभ की जय कृपा, उन संतन कै संग संगोरी। गौड़ी महला पंजवा, तुम हर से तीराते संत हो, नबाहे लेहो मोको पुरख बधाते, ओढ़ पहचाव हुदाते रहाओ, तुमरा मर्म तुमा ही जानिया, तुम पूर्ण पुरख बधाते, राखो सरन अनाथ दीन को, करहो हमारी गाते, तरन सागर बोहित चरण तुम्हारे, तुम जानो अपनी पांते, कर कृपा जिस राखो संगे, ते पार पुराते, ईत ऊत प्रभ तुम समरथा, सब किस तुम रह हाथे, ऐसा निदान देहो मोको, हर जन चले हमारे साथे, निर्गुण यारे को गुण की जय, हर नाम मेरा मन जापे, संत प्रसाद नानक हर पेटे, मन तन शीतल त्रापे। गौड़ी महला पंजवा, सहज समायो देव, मोको सतगुर भये दयाल देव रहाओ, काट जेवरी कियो दासरु, संतन टहलायो, एक नाम को थियो पुजारी, मोको अचर्ज गुर है दिखायो, पयो प्रगास सर्व उजियारा, गुर ज्ञान मन है प्रगटायो, अमृत नाम पियो मन तृप्तया, अन पह ठहरायो,
मान आग्या सर्ब सुख पाए दुखा ठाउ गवायो जो सो प्रसन्न पये प्रभ ठाकुर सब आनंद रूप दिखायो ना किस आवत ना किस जावत सब खेल कियो हर रायो कहो नानक अगम अगम है ठाकुर भगत टेक हर नायो गौड़ी महला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन ता की ओट गही जैरे जिन तारे ब्रह्मांड खंड हर ताको नाम जपी जैरे रहाओ मन की मत त्याग हो हर जन हुक्म बूझ सुख पाई रे जो प्रभ करे सोई भल मानो सुख दुख ओही त्याई रे कोट पतत उधारी खिन मैं करते बार ना लागे रे दीन दर्द दुख भंजन स्वामी

इस करते पूर रहे हो रतनागर रे जाचक जाचै नाम तेरा स्वामी कट कट अंतर सोई रे नानक दास ता की सरनाई जाते वृथा ना कोई रे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कबहू ना मनहु बिसारे इहां उहां सर्ब सुख दाता सगल कटा प्रित पारी रहाओ महाकष्ट काटे खिन पीतर रसना नाम चितारी शीतल शांत सुख हर सरनी जलती अग्न निवारी गर्भ कुंड नरक ते राख पव जल पारी उतारी चरण कमल अराधत मन मह जम की त्रास बदारी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारी गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म ना हारी काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारी कर कृपा अपनो नाम दीजै नानक सद बलिहारी राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म एहो रतन अमोलक साध संगत जप एक खिना रहाव सुत संपत बंता बनोद छोड़ गए बहु लोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चल्यो है मूड़ नंग चोआ चंदन देह फूलिया सो तन धर संग रूलिया मोहे मोहया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है गौड़ी महला पंजवा मन तर तरबे हर नाम नू सागर लहर संसार संसार गुर बोहित पार ग्राम नू रहाओ कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया बिख बिख्या पसरी अत घनी उबरे जप जप हर गुनी मतवारो माया सोया गुर भेटत भ्रम पौ खोया कहो नानक एक त्याया घट घट नदरी आया गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारू तुही एक सेवा थारी गुरह टेक रहाओ अनक जुगत नहीं पाया गुर चाकर ले आया मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साध्या बख्शीस वजहो मिल एक नाम सुख सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से भले नानक तिन मुख उजले गौड़ी महला पंजवा जियरे ओला नाम का अवर जे करन कराम नु तिन मह पहो है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाई है वड्डे भाग हर त्याई है लाख हिकमती जानी है आगे तिल नहीं मानी है अहम बुद्ध कर्म कमावने ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा करे नाम नानक साधु संग मिले गौड़ी महला पंजवा बार ने बलिहार ने लख बरिया नामो हो नाम साहिब को प्राण अधरिया रहाव कर्ण करावन तुही एक जी जंत की तुही टेक राज जोगन प्रभ तू तली तू निर्गुण तू सरगुणी इहां उहां तुम रखे।

हर साध सरन नानक गही गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुन गाइए नीत नीत हर सेविए सास सास हर त्याइए रहाओ संत संग हर मन वसै दुख दर्द अनेरा भ्रम नसै संत प्रसाद हर जापिए सो जन दुख ना व्यापिए जा को गुर हर मंत्र दे सो उभरिया माया अग्न ते नानक को प्रभ मया कर मेरा मन तन वासै नाम हर गौड़ी महला पंजवा रसना जपिए एक नाम इहां सुख आनंद घना आगे जी कै संग काम रहाओ कटिए तेरा अंग रोग तू गुर प्रसाद कर राज जोग हर रस जिन जन चाखिया तां की तृष्णा लाथिया हर विश्राम निध पाया सो बहुर न कत ही ताया हर हर नाम जा को गुर दिया नानक तां का भौ गया गौड़ी महला पंजवा जा को बिसरै राम नाम ताहू को पीर साध संगत मिल हर रवह से गुणी गहीर रहाव जा को गुरमुख हृदय बुद्ध ता कै कर तल नव निध सिद्ध जो जान है हर प्रभ धनी किस नाही ता कै कमी करन हार पछानिया सर्ब सुख रंग माणिया हर धन जा कै ग्रह वसै कहो नानक तिन संग दुख नसै गौड़ी महला पंजवां।

विदे इंद्री वसलै जितनो हरन भरन संपूर्णा चरण कमल रंग रितनो नानक उदरे साध संग किरपा निध मैं जितनो गौड़ी महला पंजवा मोहे दासरो ठाकर को तान प्रभ का खाना रहाओ ऐसो है रे खसम हमारा खिन मह साज सवार नहारा काम करी जे ठाकुर पावा गीत चरित प्रभ के गुण गावा सरन परयो ठाकुर वजीरा तिना देख मेरा मन धीरा एक टेक एको आधारा जन नानक हर की लागा कारा गौड़ी महला पंजवा है कोई ऐसा हो मैं तोरे इस मीठी ते एहो मन हो रह रहा अज्ञानी मनुख भया जो नाही सो लोरे रैन अंधारी कारिया कमन जुगत जित भोरे प्रम तो हारिया अनक विधि कर टोरे कहो नानक कृपा पही साध संगत निध मोरे गौड़ी महला पंजवा चिंता मन करना मई रहाओ दीन दयाला पार ब्रह्म जाकै सिमरन सुख भय अकाल पुरख अगाध बोध सुनत जसो कोट अग खय कृपा निध प्रभ मया धार नानक हर हर नाम लय गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन सरन प्रभु सुख पाए जान दिन बिसरे प्राण सुख दाता सो दिन जात अजाए रहाव एक रैन के पहुन तुम आए बहु जुग आस बंधाए ग्रह मंदर संपै जो दिसै ज्यों तरवर की छाए तन मेरा संपै सब मेरी बाग मिलक सब जाए देवनहारा बिसरियो ठाकुर खिन मह होत पराए पहरै बागा कर इशनाना चोआ चंदन लाए निरपहो निरंकार नहीं चीनिया ज्यों हस्ती नवाए जो होए कृपाल ता सतगुर मेलै सब सुख हर के नाए मुक्त भया बंधन गुरु खोले जन नानक हर गुण गाए गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए रत्न जन्म सफल गुर किया दर्शन को बलहरिय रहाओ जेते सास ग्रास मन लेता तेते ही गुण गाइय।

दयाल सतगुरे अपना ता एह मत बुद्ध पाई है। मेरे मन नाम लए जम बंद ते छूट है सर्व सुखा सुख पाई है। सेव स्वामी सतगुर दाता मन बंचत फल आई है। नाम इष्ट मीत सुत करता मन संग तुहारे चल है। कर सेवा सतगुरे अपने की गुर ते पाई है पल। गुर कृपाल कृपा प्रभ धारी बिन से सर्व अंदेसा। नानक सुख पाया हर कीर्तन मिटियो सगल कलेशा। राग गौड़ी महला पंजवां।

अनेक प्रकारी परिग्रह बेकारी बुरा भला नहीं सुजिए अनेक बंधन माया परमत परमाया गुण निद नहीं गाया मन बिखै ही मह लुजिए जा कोरे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन दर हर सिजिए गौड़ी महला पंजवा सबहू को रस हर हो रहाओ काहू जोग काहू भोग काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू हो दंड धर हो।

कीर्तन हुए उदार, राग गौड़ी माला महल्ला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पायो बाल बुद्ध सुखरे, हरख सोग मान मृत दुख सुख, चित समसर गुर मिले रहाओ, जो लो हो किस सोचो चितो, तौ लो दुखन भरे, जो कृपाल गुर पूरा पेटिया, तौ आनंद सहजे, जेती सियानप कर्म हो किए, केते बंद परे, जो साधु कर्मस्तक धरियो, तब हम मुक्त भए, जो लो मेरो मेरो करतो, तौ लो बिख घेरे, मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को, तब हम सहज सोए, जौ लो पोट उठाई चलियो, तौ लो दान भरे, पोट डार गुरु पूरा मिलिया, तौ नानक निरभय, गौड़ी माला महला पंजवा, भावन त्यागियो री त्यागियो, त्यागियो मैं गुर मिल।

त्यागियो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोबिंद आगियो रहाओ मान अभमान दो समानी मस्तक डार गुर पागियो संपत हरकना आपत दुखा रंग ठाकुर लागियो बास बासरी एक स्वामी उद्यान दृष्टा गियो निरपौ भये संत भ्रम डारियो पूर्ण सर्वागियो जो किस करतै कारण कीनो मन बुरो न लागियो साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जागियो जन नानक ओड़ तुहारी परियो आयो सरनागियो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लागियो गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन सीतल मन सीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाओ लाथी भूख त्रिशन सब लाथी चिंता सगल बिसारी कर्मस्तक गुर पूरे तरेओ मन जीतो जग सारी तृप्त अगाए रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मूके अचरज एक सुनो रे भाई गुरे ऐसी बूझ बुझाई लाहे परदा ठाकर जो पेटे हो तो बिसरी तात पराई कहो ना जाई एहो अचंभव सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच भये बिगासा गुर निधान हृदय लै राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरनी सर्व लोक माया के मंडल गिर गिर परते तरनी रहाओ शास्त्र सिमरत वेद बिचारी महापुरखन इउं कहिया बिन हर भजन नाही निस्तारा सुख ना किन्हू लहिया तीन भवन की लक्ष्मी जोरी बूजत नाही लहरे बिन हर भगत कहां थित पावै फिर तो पहरे पहरे अनक बलास करत मन मोहन पूरन होत ना कामा जल तो कबहू ना बूजत सगल बिरथे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता एह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरण निवारै नानक जन की धूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोको एह बिद को समझावै करता होए जनावै रहाओ अनजानत किस इन्ह कमानो जप तप कशु ना साधा दह दिस लै इह मन दौरायो कमन कर्म कर बांदा मन तन धन भूम का ठाकुर हौ इसका इह मेरा परम मोह कस सूजस नाई एह पैखर पय पैरा तब इह कहां कमावन परिया जब इह कछु ना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किस आपह करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन इहो रचन रचाया कहो नानक करन हार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हर बिन अवर क्रिया बिथे जप तप संयम कर्म कमाणी एह ओरै मूसे रहाओ वरत नेम संयम मह रहता इनका आड़ ना पाया आगे चलन और है पाई ऊहा काम ना आया तीर्थ नाए अर धरनी भ्रमता आगे ठहर ना पावे ऊहा काम ना आवे एह बिद ओह लोगन ही पति आवे चतर वेद मुख बचनी उचरै आगे महल ना पाईए बूझे ना ही एक सुधाखर ओहो सगली चाख चखाईए नानक कहतो एहो बीचारा जे कमावे सो पार ग्रामी गुर सेव हो अर नाम त्याव हो त्याग हो मन हो गुमानी गौड़ी माला पंजवा माधो हर हर हर मुख कहिए हम ते कशु ना होवे स्वामी ज्यो राखो हो त्यों रही है रहाओ क्या किस करे के करने हारा क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लाव हो तित ही लागा।
पूरन खसम हमारे, करहो कृपा सर्व के दाते, एक रूप लेव लाव हो, नानक की बेनंती हर पह अपना नाम जपाव हो। राग गौड़ी माज महल्ला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, दीन दयाल दमोदर राया जीओ, कोट जना कर से

मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन।

जोर तुम्हारे सुख वसा सच शब्द निशान रहाल सबे गल्ला जातियां सुन कै चुप किया कद ही सुरत ना लदिया माया मोहड़िया दे बजारत सारता से अखी डिठड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहया इकस दोहो चौहो क्या गणी सब इकत साध मुठी एक अध नाए रसियड़ा का विरली जाए बुठी भगत सच्चे दर सोहंदे आनंद करह दिन रात रंग रत्ते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात गौड़ी महला पंजवा मांझ दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम आठ पहर आराधिया पूरन सतगुर ज्ञान रहाव जित घट वसै पार ब्रह्म सोई सुहावा थाम जम कंकर।

नारायण दयो गुर गुर सच्चा सिरजनहार गुर तुठे सब किस पाया जन नानक सद बलिहार गौड़ी माज महला पंजवा हर राम राम राम रामा जप पूर्ण होए कामा रहा राम गोविंद जपेंदिया हुआ मुख पवित्र हर जस सुनिए जिस ते सोई भाई मित्र सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे क्यों गोविंद मनो विसारी है जिस सिमरत दुख जाए जिस लड़ लगे जीवी है भवजल पई है पार मिल साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रास नानक उबरे नाम जप दर सच्चे साबास गौड़ी बाज महला।

भोर साज सब फिक्किया तन मन फिक्का होय बिन परमेश्वर जो करे फिट सो जीवन सोय अंचल गह कह साधका तरना एहो संसार पार ब्रह्म आरादी है उदरै सब परवार साजन बंद समित्र सो हर नाम हिरदय दे औगण सब मटाए कह पर उपकार करे मालक जाना थे हो कर हर

कार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी महला नौवा साधो मन का मान त्यागो काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते अहन सपागो रहाओ सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना हरख सोग ते रह अतीता तिन जग तत पछाना उस्तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा जन नानक एहो खेल कथन है किन्हूं गुरमुख जाना गौड़ी महला नौवा साधु रचना राम बनाई एक बिनसै एक अस्थर मान अचरज लखियो ना जाई रहा काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूरत बिसराई झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यों सुपना रह नाई जो दिसै सो सगल बनासै ज्यों बादर की शाई जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहियो राम सरनाई गौड़ी महला नौवा प्राणी को हर जस मन नहीं आवे एहन समग्न रहे माया में कहो कैसे गुण गावे रहाओ पूत मीत माया ममता स्यो एहे विद आप बंधावे मृग तृष्णा ज्यो झूठो इहो जग देख तास उठ धावे भुगत मुक्त का कारण स्वामी मूर्ता ही बिसरावे जन नानक कोटन मैं को भजन राम को पावे गौड़ी महला नौवा साधो एहो मन गहियो ना जाई चंचल तृष्णा संग बस्त है या ते थिर ना रहाई रहाओ कठन क्रोध घट ही के भीतर जेहे शुद्ध सब बिसराई।

तौ सब बिद बने आई गौड़ी महला नौवां। साधु गोविंद के गुण गावो मानस जन्म अमोलक पायो बिरथा काहे गवावो रहाओ। पतत पनीत दीन बंद हर सरन ताहे तुम आवो गज को त्रास मिट्यो जेह सिमरत तुम काहे बिसरावो। ताज अभमान मोह माया पुन भजन राम चित लावो नानक कहत मुक्त पंत एहो गुरमुख हुए तुम पावो। गौड़ी महला नौवां को माई भूलियो मन समझावै वेद पुराण साध मग सुन कर निमखना हर गुण गावै रहाओ। दुर्लभ देह पाए मानस की बिरथा जन्म सरावै माया मोह महा संकट बन तास्यों रुच उपजावै। अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यों नेहो ना लावै नानक मुक्त ताहे तुम मानो जेहे कट राम सुमावै। गौड़ी महला नौवां साधो राम सरन बिसरामा वेद पुराण पढ़े को एह गुण सिमरे हर को नामा रहाव। लोभ मोह माया ममता फुन औ बिखियन की सेवा हरख सोग परसै जे नाहिन सो मूरत है देवा। सुर्ग नरक अमृत बिख ए सब

प्राणी गौड़ी महल्ला नौवा मन रे कहां भयो तै बौरा अहनस औद कटै नहीं जाने भयो लोभ संग होरा रहा जो तन तै अपनो कर मान्यो हर सुंदर ग्रह नारी इनमें कछ तेरो रे नाहिन देखो सोच बिचारी रत्न जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख ना लीन भयो चरणन सियो बिरथा औध सरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावै और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावै गौड़ी महला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल भय भंजन सरन ताहे तुम पार रे रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत तां को नाम ही है मोह धर रे पावन नाम जगत में हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस देह बहुर नह पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गाए करना मैं भव सागर कह पार उतर रे राग गौड़ी अष्टपदियां महला पहला गौड़ी गुआर री एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद निध सिद्ध निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहया भिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल मजार गुर की मत जिए आई कार इन बिद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मलाया निर्मल बाणी भरम चुकाया लाल पए सूहा रंग माया नदर पई बिख थाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जागया शब्द रवे मन हर स्यों लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया पाए बसे जम का पौ भागया साध रहे बादम अहंकारा चित हर स्योरा ता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोए न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी राचो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज घर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति माहे सुमाना लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना नह पंडित नह चतुर सियाना नह भूलो नह परम पुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत सहज सुमाना गौड़ी गुआर री महला पहला मन कुंचर काया उद्यान गुरु अंकस सच शब्द निशान राज द्वार है सोभ सोमान चतराई न चीनिया जाए बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ कर्म है अमृत तस कर ले नन्ना कार न कोई करे राख है आप वड्याई दे नील अनिल अग्न इक ठाई जल निवरी गुरबूझ बुझाई मन दे लिया रहस गुण गाई जैसा कर बाहर सो तैसा बैस गुफा में आखों कैसा सागर डूंघर निरपो ऐसा मुए को कहो मारे कौन न डरे को कैसा डर कवन शब्द पछाने तीने पौन जिन कहया तिन कहन बखानिया जिन बूझया तिन सहज पछानिया देख बीचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त एक नाई तही निरंजन रहया समाई निज कर व्याप रहया निज ठाई पुस्तक करह केते मन प्रीत तन मन सूचै साच सोचीत नानक हर पज नीता नीत गौड़ी गुआर री महला पहला ना मन मरै न कार्ज होय मन वस दूता दुरमत दोय
मन माने गुर ते एक होए, निर्गुण राम गुण है वास होए, आप निवार बिचारे सोए रहाओ। मन भूलो बहु चित विकार, मन भूलो सिर आवे पार, मन माने हर एक अंकार, मन भूलो माया घर जाए, काम गुरु दूर है ना ठाए, हर भज प्राणी रसन रसाए, गैवर हैवर कंचन।

मेल मलाए, गुण संग्रह औगण शब्द जलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए, बिन नावे सब दुख निवास, मनमुख मूड माया चितवास, गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखे आस, मन चंचल धावत फुन धावे, साचे सूचे मैल ना पावे, नानक गुरमुख हर गुण गावे, गौड़ी ग्वार री महला पहला, हौ मैं करत्या नह सुख होए, मन मत झूठी सच्चा सोए, सगल बगूते पावे दोए, सो कमावे तुर लिखिया होए, ऐसा जग देखिया जुआरी, सब सुख मांगे नाम बिसारी रहाऊ, अदिष्ट दिसै

भगत दुखे आगल होए, सगल विकारी हार परोए, एक बिना झूठे मुक्त ना होए, कर कर करता देखे सोए, तृष्णा अगन शब्द बुझाए, दूजा परम सहज सुपाए, गुरमति नाम हृदय वसाए, साची बाणी हर गुण गाय, तन मह साचो गुरमुख पाओ, नाम बिना नाही निज ठाओ, प्रेम परायण प्रीतम राव, नदर करे ता बूझे नाव, माया मोह सर्ब जंजाला, मनमुख को चील कुशत बिकराला, सतगुर सेवे चूके जंजाला, अमृत नाम सदा सुख नाला, गुरमुख बूझे एक लिवलाए, निज करवासे साच समाए, जम्मण मरना ठाक रहाए, पूरे गुरते एह मत पाए, कथनी कथो ना आवे और, गुर पुछ देखिया नाही दर होर, दुख सुख पाणे तिसे रजाए, नानक नीच कह लिवलाए, गौड़ी महला पहला, दूजी माया जगत चित वास, काम क्रोध अहंकार बनास, दूजा

होए। तरन गगन लह देखो दोए, नारी पुरख सबाई लोए। रव सस देखो दीपक उजियाला, सर्व निरंतर प्रीतम बाला। कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुर मोह को एक बुझाया। एक निरंजन गुरमुख जाता, दूजा मार शब्द पछाता। एको हुक्म वरतै सब लोई, एक सते सब उपत होई। राहा दोवै खसम एको जान, गुर कै शब्द हुक्म पछान। सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सलाही। गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे ता साचा। मुक्त भेद क्या जाने काचा, ऐसा जोगी जुगत बिचारे। पंच मार साच उर धारै रहाउ, जिसकै अंतर साच वसावे। जोग जुगत की कीमत पावे, रव सस एको ग्रह उद्याने। करनी कीर्त कर्म समाने, एक शब्द एक भिख्या मांगे। ज्ञान ध्यान जुगत सच जागे, तै रच रह ना बाहर जाए। कीमत कौन रह लिव लाए, आपे मेले परम चुकाए। गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की सेवा शब्द विचार। हऊ मैं मारे करनी सार, जप तप संयम पाठ पुराण। कहो नानक अपरम परमान, गौड़ी महला पहला। खिमा गही व्रत सील संतोखं, रोग ना व्यापै ना जम दुखं।

0: निरपव जोगी निरंजन त्यावे अण दिन जागे सच लिव लावे सो जोगी मेरे मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारी जरा मरण गत गर्भ निवारी आप तरह पितरी निस्तारी सतगुर सेवे सो जोगी होए पै रच रह सो निरपो होए जैसा सेवै तैसो होए नर निह केवल निरपो नाओ अनाथा नाथ करे बल जाओ पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बाहर एको जाने गुर कै शब्दे आप छाने
1: साचै शब्द दर निसाने
0: शब्द मरै तिस निज कर वासा आवै ना जावै चूकै आसा गुर कै शब्द कमल परगासा जो दीसै सो आसन रासा काम क्रोध बिख भूख प्यासा नानक बिरले मिलै उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिलै सुख होई दुख विसरै पावै सच सोई दर्शन देख पई मत पूरी अठसठ मज्जन चरना धूरी रहाव नेत्र संतोखे एक लिवतारा जेवा सूची हर रस सारा सच करनी अब अंतर सेवा मन तृप्ता सिया अलख अपेवा जह जह देखो तह तह साचा बिन बूझे झगरत जग काचा गुर समझावै सोजी होई गुरमुख विरला बूझै कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु भये बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ त्रि भवन धारी

जाने वेद की विपत पड़ी पछताने जह प्रभ सिमरे तही मन माने ऐसा गर्भ बुरा संसार है जिस गुर मिले तिस गर्भ निवारे रहाउ। बाल राजा माया अहंकारी जगन करे बहु भार अफारी बिन गुर पूछे जाए प्यारी हरी चंद दान करे जस लेवे बिन गुर अंत ना पाए अपेवे आप पलाए आपे मत देवे दुर्मत हरनाक्ष दुराचारी प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी प्रहलाद पुदारी कृपा धारी भूलो रावण मुग्ध अचेत लूटी लंका शीस समेत गर्भ गया बिन सतगुर हेत सहस बाहु मद कीट मह खासा हर नाक्ष ले नखो बिदासा दैत संघारे बिन भगत अभ्यासा जरा संद काल जमन संघारी रक्त बीज काल नेम बिदारी दैत संघार संत निस्तारी आपे सतगुर शब्द बीचारी दूजे भाए दैत संघारे गुरमुख साच भगत निस्तारे बूढ़ा दुर्योधन पत खो।

क्यों सुख पावे परम पलानिया, एक तिल भूले बहोर पछतानिया, कंस केस चंडूर ना कोई, राम ना चीनिया अपनी पत खोई, बिन जगदीश ना राखे कोई, बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए, गुरमत धर्म धीर जहर नाए, नानक नाम मिले गुण गाए, गौड़ी महला पहला, चोआ चंदन अंक चढ़ावो, पाट पटंबर पहर हंडावो, बिन हर नाम कहां सुख पावो, क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो, बिन जगदीश कहां सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला, लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोल शिंगार करे अत प्यारी, बिन जगदीश भजे नित खुआरी, दर कर महला सेज सुखाली, अहनस फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो देह दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लश्कर ने बखवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे देवाजे, सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बलावो, ताज कुलह सिर शत्र बनावो, बिन जगदीश कहा सच पावो, खान मलूक कहावो राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सवरस काजा, हों मैं ममता गुर शब्द वसारी, गुरमत जानिया हृदय मरारी, प्रणवत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक ना जान से अवरे, परपंच ब्याद क्या गै कवरे, भाई मिले सच साचे साचरे, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाए मिले मन धोई, रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत अगन जगत पर जारे, सो उबरै गुर शब्द बीचारे।

ब्राह्मण हितकारी, क्रोध बनासै सगल विकारी, पत मत खोवै नाम वसारी, पर कर चीत मनमुख डोलाए, गल जेवरी धंधै लपटाए, गुरमुख छूट सहर गुण गाए, ज्यो तन विधवा पर को देई, काम दाम चित पर वस सेई, बिन पेर त्रिपत ना कबहू होई, पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद प्राण पढ़ै सुन थाटा, बिन रस राते मन बहु नाटा, ज्यो चातरक जल प्रेम प्यासा, ज्यो मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी त्रिपतासा, गौड़ी महला पहला, हठ कर मरै न लेखै पावै, वेस करै बहु भस्म लगावै, नाम विसार बहुर पछतावै, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम बसार सह जम दुख रहाव, चोआ चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर, नाम बसारे है सब कूड़ो कूर, नेजे वाजे तखत सलाम, अदकी तृष्णा व्यापै काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम, वाद अहंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावह नाम सुहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट, तिसको वाह वाह जे वाट दिखावे, तिसको वाह वाह जे शब्द सुनावे, तिसको वाह वाह जे मेल मलावे, वाह वाह तिसको जिसका एहो जियो, गुर शब्दी मत अमृत पियो, नाम वडाई तुद भाणे दियो, नाम बिना क्यों जीवा माए, अन दिन जपत रहो तेरी सरनाए, नानक नाम रत्ते पत पाए, गौड़ी महला पहला, हम मैं करत भेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत बिरले मन मानिया, हौ हौ करत नहीं सच पाईए, हौ मैं जाए परम पद पाईए रहाऊ, हौ मैं कर राजे बहुतावह, हौ मैं खपह जन्म मर आवह, हौ मैं निवरै गुर शब्द विचारै, चंचल मत त्यागै पंच संघारै, अंतर साच सहज घर आवह, राजन जान परम गत पावह, सच करनी गुर परम चकावै, निरपो कै कर ताड़ी लावे, हौ हौ कर मरना क्या पावे, पूरा गुर भेटे सो झगर चकावे, जेती है तेती केहो नाही, गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही, हौ मैं बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे, गौड़ी महला पहला, प्रथमे ब्रह्मा काले घर आया, ब्रह्म कमल पयाल ना पाया, आग्या नहीं लीनी भरम भलाया, जो उपजै सो काल संघारिया।

पालना जो है मनमुख को आवत जावत दुख मोह है रहाओ। अपियो पियो अकथ कथ रही है निज कर बहस सहज कर लही है हर रस माते एहो सुख कही है। गुरमत चाल निश्चल नहीं डोलै गुरमत साच सहज हर बोलै पीवै अमृत तत्व रोलै सतगुर देखिया दीखिया लीनी मन तन अर्पियो अंतरगत कीनी गत मित पाई आत्म चीनी भोजन नाम निरंजन सार परमहंस सच जोत अपार जह देखो तह एकंकार रह निरालम एका सच करनी परम पद पाया सेवा गुर चरणी मन ते मन मानिया चूकी अहं भरमणी इन विद कौन कौन नहीं तारिया हर जस संत भगत निस्तारिया प्रभ पाए हम अवर ना पारिया साच महल गुर अलख लखाया निश्चल महल नहीं छाया माया साच संतोखे परम चुकाया जिनकै मन वसिया सच सोई तिनकी संगत गुरमुख होई नानक साच नाम मल खोई गौड़ी महला पहला राम नाम चित रापै जाका उपजंप दर्शन की जय ताका राम ना जपो अपाग तुम्हारा जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा रहाओ। गुरमत राम जपै जन पूरा तित घट अनहत बाजे तूरा जो जन राम भगत हर प्यार से प्रभ राखे कृपा धार जिनकै हिरदय हर हर सोई तिनका दर्श परस सुख होई सर्व जिया मैं एको रवे मनमुख अहंकारी फिर जूनी पवे सो बूझै जो सतगुर पाए हउ मैं मारे गुर शब्दे पाए अर्ध उर्द की संध क्यों जाने गुरमुख संध मिले मन माने हम पापी निर्गुण को गुण करिए प्रभ हुए दयाल नानक जन तरिए। सोलह अष्टपदियां ग्वारी गौड़ी किया गौड़ी बैरागण महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद ज्यो गाई को गोयली राख है कर सारा एहन सुपाल है राख ले आत्म सुख तारा इत उतराखो दीन दयाला तो शरणागत नजर निहाला रहा जह देखो तह राव रहे राख राखन हारा तू दाता भुगता तू है तू प्राण अधारा किरत पया अद ऊर दी बिन ज्ञान बिचारा बिन उपमा जगदीश की बिन सैना अधियारा जग बिन सत हम देखिया लोभे अहंकारा गुर सेवा प्रभ पाया सच मुक्त द्वारा निज कर महल अपार को अपरंपर सोई बिन शब्द तेर को नहीं बूझै सुख होई क्या ले आया ले जाए क्या फस है जम जाला डोल बद्दा कस जेवरी आकाश पताला गुरमत नाम ना विसरै सहजे पत पाईए अंतर शब्द निदान है मिल आप गवाईए नदर करे प्रभ अपनी गुण अंक समावै नानक मेल ना चूकई लाहा सच पावै। गौड़ी महला पहला गुर प्रसादी बूझ ले तो हुए नबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा जे लख कर्म कमावही बिन गुर अंधियारा रहाओ। अंधे अकली बाहरी क्या तिन स्यों कही है बिन गुर पंथ ना सूझई कित बिद निर्बही है।

अपनो नहीं पाया। मीठे को कौड़ा कह, कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करह, ऐसा कल मैं दीता। चेरी की सेवा करह, ठाकुर नहीं दिस, पोखर नीर वरोली है, माखन नहीं रिस। इस पद जो अर्थ आए ले, सो गुरु हमारा, नानक चीन आप को सो अपर अपारा। सब आपे आप वर्तदा, आपे परमाया, गुर किरपा ते बूझी है, सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारी महला तीजा, अष्टपदिया, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पाओ, परमे भूले आवो जाओ। मनमुख सूतक कबह ना जाए, जिचर शब्द ना पीजे हर कह नाए रहाओ। सबो सूतक जेता मोह आकार, मरमर जम्मे वारो वार। सूतक अगन पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाहे। सूतक कर्म ना पूजा होए, नाम रत्ते मन निर्मल होए। सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे ना जन्मे काल ना खाए। सास्त सिमरत सोध देखो कोय, विण नामे को मुक्त ना होए। जोग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल मह गुरमुख उतरस पार। साचा मरे ना आवे जाए, नानक गुरमुख रहै समाय। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा। हर जियो राखो हिरदय उर तारा, गुरमुख सोभा साच द्वारा। पंडित हर पढ़ तजोह विकारा, गुरमुख भोजन उतरोह पारा। रहाओ गुरमुख विचो हो मैं जाए, गुरमुख मैल ना लागे आए। गुरमुख नाम वसै मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई। गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रत्ते सुख होई। अपना मन प्रबोध हो बूझो हो सोई, लोक समझावो हो सुने ना कोई। गुरमुख समझो हो सदा सुख होई, मनमुख डंप बहुत चतराई। जो किछ कमावे सो थाए ना पाई, आवे जावे थोर ना काई। मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बागजियो लाए बह नित ध्याना। जम पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई। गुर प्रसादी मिले हर सोई।

इहु संसारा नित तीर्थ नावै न जाए अहंकारा बिन गुर भेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हऊ मैं मारे गुर कै शब्द पंच संघारे आप तरे सगले कुल तारे माया मोहे नटबाजी पाई मन मुख अंध रहे लपटाई।

फिरै अहंकारी, आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोहे अत परम पलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई, नाम रत्ते सदा बैरागी, गिरही अंतर साच लिवलागी, नानक सतगुर सेवह सेवड भागी, गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तिसते उपजे देव मोह प्यासा, त्रै गुण भरमे नाही निज करवासा, हम हर राखे सतगुरु मलाया, अन दिन भगत हर नाम दिरड़ाया, रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पड़वाद बखाण है सिर मारे जमकाला, तापना चीन है बन है पांड पराला, मनमुख अज्ञान कुमारग पाए, हर नाम बसारिया बहु कर्म दिरड़ाए, पवजल डूबे दूजै पाए, माया का मोहताज पंडित कहावे, बिख्या राता बहुत दुख पावे, जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे, गुरमुख जम काल नेड़ ना आवे, हौ मैं दूजा शब्द जलावे, ना मेरा ते हर गुण गावे, माया दासी भगतां की कार कमावे, चरनी लागे ता महल पावे, सद ही निर्मल सहज समावे, हर कथा सुन है से तनवंत दिस है जो गुमाही, तिनको सब निवह अन दिन पूज कराही, सहजे गुण रवह साचे मन माही, पूरे सतगुर शब्द सुनाया, त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया, नानक हौ मैं मार ब्रह्म मलाया, गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा वेद पढ़े वाद वखा।

दुख खाए, जम डंड सह सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की सरनाई, हों मैं मार सच लिवलाई, सदा रह हर नाम लिवलाई। सतगुर सेव है से जन निर्मल पवित्ता, मन स्यों मन मिलाए सब जग जीता, इन विद कुशल तेरे मेरे मीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हिरदय नाम विचों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द वजाए, सतगुर ते कमन कमन ना सीधो मेरे भाई, भगती सीधे दर सोभा पाई, नानक राम नाम वड्याई, गौड़ी महला तीजा, त्रै गुण बखाणे भरम ना जाए, बंधन ना टूटे है मुक्त ना पाए, मुक्त दाता सतगुर जुग माहे, गुरमुख प्राणी भरम गवाए, सहज धुन उपजै।

तै पाई। बिख का माता बिख माही समाई, माया कर मूल जंतर परमाए। हर जियो विसरिया दूजै पाए, जिस नदर करे सो परम गत पाए। अंतर साच बाहर साच वरताए, साच ना छपै जे को रखै छपाए। ज्ञानी बूझ सहज सुपाए, गुरमुख साच रहिया लिभलाए। हमें माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मलाए। सतगुर दाता शब्द सुनाए, धावत राखे ठाक रहाए। पूरे गुर ते सो जी पाए, आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई। तिस बिन दूजा अवर ना कोई, नानक गुरमुख बूझै कोई। गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरमुख पावे। नामो सेवे नाम सहज समावे, अमृत नाम रसना नित गावे। जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे। अनगिन हिरदय जपो जगदीसा, गुरमुख पावो परम पद सूखा। रहाओ हिरदय सूख पया परगास, गुरमुख गावे है सच गुणतास। दासन दास नित होवे दास, ग्रह

मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई, मोह कटंब स्यों प्रीत ना होई, जां हिरदय वसिया सच सोई, गुरमुख मन बेदिया अस्थिर होई, हुकम पछाणे बूझे सच सोई।

तन सब जग महलोए। गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिगसै अन दिन लिव लागी। सहजे सच मिलिया प्रसादी सतगुर पाया पूरे वडभागी। हौं मैं ममता दुर्मत दुख नास जब हृदय राम नाम गुणतास। गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास जब हृदय।

मन करहला अत निर्मला मल लागी हो मैं आई परतख पीर घर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाई मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पलाए उपाय किते ना लभई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिवलाए कर जाए पावह रंग महली गुर मेले हर मिलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारी है जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगती मल लह जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगाह पहनाया हर आप लया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुख कार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा मन करहला विचारिया विचार देख संभाल बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल मन करहला गुर गोविंद संभाल रहाओ मन करहला विचारिया मनमुख फाथिया महा जाल गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल मन करहला मेरे प्यारिया सत संगत सत गुर भाल सत संगत लग हर त्याई है हर हर चले तेरे नाल मन करहला वडभागिया हर एक नदर निहाल आप छडाए छुट्टी है सत गुर चरण संभाल मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत संभाल गुर नौनिद नाम वखालिया हर दात करी दयाल मन करहला तू चंचला चतुराई छड विकराल हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन करहला बड़ भागिया तू ज्ञान रतन संभाल गुर ज्ञान खड़गा हाथ धारिया जम मारियड़ा जमकाल अंतर निदान मन करहले भ्रम पवह बाहर पाल गुर पुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा संभाल हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द संभाल हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल वड भागी गुरमुख पाया जन नानक नाम संभाल राग गौड़ी गुआरी महला पंजवा अष्टपदियां एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद जब इहो मन मह करत गुमाना तब इहो बावर फिरत बेगाना जब इहो हुआ सगल कीड़ी ना तातेर मैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मशकीनी सतगुरे अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको इहो जान समंदा तब सगले इस मेलह फंदा मेर तेर जब इनह चुकाई ताते इस संग नहीं बैराई जब इने अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल भारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किस कर माने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एकी बूझिया तब ते इसनो सब किस सूझिया जब इह तावे माया अर्थी नह त्रिपतावे नह ते सलाथी जब इसते इह होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला
कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदर मह दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी, कर्म करामन सब किछ एक है, आपे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना नेरै सब कह संगा, सच सलाहन नानक हर रंगा, गौड़ी महला पंजवां, गुर सेवा ते नामे लागा, तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा, तिसकै हिरदै रविया सोए, मन तन सीतल निश्चल होए, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहां उहां जो काम तेरे रहाउ, जास जपत पौ अपदा जाए, धावत मनुआ आवै ठाए, जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत एह होमै भागे, जास जपत बस आवै पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा, जास जपत एह तृष्णा बुझै, जास जपत हर दरगाह सिजै, जास जपत कोट मिटह अपराध, जास जपत हर होवै साद, जास जपत मन शीतल होवै, जास जपत मल सगली खोवै, जास जपत रतन हर मिलै, बहुर न छोड़ै हर संग हिलै, जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सहज निवास, जास जपत एह अग्न ना पोहत, जास जपत एहो काल ना जोहत, जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाथा, जास जपत मुश्किल कछु ना बने, जास जपत सुन अनहत तुने, जास जपत एह निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए, गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, गौड़ी महला पंजवां, गुर का शब्द हृदय अंतर तारे, पंच जना स्यो संग निवारे, दस इंद्री कर राखे वास, ताकै आत्मै होई प्रगास।

छपना, सहजे पूजन सहजे पाओ, सहजे मिट्यो सगल दुराओ, सहजे हुआ साधु संग, सहज मिलियो पार ब्रह्मन संग, सहजे ग्रह में सहज उदासी, सहजे दुबदा तन की नासी, जा कै

सहज कथा मह आत्म रसिया तां कै संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे ऋण चुनकार सुहाया तां कै कार पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयो कर्मा सहजे गुर भेट्यो सच धर्मा जां कै सहज भया सो जाने नानक दास तां कै कुर्बान गौड़ी महला पंजवां प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कटंब संग जुरिया भोजन अनक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करहंगे बपरे तमन अस्थान जो कबह ना तरे तमन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी मैं सर पर मरना ब्रह्मपुरी निह चल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रै गुण माया बिनस बिताला गिर तर धरन गगन अर तारी राव सस पवन पावक नीरारी दिन सरैन बरत अर पेदा सासत सिमरत बिन सिंगे बेदा तीरथ देव देहरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती धोती डंडौत प्रसादन भोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुरक अर हिंदू पस पंखी अनक जोन जिंदू सगल पासार दिसै पासारा बिनस जाए गो सगल अकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निहचल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अनपो नगर तहां सदवसै तह पौ परमा सोग न चिंता आवन जामन मृत ना होता तह सदा आनंद अनहत आखारी भगत वसह कीर्तन आधारी पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे तां का विचार कहो नानक जिस कृपा करे निश्चल थान साध संग तरे गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसह वडियाई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जे दुबदा मार गवावे इसह मार राज जोग कमावे रहाओ जो इस मारे तिसको पहो नाही जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझै जो इस मारे सो दरगाह सिजै जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस होवै गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो निश्चल तनी जो इस मारे सो वड भागा जो इस मारे सो अन दिन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता जो इस मारे सोई सो ज्ञानी जो इस मारे सो सहज त्यानी इस मारी बिन थाए ना परे कोट कर्म जाप तप करे इस मारी बिन जन्म ना मिटे इस मारी बिन जमते नहीं छुटे इस मारी बिन ज्ञान ना होई इस मारी बिन झूठ ना धोई इस मारी बिन सब किछ मैला इस मारी बिन सब किछ जौला जाको भये कृपाल कृपा निद तिस भई खलासी होई सगल सिद्ध गुर दुबदा जाकी है मारी कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी गौड़ी महला पंजवा हर स्यों जुरे ता सबको मीत हर स्यों जुरे ता निश्चल चीत हर स्यों जुरे ना व्यापै काड़ा हर स्यों जुरे ता हुए निस्तारा।

दास नीच कुल सुने है, तिसकै संग खिन मह उदर है। कोट मज्जन जा कै सुन नाम, कोट पूजा जा कै है ध्यान। कोट पुन सुन हर की बाणी, कोट फला गुरते बिद जानी। माने अपने मैं फिर चेत, बिनस जाहे माया के हेत। हर अबना

जाकै काम ना जो है दूत, जाकै काम तेरा वड गमर, जाकै काम हो वह तू अमर, जाके चाकर को नहीं दान, जाके चाकर को नहीं बान, जाके

भांत जाकी दृष्ट हुए सदा निहाल मन मेरे करता की काल ना को चतर ना ही को मूड़ा ना को हीन ना ही को सूरा जित को लाया तित ही लागा सो सेवक नानक जिस भागा गौड़ी महला पंजवा बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी त्यों जीव है साकत नाम बिसारी एक निमख जो सिमरन मह जिया कोट दिन सलाख सदा थिर थिया रहाओ बिन सिमरन त्रिग कर्म करास काग बतन बिस्टा महवास बिन सिमरन पय कुकर काम साकत बेसुआ पूत नाम बिन सिमरन जैसे सींग सतारा बोलह कूर साकत मुख कारा बिन सिमरन घर दब की न्याई साकत थान पृष्ट फराई बिन सिमरन कूकर हर काया साकत लोभी बंद ना पाया बिन सिमरन है आत्म काती साकत नीच तिस कुल नहीं जाती जिस भया कृपाल तिस सतसंग मलाया कहो नानक गुर जगत तराया गौड़ी महला पंजवा गुर कै बचन मोहे परम गत पाई गुर पूरै मेरी पैज रखाई गुर कै बचन त्यायो मोहे ना।

गुर कै बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप। गुर कै बचन मिटिया मेरा परम, गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म। गुर कै बचन कीनो राज जोग, गुर कै संग तरिया सब लोग। गुर कै बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर कै बचन पाया नाउ निद। जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा, तिस की कटिया जम की पासा। गुर कै बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म। गौड़ी महला पंजवां, तिस गुर को सिम

गुर की रेण नित मज्जन करूं, जन्म जन्म की हम मैं मल हरूं, किस गुर को चलावूं पाखा, महा अग्न ते हाथ दे राखा, किस गुर कै ग्रह ढोवूं पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी, किस गुर कै ग्रह पीसो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत, जिन

मेरा गुर समराथा। गौड़ी महला पंजवा, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देव, नाम बिना त्रिग त्रिग असनेह।

ज्यों मृतक मिथ्या श्रृंगार नाम बसार करे रस भोग सुख सुपने नहीं तन मह रोग नाम त्याग करे अनुकाज बिनस जाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत ना लावे कोट कर्म करतो नरक जावे हर का नाम जिन मन ना अरादा चोर की न्याई जम पुर बादा लाख अडंबर बहुत बिसथारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सोई जान ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी महला पंजवा आद मद ज्यो अंत न बाहै सो साजन मेरा मन चाहे हर की प्रीत सदा संग चाले दयाल पुरख पूर्ण प्रतपाले रहाव बिन सतनाही छोड़ न जाए जह पेखा तह रहे आसमाए सुंदर सुगढ़ चतुर जी दाता भाई पूत पिता प्रभु माता जीवन प्राण

सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग। पूर्ण पुरख नव तन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला। कहो नानक हर हर पद चीन, सर्बस नाम भगत कौ दीन। राग गौड़ी माज महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। खोजत फिरे अस

सुन सुन पंत डराओ बहुत पै हारिया, मैं तक्की ओट संता लेहो उभारिया, मोहन लाल अनूप सर्ब साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो देखारिया, मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया, सब गुण किस ही नाही हर पूर भंडारिया, चहो दिस जपिए नाओ सूख सवारिया, मैं आही ओड़ तुहार नानक बलिहारिया, गुर काढ़ेओ पुजा पसार मोह कुपारिया, मैं जीतेओ जन्म अपार बहुर ना हारिया, मैं पायो सर्ब निदान अकथ कथारिया, हर दरगाह शोभावंत बाहां लुडारिया, जन नानक लद्दा रतन अमोल अपारिया, गुर सेवा भौजन करिए कहो पुकारिया, गौड़ी महला पंजवां एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, नारायण हर रंग रंगो जप जिहवा हर एक मंगो रहाओ, ताज हों मैं गुर ज्ञान भजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसै सो संग ना गयो साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहियो कोट मदे किने गुरमुख लहियो, हर संतन कर नमो नमो नौ निद पाव है अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निधो, काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दोहों ते रहियो, दुख अंधेरा करते मिटियो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेव्या सो पार परियो जन नानक गुरमुख जगत तरियो, महला पंजवां गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गए, मेरे मन सब सुख पायो रहाओ, बल तो जल तो तौकिया गुर चंदन सीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दी पायो, पावक सागर गहरु चर संतन नाव तरायो, ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पुजा अपायो, पौ खंडन दुख भंजनो भगत वचल हर नायो, अनाथ है नाथ कृपाल दीन समर्थ संत उठायो, निर्गुण यारी की बेनती देहो दर्स हर रायो, नानक सरन तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो, गौड़ी महला पंजवां रंग संग बिखिया के भुगा, इन संग अंध न जानी हौ संचो हौ खातता सगली अवध बेहानी रहाओ, हौ सूरा प्रधान हौ को नाही मुझे समानी, जो बनवंत अचार कुलीना मन में हुए गुमानी, ज्यो उलझायो बाद बुद्ध का मरत्या नहीं बिसरानी, पाई मीत बंदप सके पाछे तिन्हू कौ संपानी, जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी, अहम बुद्ध सुच कर्म कर एहे बंधन बंधानी, दयाल पुरख कृपा।

कूड़ मुट्ठी कूड़ियारी, कूड़ निवारी गुरमत सारी, जुए जन्म ना हारी। गुर शब्द सेवे सच समावे, बिचो हम मारी। हर का नाम हृदय बसाए, ऐसा करे सिंगारू। नानक कामन सहज समाणी, जिस साचा नाम आधारू। मिल मेरे प्रीत मां जियो, तुद बिन खरी निमाणी। मैं नैनी नींद न आवे जियो, पावे अन्न ना पानी। पानी अन्न ना पावे, मरिए हावे। बिन फिर क्यों सुख पाईए, गुर आगे करो बिनंती। जे गुर पावे ज्यो मिले तिवें मिलाईए। आपे मेल लए सुख दाता, आप मिलिया घर आए। नानक कामन सदा सुहागण, ना फिर मरे ना जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो। हर कै सहज सुपाए, मन मोहन मोए लिया जियो। दुबदा सहज समाए, दुबदा सहज समाए। कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए। एहो शरीर कूड़ कसत भरिया, कल ताई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहज धुन उपजे, बिन भगती मैल ना जाए। नानक कामन पिरह प्यारी, विचों आप गवाए। कामन पिर पाया जियो, गुर कै भाई प्यारे। रैण सुख सुती जियो, अंतर उर तारे। अंतर उर तारे मिलिए प्यारे, अन दिन दुख निवारे। अंतर महल पिर रावे कामन, गुरमती विचारे। अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे। नानक सच मिली सुहागण, गुर कै हेत अपारे। आव हो दया करे जियो, प्रीतम यत प्यारे। कामन बिनो करे जियो, सच शब्द सिंगारे। सच शब्द सिंगारे हम मैं मारे, गुरमुख कार्य सवारे। जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझै गुर बिचारे। मनमुख काम व्यापी, मोहि संतापी। किस आगे जाए पुकारे, नानक मनमुख थाऊ ना पाए। बिन गुर अत प्यारे, मुंद एयाणी भोली निगुणिया जियो। फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिए जियो। आपे बख्शन हारा, अवगुण बख्शन हारा। कामन कंत प्यारा, कट कट रहे आसमाई। प्रेम प्रीत पाए भगती पाईए, सतगुर बूझ बुझाई। सदा आनंद रहे दिन राती, अन दिन रहे लिवलाई। नानक सहजे हर वर पाया, सा तन नौ निद पाई। गौड़ी महला तीजा, माया सारे सबल वरतै जियो। क्यों कर दुत्तर तरिया जाए, राम नाम कर बोहे था जियो। शब्द खेवट विच पाए, शब्द खेवट विच पाए। हर आप लंघाए, इन बिद दुत्तर तरिए। गुरमुख भगत प्राप्त होवे, जीवतियां इउ मरिए। जिन मह राम नाम किलविख काटे, पए पवित शरीरा। नानक राम नाम निस्तारा, कंचन पए मनूरा। स्त्री पुरख काम व्यापे जियो, राम नाम की बिद नहीं जानी। मात पिता सुत भाई खरे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी। डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी, हम मैं तात संसारे। जो आया सो सब को जासी, उभरे गुर विचारे। गुरमुख होवे राम नाम बखाने, आप तरे कुल तारे। नानक नाम बसे घट अंतर, गुरमत मिले प्यारे। राम नाम बिन को थिर नाही जियो, बाजी है संसारा। दृढ़ भगत सच्ची जियो।

सेवा सुरत भगत एह साची विचों आप गवाई है। हम मतहीन मूरख मुगद अंधे सतगुर मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सहावे अन दिन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे। जुग जुग भगत प्यारे हर आप सवारे आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए। आपे गुणदाता अवगुण काटे हृदय नाम वसाए। नानक सद बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए। गौड़ी महला तीजा।

करियावहु नाह प्यारी। हों माने अर्पी सब ताने अर्पी, अर्पी सब दिशा। हों सेरे अर्पी तिसमीत प्यारे, जो प्रभ दे संदेसा। अर्पया ता सीस सुथान गुर पह, संग प्रभु दिखाया। खिन माहे सगला दुख मिटिया, मनो चिंदिया पाया। दिन रहन रलियां करे कामन, मिटे सगल अंदेसा। बिनवंत नानक कंत मिलिया, लोड़ ते हम जैसा। मेरा मन आनंद भया जियो, वजी वादाई। कर लाल आया प्यारा, सब तिखा बुझाई। मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर, सखी मंगल गाया। सब मीत बंद पहरख उपजिया, दूत थाऊ गवाया। अनहत वाजे बजे है घर मह, फिर संग सेज विछाई। बिनवंत नानक सहज रह, हर मिलिया कंत सुखदाई। गौड़ी महला।

जह साध संत इकत्तर होवे है तहां तुझे त्यावही। कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा, बिनवंत नानक दर्श प्यासी मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली, मोहन तू मान है एक जी अवर सब राली। मान है ता एक अलेख ठाकुर जिन्ह सब कल तारिया, तुद बचन गुर कै वस किया आदि पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहिया आप सब कल तारिया, बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक सरन तुम्हारिया। मोहन तुद सत संगत ध्यावै दर्श ध्याना, मोहन जम नेर ना आवै तुद जपै निधाना। जम काल किनको लगे नाही जो एक मन त्यावे, मन बचन कर्म जे तुद आराध है से सबे फल पावे। मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्श सुगियाना, बिनवंत नानक राज निश्चल पूरन पुरख भगवाना। मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे, मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे, तारिया जहान

न आया। बेअंत गुण तेरे कथे न जाही, सतगुरु पुरख मरारी। बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारी। गौड़ी महला पंजवा सलोक, पतत असंख पनीत कर, पुनः पुनः बलिहार। नानक राम नाम जप पाव को, तिन किल बिख दाहनहार। संत जप मना तू राम नारायण, गोविंदा हर माधु। त्याए मना मरार मुकंदे, कटिए काल दुख फादु। दुख हरन दीन सरन श्री तहर, चरण कमल अराधी है। जम पंथ बिखड़ा अग्न सागर, निमक सिमरत साधी है। कल मलै दहता सुध करता, दिन सरैन अराधु। बिनवंत नानक करहु कृपा, गोपाल गोविंद माधु। सिमर मना दामोदर दुख हर, पै पंजन हर राया। श्री रंगो दयाल मनोहर, भगत वच्छल बिरदाया। भगत वच्छल पुरख पूरन, मन है चिंदिया पाईए। ताम अंध कूप ते उधार है, नाम मन वसाईए। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन, गुण अनक भगती गाया। बिनवंत नानक करहु कृपा, पार ब्रह्म हर राया। चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर, सर्व कला जिन तारी। करुणा में समरथ स्वामी, कट कट प्राण आधारी। प्राण मन तन जी दाता, बेअंत अगम अपारू। शरण जोग समरथ मोहन, सर्व दुख बिदारू। रोग सोग सब दुख बिन सह, जपत नाम मरारी। बिनवंत नानक करहो कृपा, समरथ सब कल तारी। गुण गाओ मना अचुत अबनासी, सब ते ऊच दयाला। बिसंबर देवन को एक है, सर्व करे प्रतपाला। प्रतपाल महादयाल दाना, दया तारी सब किसे। काल कंटक लोभ मोह नासे, जी जा के प्रभ बसे। सो प्रसन्न देवा सफल सेवा, पई पूर्ण काला। बिनवंत नानक इच पुन्नी, जपत दीन दयाला। गौड़ी महला पंजवा, सुन सखिए मिल उद्म करेहा। मनाए लह हर कंते, मान त्याग कर भगत ठगौरी। मोह है साधु मंते, सखी वासे आया फिर छोड़ ना जाई। एह रीत भली भगवंत है। नानक जरा मरन पै नरक निवारै, पनीत करै तिस जनतै। सुन सखिए एह भली बिनंती, एहो मतांत पकाइयै। सहज सुभाए अपाद रहत होए, गीत गोविंदह गाइयै। कल कलेश मिटह भ्रम नासह, मन चिंदिया फल पाइयै। पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, नानक नाम त्याइयै। सखी इश करी नित सुख मनाई, प्रभ मेरी आस पुजाए। चरण प्यासी दर्श बैरागण, देखो थान सबाए। खोज लहो हर संत जना संग, समर्थ पुरख मलाए। नानक किन मिलिया सुर जन सुख दाता, सेवड़ भागी माए। सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे, मेरा मन तन हर संग लिया। सुन सखिए मेरी नींद पली, मैं आपनड़ा फिर मिलिया। प्रम खोयो शांत सहज स्वामी, प्रगास भया कौल खिलिया। वर पाया प्रभ अंतर जामी, नानक सुहाग ना टलिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गौड़ी बावन अखरी महला पंजवा सलोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंद पसुहोदरा। गुरुदेव दाता हर नाम अपदेसै, गुरुदेव मंत नरोदरा। गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत,
गुरुदेव पारस परस परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित्र करा, गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा सलोक, आप है किया कराया आप है कर्म जोग, नानक एको रब रहया दूसर हुआ ना होग पौड़ी, ओं साध सतगुर नमस्कार आद मद अंत निरंकार, आपह सुन आपह सुख आसन, आपह सुनत आप ही जासन, आपने आप आपह उपायु, आपह बाप आप ही मायु, आपह सूखम आपह अस्थूला, लखी न जाई नानक लीला, कर कृपा।

परै जिहि पायं सिमर सिमर गुण गाहि सुनायं संसय भरम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप ताहू को जापत सो साधु एह पहुंचन हारा नानक ता कह सद बलिहारा सलोक तन तन कहां पकारते माया मोह सब कूर नाम बिहुने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तद्दा तूर पनीत तेरे जनुआ तन तेऊ जे रुच या मनुआ तन नहीं बाछ सुरगना आछ अत प्रिय प्रीत साध रज राच है धंधे कहां व्यापहता हूं जो एक शाद अन कतै ना जाहू जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक भेख अर ज्ञान ध्यान मन हट मिलियो ना कोय कहो नानक कृपा पई भगत ज्ञानी सोए पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बातों अनक जुगत शास्त्र कर पातों ज्ञानी सोए जाके दृढ़ सो कहत सुनत कस जोग न हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाके उसन सीत समसर सब ताके ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा तारी सलोक आमने आए सृष्ट मह बिन बूझे पस ढोर नानक गुरमुख सो बुझे जा कै भाग मथोर पौड़ी या जुग मैं एक को आया जन्मत मोहयो मोहनी माया गर्भ कुंट मह उर्द तप करते सास सास सिमरत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवनहार मन है बिसराना तारो कृपा जिसह गुसाई इत उत नानक तिस बिसरहो नाही सलोक आवत हुक्म बनास हुक्म आग्या पिन्ना कोए आमन जाना ते मिटै नानक जिहे मन सोए पौड़ी एऊ जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जो न फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाया जाते तरो बिखम एह माया कर किरपा सतसंग मलाए नानक तांकै निकट ना माए सलोक किरत कमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप असे आपन हों हों करे नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी ये कह आप करावन हारा आपै पाप पुन बिसथारा या जुग जित जित आपै लायो सो सो पायो जो आप दुआयो वा का अंत ना जाने को जो जो करे सो फुन हो ये कहते सगला बिसथारा नानक आप सवार नहारा सलोक राच रहे बनता बनोद कुसुम रंग बिख शोर नानक ते सरनी परो बिन सजाए मैं मोर पौड़ी रे मान बिन हर जह रचो तह तह बंधन पाहे जेह बिद कतु ना छूटी है साकत तेऊ कमाहे हौ हौ करते कर्म।

सियो नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बिखै रस राती अहम बुद्ध माया मद माती या माया मैं जन्मे मरना ज्यों ज्यों हुक्म त्यों त्यों करना को ऊन न को पूरा को सुगर न को मूरा जित जित लाभ तित तित लगना।

लवै न को एक है आप अवर न हो होवन हार होत सद आया वाका अंत न काहू पाया कीत हस्त मह पूर समाने प्रगत पुरख सब ठाऊ जाने जाको दीनो हर रस अपना नानक गुरमुख हर हर तेह जपना सलोक आत्म रस जे जानिया हर रंग सहजे मान नानक धन तन धन जन आए ते परवान पौड़ी आया सफल ताहू को गनिय जास रसन हर हर जस भनिय आए बसह साधु कै संगे अन बिन नाम त्यावह रंगे आवत सोजन न महराता जा को दया मया बेदाता एक है आवन फिर जोन न आया नानक हर कै दर्श समाया सलोक यास जपत मन हुए आनंद बिनसै दूजा भाव दुख दर्द तृष्णा बुझे नानक नाम समा।

या भवजल करना यया जन्मना आवै सो एक नाम ले मन है पुरु यया जन्मना हारी है गुरपुरे की टेक नानक ते सुख पाया जा कह हिरै एक सलोक अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के मीत गुरपुरा अपदेसिया नानक जपी है नीत पौड़ी अन दिन सिमर हो तास को जो अंत सहाई होए एह बिख्या दिन चार छे शाद चल्यो सब कोए काको मात पिता सुत धिया ग्रह बनता कस संग ना लिया ऐसी संच जो बिन सत नाही पत सेती अपने घर जाही साध संग कल कीर्तन गाया नानक तेते बहुर ना आया सलोक अत सुंदर कलीन चतर मुख ज्ञानी तनवंत मृतक कई है नानका जेह प्रीत नहीं भगवंत पौड़ी गंगा खट शास्त्र होए ज्ञाता पूरक कुंभक रेचक करमाता ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी सोम पाक अपरस उदयानी राम नाम संग मन नहीं हेता जो कशकीनो सो अनेता वाते उत्तम गनो चंडाला नानक जे मन बसह गोपाला सलोक कुंट चार दह जिस ब्रह्मे कर्म कीर्थ की रेख सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख पवड़ी कक्का कारण करता सो लिखियो लेख न मेटत को नहीं होत कस दो बारा करने हार न भूलन हारा काहू पंत दिखारे आपे काहू उद्यान भ्रमत पछतापे आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो सो नानक लीनो सलोक हाथ खर्चत बिलछत रहे टूट ना जाहे भंडार हर हर जपत अनेक जन नानक नाहे सुमार पौड़ी खखा खूना कछ नहीं तिस समरथ कै पाहे जो देना सो दे रहे हो भावे तह तह जाहे खर्च खजाना नाम तन या भगतन की रास हिमा गरीबी आनंद सहज जपत रह गुणतास खेल है बिजसह अंध स्यों।

नदर करी नानक जो प्रभ पाणिया पूरी तिना परी। सलोक गन मिन देखो मने माही सर पर चलनो लोग आस अनित गुरमुख मिटे नानक नाम अरोग पौड़ी। गग्गा गोविंद गुण रवो सास सास जपनीत कहां बसासा देह का बिलम ना करे हो मीत। नह बारक नह जोबन नह बिरदी कस बंद ओह बेरा नह दूजी है जो आए पर जम फंद। ज्ञानी ध्यानी चतुर पेख रहन नहीं ए ठाए छाड़ छाड़ सगली गई मूड़ तहां लपटाए। गुर प्रसाद सिमरत रह जाहू मस्तक भाग नानक आए सफलते जा को प्रिय है सुहाग। सलोक कोखे शास्त्र वेद सब आन ना कथतो कोई आद

जत कत ओही समाहे कुलै तो मन जो आवे सरना नाम तत कल मह पुनः चरना काल काल अनक पछतावे बिन हर भगत कहां तित पावे कोल महारस अमृत ते पिया नानक हर गुर जा को दिया सलोक नान काले सब दिवस सास नह बदन कटन तिल सार जीवन लो रह परम मोह नानक ते गुवार पौड़ी गंगा अंगरासै काल ते जो साकत प्रभ कीन अनक जोन जन्मह मरह आत्म राम ना कीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जिहे आप दुआए गणती गणी नहीं को छूटे काची गागर सर पर फूटे सो जीवत जिहे जीवत जपया प्रगट भय नानक नह छपया सलोक चित चितमो चरनार बिंद ऊंद कवल बिग शांत प्रगट भय आपै गोबिंद नानक संत मतांत पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा तन तन उवा दिन संजोग सुभागा चार कुंट दह दिस भ्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो चार बचार बिनस्यो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ चिंत बिसारी एक दृष्टिता नानक ज्ञान अंजन जेह नेत्रा सलोक छाती शीतल मन सुखी

दास्त मारे, दास दासन के पानी हारे। सच्चा शार होत तेरे संता, अपनी कृपा करो भगवंता। शाड सयानप बहु चतराई, संतन की मन टेक टकाई। शार की पुत्री परम गत पाई, नानक जाको संत सहाई। श्लोक जोर जुल्म फूलह कनो, काची दे विकार। हम बुद बंधन परे, नानक नाम छुटार पौड़ी। जज्जा जान हों कछ हुआ, बांधियो ज्यो नलनी भ्रम सुआ। जो जान हों भगत ज्ञानी, आगे ठाकुर तिल नहीं मानी। जो जान मैं कथनी करता, व्यापारी बसधा ज्यो फिरता। साध संग जे हों मैं मारी, नानक तां को मिले मरारी। श्लोक चालांगे उठ नाम जप, निसबासुर आराध। कारह तुझे ना व्यापई, नानक मिटे उपाद पौड़ी। चज्जा चूरन मिटे तुमारो, राम नाम स्यों कर व्यवहारो। चूरत चूरत साकत मुआ, जां कह हृदय होत पाओ बिया। चरह कसम्मल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ। चरह काम क्रोध दृष्टाई, नानक जाको कृपा गुसाई। श्लोक यतन करो तुम अनक बिद, रहन न पावो मीत। जीवत रहो हर हर भजो, नानक नाम प्रीत पवड़ी। जन्या जानो दृढ़ सही, बिनस जात एह हेत। गणती गणो ना गण सको, ऊठ सधारे केत। न्यो पेखो सो बिनसतो, कास्यो करिय संग। ज्ञान होया बिद सही चित, झूठो माया रंग। ज्ञान तो सोई

एक आधार रैण दिन सिमरत रह सो प्रभ पुरख अपार रेण सगल या मन कर ये कर्म कमाए हुक्म बूझे सदा सुख नानक लिखिया पाए सलोक तन मन तन अर्पो तिस प्रभु मलावे मोहे नानक भ्रम पहु काटी है चूकै जम की जोह पौड़ी तत्ता तांस्यो प्रीत कर गुण निध गोबिंद राय फल पावह मन बांसते तपत तुहारी जाय त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाव गत पावह मत हुए परगास महली पावह ठाव ताहू संग ना धन चले ग्रह जोबन नहराज संत संग सिमरत रहो।

संपै बहु भोग रस नानक साध रुआल पौड़ी बब्बा ब्रह्म जानत ते ब्रह्मा वैष्णो ते गुरमुख सुच धर्मा बीरा आपन बुरा मटावै ताहू बुरा निकट नहीं आवै बांधियो आपन हों हों बंदा दोष देत आगह को अंधा बात कीत सब रही सियानक जिसे जनाब हो सो जानै नानक सलोक पै पंजन अग दूख नास मन है अराध हरे संत संग जिहिरिद बसेओ नानक ते ना भ्रमे पौड़ी पब्बा परम मटावो अपना या संसार सगल है सुपना परमेश्वर नर देवी देवा परमे सिद्ध साधक ब्रह्मेवा परम परम मानुख डहकाय दुत्तर महा बिखम एह माय गुरमुख भ्रम पै मोह मटाया नानक तेहे परम सुख पाया सलोक माया डोलै बहु विधि।

मत पूरी प्रधान ते गुरपूरे मन मंत जिह जान्यो प्रभ अपना नानक ते भगवंत पौड़ी मम्मा जाहू मर्म पछाना भेटत साध संग पतियाना दुख सुख अवाक समत बिचारा नरक सुरग रहत अवतारा ताहू संग ताहू निरलेपा पूर्ण घट घट पुरख बसेखा वा रस मैं वाहू सुख पाया नानक लिप्त नहीं ते माया। सलोक यार मीत सुन साजन हो बिन हर शूतन नाही नानक तेह बंधन कटे गुर की चरणी पाहे पवड़ी जैया यतन करत बहु विदिया एक नाम बिन कह लो सिदिया याहू जतन कर होत छटारा वाहू जतन साध संगारा या उबरण धारे सब को वाहे जपे बिन उबर ना हो याहू तरन तारन समराता राख लेहो निर्गुण नरनाथा मन बच क्रम जेह आप जनाई नानक तेह मत प्रगति आई। सलोक रोस न काहू संग करहो अपने आप विचार होए निमाना जग रहो नानक नदरी पार पौड़ी रारा रेन होत सब जाकी ताज अवमान छुटे तेरी बाकी रण दरगह तो सीजै भाई जो गुरमुख राम नाम लिवलाई रहत रहत रह जाहे बिकारा गुरपूरे कै शब्द अपारा राते रंग नाम रस माते नानक हर गुर की नींदाते। सलोक लालच झूठ बिखै ब्याद या देही महबास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सूख निवास पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहु दुख दर्द ते मिटै खनाहु नाम औखद जे हृदय हतावै ताहे रोग सुपने नहीं आवै हर औखद सब घट है पाई गुरपूरे बिन बिद ना बनाई गुरपूरे संयम कर दिया नानक तौ फिर दुख ना थिया। सलोक वासुदेव सर्वतर मैं ऊन ना कतहूं ठाए अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए पौड़ी ववा वैर ना करिए काहू घट घट अंतर ब्रह्म समाहू वासुदेव जल थल मैं रविया गुर प्रसाद विरले ही गविया वैर विरोध मिटे ते मन ते हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते वर्ण चेहन सगल है ते रहता नानक हर हर गुरमुख जो कहता। सलोक हौ हौ करत बेहानिया साकत मुगद अजान डड़क मोए ज्यो त्रिखावन नानक किरत कमान पौड़ी अड़ाड़ा लाड़ मिटै संग साधु कर्म तर्म तत नाम अराधु रूड़ो जेहे बसे उरिद माही वा की डाड़ मिटत बिन साही अड़ाड़ करत साकत गावारा जेहे ही है हम बुद बेकारा राड़ा गुरमुख राड़ मटाई निमख माहे नानक समझाई। सलोक साधु की मन ओट गहो उकत सियान पत्याग गुर दीखिया जेहे मन बसै नानक मस्तक भाग पौड़ी सस्सा शरण परे अबहारी शास्त्र सिमरत वेद पुकारी सोधत सोधत सोध बिचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा सास सास हम भूलन हारे तुम समरत अगणत अपारे शरण परे की राख दयाला नानक तुमरे बाल गोपाला। सलोक खुदी मिटी तब सुख भये

किन मैं ऊनी सुबर पराहू खरा निमा ना होत परानी हन दिन जापै प्रभ निर्वाणी भावै खसम ता वा सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहिब सदा दयारा। सलोक सत कहो सुन मन मेरे सरन परहो हर राय उकत सियानप सगल त्याग नानक लये समाए पौड़ी। ससा सियानप छाड़ आना हिकमत हुक्म ना प्रभ पतियाना सहस भांत करह चतुराई।

अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो काल कलेश तन माहि मटावो सिमरो जास बिसंबर एक नाम जपत अगंत अनेक।

हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाय। हर सिमरन भये सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौहो कुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन वह आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख भंजना, कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो। नानक के प्रभ साथ अष्टपदी।

संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रते रंग एकै नानक जन कै बिरत बिबेकै हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परै ना भंग हर का नाम जन

जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते, आठ पैर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रगट नहीं छपे, हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग केते तरे, पार जात एहो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम।

दुर्त सब लसै, संत का संग वड भागी पाई, संत की सेवा नाम ते आई, नाम तुल कछ अवर ना होए, नानक।

पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमे कर राती वर्त नेम करे बहु भांति नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे महा उदासत पीसर पीवे अग्न माहे होमत परान कनक अश्व है विर भूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावे तौ पी हों मैं मैल ना जावे हर के नाम समसर कछ नाही नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ देह छुटे गर्भ गमान ना मन ते हुटे सोच करे दिन

अपमान आप सुकौ जो जाने नीचा सो गनिय सब ते ऊंचा जाका मन हुए सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट कीना मन अपने ते बुरा मिटाना एक है सगल सृष्ट साज।

सगल कटाको देवहुदान कर्ण करावन हार स्वामी सगल कटाके अंतर जामी अपनी गत

आपन संग आप प्रभ राती तुमरी उस्तत तुमते होए नानक अवर ना जान सकोए सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी।

अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्ह उभारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद भया ऊपर साख सहन मुख

प्रभ आप नानक तेजन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गह नेहो ओढ़ निबिहावे कहां बजारत बूझे डोरा निस कहिए तो समझे पूरा कहां

दृढ़ कर्मा न मन है प्रतीत, काल न आवे मूले चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बकार महालोभ त्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले हो आपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता।

लपट रहे हो तह अंध अंधार बताऊ स्यो जो लावे ने ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटुंब।

मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर करत गमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीव हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हसत पर धर्म को हिरह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिय रुपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बकार को धाव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल देहे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आर जा।

जाय। गोविंद भजन बिन बिरते सब काम, ज्यो किरपन के नरारथ दाम। तन तन ते जन जे घट बस्यो हर नाम, नानक तां कै बल बल जाम। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंध लावत। जन नहार प्रभु परबीन, बाहर भेख ना काहू भीन। अवर अपदे

खानै मुखता को जस रसन बखानै जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगाह मान पावह नानक पत सेती घर जावह जिह प्रसाद अरोग कंचन देही लिव लाभ तिस राम स्नेही जिह प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावह हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल सिदर ढाके मन चरनी पार ठाकर प्रभ ताकै जिह प्रसाद तुझ को ना पहुंचै मन सास सास सिमरहु प्रभ उच्चे जिह प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करे जिह प्रसाद अपूखन पहरीजै मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजै जिह प्रसाद अस्वहस्त अस्वारी मन तिस प्रभ को कबहू ना बसारी जिह प्रसाद बाग मिलख धना राख परोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसह त्याई तिसह त्याई जो

प्रसाद सब की गत होए, नानक जाप जपै जप सोए, आप जपाए जपै सो नाउ, आप गवाए सो

मया आपो कछु न किन्हु लया जित जित लाभ हो तित लगह हर नाथ नानक इनकै।

साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटै अब महान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान साध कै संग बुझै प्रभ नीरा साध संग सब होत नबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वर्णै कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा प्रफुलै साध कै संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहू धावै साध संग अस्थित मन पावै साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

साधक्या संग नाही हो ताप, साधक्या संग तजै सबे आप, आपे जाने साध बुदाई, नानक साध प्रभु बने आई। साधक्या संग न कबहू तावे, साधक्या संग सदा सुख पावे, साध संग बस्त अगु

सकै। साधका संग निर्णय सब धर्म, साधका संग केवल पार ब्रह्म, साधका संग पाहि नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान, साधका संग सब कुल उधार है, साध संग साजन मी

साधु कै संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्ब स्थान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म, साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट होत निहाल, साध कै संग कलूखत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावे, साध कै संग न बिरता जावे, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उदरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाउ, साध संग हर के गुण गाउ, साध कै संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट दीठा, साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग गत भई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग, साध की महिमा भेद न जान है, जेता सुनह तेता बखियान है, साध की उपमा तेहो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई, श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखै एकस बिन कोए, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जा

अठहत्तर सत्तर समान, ब्रह्म ज्ञानी क्या नाही अब महान, ब्रह्म ज्ञानी ऊचते ऊचा, मन अपने है सबते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन भये, नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी कीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना भया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

ब्रह्म ज्ञानी हम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजह महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओ अपरस सगल निस्तार है। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन मह प्रीत निरंजन दर्श। पर त्रिया रूप ना पेख नेत्र, साध की टहल संत संग हेत।

रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विसन की माया ते होए भिन्न कर्म करत हुए निह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म

पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिसन परीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित

ना पाईऐ धर्म नानक किस मिलै जिस लिखिया धुर कर्म जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नगरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान तू दास दरगाह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास

लोक उस्थित करह अनेक जन अंत न पारावार। नानक रचना प्रभ रची बहु वेद अनक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन भ्रम है उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीश्वर होते कई कोट आत्म

कई कोट भय अबमहानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिरह, कई कोट पर दुख न करह, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति योगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पात्र बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जन, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण जीवे, कई कोट जख किनर पसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरा सब हूते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काल है थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाते, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कौ खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांग है सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड, कई

के दास तिन होवत आत्म परगास कई कोट तत के बेते सदा निहार है एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव है अमर पये सद सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सहज समाव है अपने जन को सास

त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम। नानक प्रभु कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसै मशकीनिया। आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी। जिसकै अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत सुवान। जो जानै मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत। आपस कहो कर्मवंत कहावै, जन्म मरै बहु जोन प्रमावै।

त्रिण समान कस संग ना जावे बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस पल भीतर ता का हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत हिन मह हुए जाए पसमंत किसे ना बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे।

अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर अवतार, अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगहा कहो कैसे गवे, आपस कहो जो भला कहावे, तिसह भला।

तब इसको सुख नाही कोई। जब एह जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माई, तब लग

को उठत आवे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिख्या के करे नह तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राज्य सुपन मनोरथ बिरथे सब काज्य नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी तिसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करन हार इसके हार।

न जाए। नानक सद ही रहे आसमाय, आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप कीनो आपन विस्थार, सब कछ उसका ओह करनै हार, उसते भिन्न कहो किश होए, थान तनंतर एकै सोए, अपने चलते आप करनै हार, कौतक करै रंग अपार, मन मह आप, मन अपने माहे, नानक कीमत।

नानक जो तिस पावै सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी उठ

कर हर कर्म सर्वण हर कथा हर दरगाह नानकी उज्जन मथा बड़ भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार ते तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोलह हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछान इत उत की ओह सोजी जान नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै किसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ मैं सोही निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसह ना लागह दुख जिस को हर प्रभ मन चित आवे सो संत सहेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किस ते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समा

ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ

नानक सो जन सदा अरोग ज्यों मंदर को थम थम्मण त्यों गुर का शब्द मने अस्थम्मण ज्यों पाखाण नाव चढ़तरै प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै।

संग मिल जोत प्रगटावे, तिन संतन की बाँचो तूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूरख काहे बिन लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए। दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तो किसै चितार। जो कछ करे सोई सुखमान, भूला काहे फिरह अजान। कौन बस्त आई तिरे संग, लपट रहे हो रस लोभी पतंग। राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पत सेती घर जाहे। जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। ताज अभमान ले हो।

गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद साध तेरे की चरणी पाऊं नानक।

राज मह राज, जोग मह जोगी, तप मह तपीसर, ग्रस्त मह भोगी, त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक किस पुरख का किने अंत ना पाया, जाकी लीला की मित नाहि, सगल देव हारे।

पाए, सब घट तिसके सब तिसके ठाव, जप जप जीवै नानक हर नाव, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उधरे सुन श्रवन, कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मह सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान।

मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसह बुझाए तिसह सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जां कै हृदय प्रवेश सत नित बूझै जे कोय नाम जपत तां की गत होय आप सत किया सब सत आपे जानै अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सो करनै हार अवर ना बूझ करत बीचार करते की मित ना जानै किया नानक जोत सुभावै सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भये बिस्माद जिन बूझिया तिसे आया स्वाद प्रभ कै रंग राच जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे वे दाते दुख काटन हार जा कै संग तरै संसार जन का सेवक सो वड भागी।

मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रभु पालन हारा।

नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाव अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उच्चरै सतगुर सिख के बंधन काटै गुर का सिख विकार ते हटै सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख वडभागी हे सतगुर सिख का हलत पलत सवारै नानक सतगुर सिख को जी नाल समारै गुर के ग्रह सेवक जो रह गुर की आग्या मन मह सह आपस को कर कछ ना जनावै हर हर नाम हृदय सद ध्यावै मन बेचै सतगुर कै पास तिस सेवक के कारज रास सेवा करत हुए निकामी तिस को होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले।

बल जाओ। सर्व निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म मैं जन, जन मैं पार ब्रह्म, एक कह आप नहीं कछ भरम। सहस सियान पलया ना जाइए, नानक ऐसा गुरबद भागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। पेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गवे। सुन कर बचन करन आगहने, मन संतोख आत्म पतियाने। पूरा गुर अखयो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखा हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावे तिस लये मलाए। जिहवा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूर्ण विवेक। काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने ना पाई। अनक भगत बंधन नित करह, चरण कमल हृदय सिमरह। सद बलिहारी सतगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावे जन कोई, अमृत पीवे अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जां कै मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया कै संग न लेप, मन मह राखै हर हर एक। अंधकार दीपक परगासे, नानक भरम मोह दुख तह ते नासे। तपत माहे ठांड वरताई, आनंद भया दुख नाठे पहाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। पहु चूका निरपौ होए बसे, सगल ब्याध मन ते खै नसे। जिसका साथ इन कृपा तारी, साध संग जप नाम मरारी। हित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन। निर्गुण आप सरगुण पी ओही, कला धार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोए, सर्व निरंतर एको सोए। ओत पोत रविया रूप रंग, पये प्रगास साध कै संग। रच रचना अपनी कल धारी, अनक बार नानक बलिहारी। सलोक साथ न चल बिन भजन, विखिया सगली शार। हर हर नाम कमावना, नानक इहो तन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो बीचार, एक सिमर नाम आधार। अवर उपाव सब मीत बसार हो, चरण कमल रिद मह उरतार हो। करन कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवत्। इहो तन संचो हो।

मिट जाहि। जिस धन को चार कुंट उठ धावह, तो धन हर सेवा ते पावह। जिस सुख को नित बांचह मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। जिस शोभा को करह भली करनी, सा शोभा भज हर की सरनी। अनक अपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए। सर्व निदान मह हर नाम निदान, जप नानक दरगह परवान। मन पर बुद्ध हो हर कह नाए, दह

0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाओ बिन सह पूर्ण हुए आस, भगत भाई आत्म परगास, तित कर जाए बसे अबनासी, कहो नानक काटी जम फासी,
1: तत विचार कह जन साचा,
0: जन्म मरे सो काचो काचा, आवागमन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, यो रतन जन्म का हुए उदहार, हर हर सिमर प्राण अधार, अनक अपाव न छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करहु मन लाए, मन बंछत नानक फल पाए, संग न चालस तेरे तना, तू क्या लपटाव है मूर्ख मना।

भगत बिना बहु डूबे सियाने, हर की भगत करहु मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाहे, आप जपहु अवरा नाम जपावहु, सुनत कहत रहत गत पावहु, सार भूत सत हर को नाव, सहज सुपाए नानक गुण गाव, गुण गावत त्रि उत्तर सुमैल, बिन सजाए हों मैं बिख फैल, होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम संभाल, चाड़ सियान पसगली मना, साध संग पावह सच धना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दरगाह जयकार, सर्ब निरंतर एको देख, कहो नानक जाकै मस्तक लेख, एको जप एको सलाहे, एक सिमर एको मने।

अन सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन निवलाग बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेव की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहिया सतसंग हजूरी जिसका साथन लिया मलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरै जे घाल ना भानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन दिया सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिख ते काढै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुरपूरै तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करहो इहो काम आन त्याग जपहो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहो आप जपहो अवरहा नाम जपावहो भगत पाए तरियै संसार बिन भगती तन होसी चार सर्व कल्याण सुख निध नाम।

जाऊ मन तन अंतर इही सो आऊ नेत्रहु पेख दर्श सुख होए मन बिगसै साध चरण धोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला कोहु पावै संग एक बस्त दीजै करमया।

अष्टपदी जब अकार एहु कसना दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिहन ना जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत जब आपने आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत भरम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक कह हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब

अपनी जोत धरै तब कवन नडार कवन कत डरै आपन चलत आप करना हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहां बनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपने आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा।

नानक आपस को आपह पहुंचा, जह आप रचियो प्रपंच अकार, तेहो गुण मह कीनो विस्थार, पाप पुन कह भई कहावत।

आपह तनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपह कौतक करे अनद चोज आपह रस भोगर निरजोग जिस भावे तिस आपन नाए लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे बेशमार अथाह अगंत अतुलै ज्यो बलाव हो त्यो नानक दास बोलै सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दिसतार अष्टपदी आप कथ आप सुनने हार आप एक आप विस्थार जान तिस भावै तां सृष्टि अपाई आप

दृष्ट दर्शन पेहत कुदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसै सो होत निहाल ताकै निकट ना आवत काल अमर पहे अमरा।

हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास अष्टपदे संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक सकट माहे अनकरंग नाना दृष्टाहे नौ निद

देखन सब ब्रह्म संत जना कह हृदय सब धर्म संत जना सुनह शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी एह रह सत बचन साधु सब कह जो जो होए सोई सुख मान करन करावन हार प्रभ जान अंतर बसे बार पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावै ता करे विस्थार तिस भावै ता एकंकार अनक कला लखी नह जाय जिस भावै तिस लये मलाय कवन निकट कवन कहिया दूर आपे आप आप भरपूर अंतरगत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए।

किन्हें कछ करा, आप भला कर तूत आत्मी की, आपे जाने अपने जी की, आप साच तारी सब साच, ओत पोत आपन संगराज, ताकी गत मित कही ना जाए।

तिस सदा सुख होए, आप मलाए नहीं प्रभ सोए। ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआउ, जन कै संग चित आवे नाउ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक

अष्टपदी पूरे गुर का सुने उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पीख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर तरहो हर धन के परले हो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक नवार उधार हो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वह नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल यह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोकह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक कुदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मलाए।

या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इस्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए

सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटे, संत कृपा ते जम ते छुटे। जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाई, साध सरन नानक ते आई। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, जिस जन आवै।

आप तजुहु गोबिंद भजुहु पाओ भगत प्रवेश लाभ मिले तोटा हिरे हर दरगाह पतवंत राम नाम धन संचवे साच साहा भगवंत उठत बैठत हर भजुहु साधु संग परीत नानक दुरमत छुट गई।

नानक संत निर्मल भये, जिन मन वसिया सोए पौड़ी, तृतीया त्रै गुण बिखै फल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग भ्रम तो घणो, सदा संघारे नीच, हरख सोग सहसा संसार, हौ हौ करत बिहाय, जिन किए तिसह न जाननी, चित

मोह परम बूढ़त कणो महानरक महवास कर कृपा प्रभ राख ले हो नानक तेरी आस। श्लोक चतुर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजया अभमान चार पदार्थ अष्ट सिद्ध

नानक प्रभ कै रंग पौड़ी पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो परपंच कुसुम बास बहुरंग कणो सब मिथ्या बलबंच नह जापै नह बूझियै नह कछ करत बिचार स्वाद मोह रस भेदेओ अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बहु जून भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना बिचार विवेक पाओ भगत भगवान संग माया लिपत नारंच नानक बिरले पाई है जो नारच है परपंच सलोक खट शास्त्र ऊचो कह अंत न पारावार भगत सोह गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथ है अनेक उत्तम ऊचो पार ब्रह्म गुणयंत ना जान है सेख नारद मुन जन सुख ब्यास जस गावत गोविंद रस गीते हर स्यो बीते भगत रचे भगवंत मोह मान भ्रम बिनसेओ पाई सरन दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तोटा हिरे साध संग लिव लाए खाट खजाना गुण निदहरे नानक नाम त्याय सलोक संत मंडल हर जस कथ बोलह सत सुभाय नानक मन संतोखी है एकस स्यों लिव लाए पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मह पाई है अंत ना पारावार आप तजो हो गोविंद भजो हो सरन पर हो हर राय दुख हरे पव जल तरे मन चिंदे आप फल पाए आठ पहर मन हर जपै

अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निध सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल परगास सदा आनंद निर्मल रीत निरोधर मंत सगल धर्म पवित्र इशनान सब मह ऊच बसेख ज्ञान हर हर भजन पूरे गुर संग जप तरिय नानक।

सारे नरक सुर्ग अवतार पौड़ी नौमी नवे सिदर अपवीत हर नाम ना जप है करत विपरीत पारत्रय रम है बक है साध निंद कर्म ना सुनही हर जस बिंद फिर है पर दर्भ उदर कहताई अग्न ना निवरे तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमह अभागे सलोक दस दिस खोजत मैं फिरयो जत देखूं तत सोए मन बस आवै।

एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्ब जी दया, इन बिद वर्त संपूर्ण भया, धावत मन राखे एक ठाई, मन तन शुद्ध।

पतत उदारन मन बसे नानक छूटे नाम पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार आवत जात नरक अवतार हर हर भजन ना मन मह आयु सुख सागर प्रभ निमुख ना गायु हरख सोग का देह कर बांधेउ दीर्घ रोग माया असाध्यु दिने विकार करत श्रम पायु नैनी नींद सुपन बरड़ायु हर बिसरत होवत एह हाल सरन नानक प्रभ पुरख दयाल। श्लोक चार कुंट

पौड़ी चौदह चार कुंट प्रभे आप सगल भवन पूर्ण प्रताप दसे दिशा रव्या प्रवेक तरन आकाश सब मह प्रभ पीक जल थल बन पर्वत।

श्लोक आत्मजीता गुरमति गुण गाए गोविंद संत प्रसादी पै मिटे नानक बिनसी किंड पौड़ी अमावस्या आत्म सुखी पहे संत।

हो मैं छुट्टी सिमरत हर को नाम शरण गही पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप तरिया कुटुंब सियो गुण गोबिंद।

पाया नानक सुख विश्राम सलोक पूर्ण कभो ना ढोलता पूरा किया प्रभ आप दिन दिन चढ़ सुआया नानक होत ना घाट पौड़ी पूर्णमा पूर्ण प्रवेक करण कारण समरथ जी जंत दयाल पुरख सब ऊपर जा का हाथ गुण निदान गोविंद गुर किया जा का होए अंतर जामी प्रभ सुजान अलख निरंजन सोए पार ब्रह्म परमेश्वरो सब विद जानन हार संत सहाई सरन जोग आठ पहर नमस्कार अकथ कथा नह बूझिय सिमरहु हर के चरण पतत उदारन अनाथ नाथ नानक प्रभ की सरन सलोक दुख बिन से सहसा गयो सरन गही हर राय मन चिंदे फल पाया नानक हर गुण गाय पौड़ी कोई गावे को सुने कोई करे विचार को उपदेसे को दृढ़ तिसका हुए उदार किलबिख काटे हुए निर्मला जन्म जन्म मल जाय हलत पलत मुखी।

सो सूरा कलवंत सोए जिन भजिया भगवंत खतरी ब्राह्मण सूद बैस उदरै सिमर चंडाल जिन जानियो प्रभ अपना नानक तिसह रवाल गौड़ी की वार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला चौथा सतगुर पुरख दयाल है जिसनो समत सब कोय एक दृष्ट कर देखदा मन भावनी ते सिद्ध होय सतगुर विच अमृत है हर उत्तम हर पद सोय नानक कृपा ते हर त्याई है।

लाहा हर धन खटिया गुरमुख शब्द विचार होमै मैल बिख उतरै हर अमृत हर उरतार सब कारज तिनके सिद्ध है जिन गुरमुख कृपा धार नानक जो तुर मिले से मिल रहे हर मेले सिरजनहार पौड़ी तू सच्चा साहेब सच है सच सच्चा गोसाई तुदनो सब त्याई दी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है जिन कीती तिस पार लंघाई।

मन पहाया, सच्चे मेरे साहिबा सच्चे सच नाया। श्लोक महला चौथा, मन अंतर होमै रोग है, भ्रम भूले मन मुख दुर्जना, नानक रोग गवाए, मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा, मन तन रत्ता रंग सियों, गुरमुख हर गुण तास, जन नानक हर शरणागति, हर मेले गुर साबास पौड़ी। तू करता पुरख अगम है, किस नाल तू वड़ी है, तुद जे वडहोए सो आखी है, तुद जे हा तू है पढ़ी है, तू घट घट एक वरतदा, गुरमुख परगड़ी है, तू सच्चा सब सदा खसम है, सब दू तू चढ़ी है, तू करह सो सच्चे होए सी, ता कायत करी है।

सतगुर सुख वसन महला चौथा जिने अंदर प्रीत पिरम की ज्यो बोलन तिवें सोहन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी तू करता आप भुल है भुलन विच नाही तू करह सो सच्चे भला है गुर शब्द बुझाही तू करन कारण समरथ है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद त्याही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छड़ाही। सलोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठे सजन मेलिया जन नानक सुख सुवन महला चौथा। सतगुरु दाता दयाल है जिसनो दया सदा हुए सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखे ब्रह्म एक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाएंदे तिन विचों तिस्तिया ना कोई सतगुर सबना।

नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किछ गुजा ना होए पौड़ी, जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी, जिस साहिब भावै तिस बख्श लए, सो साहिब मन पाणी, जे को ओस दी रीस करे सो मूड अजानी, जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवै गुण आख बखाणी, नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी, सलोक महला चौथा हर सत निरंजन अमर है, निर्भउ निरवैर निरंकार, जिन जपया एक मन एक चित, तिन लथा हूं मैं भार, जिन गुरमुख हर आराध्या

में आपे वर्ते नित कर कर देखे चलत सवाय महला चौथा एक मन एक वर्तदा जित लगे सो थाए पाए कोई गल्ला करे कनेरिया जे घर वत हो साई खाए बिन सतगुरु सोजी ना पवे अहंकार ना विचों जाए अहंकारिया नो दुख भुख है हथ तड है घर घर मगाए कूड़ ठगी गुजी ना रह मलम्मा पाज लह जाए जिस होवे पूर्व लिखिया तिस सतगुर मिले प्रभ आए ज्यों लोहा पारस भेटी है मिल संगत।

आप मलाई गुण की सांझ तिन स्यों करी सब अवगण शब्द जलाए अवगण विकण पल्लरी जिस देसो सच्चे पाए बलिहारी गुरे अपने जिन अवगण मेट गुण प्रगटे आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए श्लोक महला चौथा सतगुर विच वड्डी वड्याई जो आन दिन हर हर नाम ते आवे हर हर नाम रमत सुच संजम।

सतगुरु की सेवा निर्मली निर्मल जन होए सो सेवा काले जिन अंदर कपट वकार झूठ वे आपे सच्चै वख कड्डे जजमाले सच्यार सिख बह सतगुर पास कालन कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले जिन्ना सतगुर का

सारे सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे। सलोक महला चौथा जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवी भला ओस दे आखे कोई ना लगे नित उजाड़ी पुकारे खला जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या ओस दा सब गया नित चुगली करे अणहोंदी पराई मुंह कढ ना सकै।

0: है जिन हर वसिया मन माहे हर दरगह ते मुख उजले तिनको सब देखन जाहे जिन निरपव नाम त्याया तिनको भव कोई नाहे हर उत्तम तिनी सरेविया जिनको धुर लिखिया आहे ते हर दरगह पैनाई है जिन हर बुठा मन माहे वे आप तरे सब कटंब सियो तिन पिछे सब जगत छडाहे जन नानक को हर मेल जन इन वेख वेख हम जिवाहे महला चौथा सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए
1: से जंत पई हरियावली।

जिन नाम अराध्या आप तरिया जिन्नी दिथा तिन्ना लए छाई हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक धोए पाए पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उर धारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बेख मारिया जा डिठा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मनमुख हारिया सलोक महला चौथा कर किरपा सतगुर मेलियोन मुख गुरमुख नाम त्याए सी सो करे जे सतगुर भाव सी गुरपुरा करी वसाए सी जिने अंदर नाम निधान है तिनका पहो सब गवाए सी जिन रखन को हर आप होए होर केती चाक चाक जाए सी जन नानक नाम त्याए तू हर हलत पलत छोड़ाए सी महला चौथा गुर सिखा कै मन पावंदी गुर सतगुर की वडियाई हर राखो पैज सतगुरु की नित चढ़ै सुआई गुर सतगुर कै मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छड़ाई गुर सतगुर तान दी बाण हर तिन सब आन निवाई जिन्नी दिठा मेरा सतगुर पाओ कर तिनके सब पाप गवाई।

जिन्ना अंदर अमरथल से जान सूलिया हर जान है से बिरहो हौ तिन बिटो साध घुम घोलिया हर मेलो सज्जन पुरख मेरा सिर तिन बिटो तल रोलिया जो सिख गुर कार कमाव है हौ गुलम तिना का गोलिया हर रंग चलूलै जो रते तिन भिन्नी हर रंग

है, क्यों संतो निर्मल होए, गुरमुख गुण वे हाजी है, मल होमे कड्डै धोए, सच वणंज है रंग सियो, सच सौदा होए, तोटा मूल ना आवे, लाहा हर भावै सोए, नानक तिन सच वणंजिया, जिन्ना धुर लिखिया प्राप्त होए, पौड़ी सालाही सच सालाहना, सच सच्चा पुरख निराली, सच सेवी सच मन वसै, सच सच्चा हर रखवाली।

उठा सतसंगत मह हर पुस्तत है संग साधु मिले प्यारिया वे पुरख प्राणी धन ज्ञान है उपदेश कर है पर उपकारिया हर नाम दृढ़ाव है हर नाम सुनाव है हर नामे जग निस्तारिया गुर वेखण को सब कोई लोचै नवखंड जगत नमस्कारिया तुद आपे आप रखिया सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया तू आपे पूज है पूज कराव है सतगुर को सिरजन हारिया कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो तिस काला मुह जम मारिया तिस अगे पिछे ढोई नाही गुर सिखी मन विचारिया सतगुरु नो मिले से ही जन उबरे जिन हिरदय नाम समारिया जन नानक के गुरसिख पुत हो हर जपे हो हर निस्तारिया महला तीजा हो मैं जगत भलाया दुरमत बिख्या बेकार सतगुर मिले ता नदर होए मनमुख अंध अंधियार नानक आपे मेल लय जिसनो शब्द लाए प्यार पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाहा है सो करे जिस अंदर भिजै जिनी एक मन एक अराध्या तिनका कंध ना कबहू सिजै तन तन पुरख साबास है जिन सच रसना अमृत पिजै सच सच्चा जिन मन भावदा से मन सच्ची दरगाह लिजै तन तन जन्म सचियारिया मुख उज्जल सच करिजै सलोक महला चौथा साकत जाए निवह गुर आगै मन खोटे कूड़ कूड़ आरी जा गुर कह उठो मेरे भाई वह जाहे कुसर बगलारी गुर सिखा अंदर सतगुर वरतै चुन कड्डे लड्डो वारे कोई अगे पिछे बह मुंह सुपाइन ना रलनी खोटे आरे ओना दा भख सो ओथे नाही जाए कूड़ लहन भेडारे जे साकत नर खवाई है लोची है बिख कड्डे मुख उगलारे हर साकत सेती संग ना करी ओ उए मारे सिरजन हारे जिसका एहो खेल सोई कर वेख जन नानक नाम समारे महला चौथा सतगुर पुरख अगम है जिस अंदर हर उर धारिया सतगुरु नो अपड़ कोई ना सकई जिस वल सिरजन हारिया सतगुरु का खड़ग संजोव हर भगत है जित काल कंटक मार वडारिया सतगुरु का रखण हारा हर आप है सतगुरु कै पिछे हर सब उभारिया जो मंदा चितवै पूरे सतगुरु का सो आप उपावन हारे मारिया एह गल हुआ हर दरगाह सच्चे की जन नानक अगम विचारिया पौड़ी सच सुत्या जिनी अराध्या जा उठे ता सच चवे से विरले जुग मह जानी है जो गुरमुख सच रवे हौ बलिहारी तिनको जे अन दिन सच लवे जिन मन तन सच्चा भामदा से सच्ची दरगाह गवे जन नानक बोले सच नाम सच सच्चा सदा नवे सलोक महला चौथा क्या सवना क्या जागना गुरमुख ते परवान जिन्ना सास ग्रास ना विसरे से पूरे पुरख प्रधान करमी सतगुर पाई है अन दिन लगे ध्यान तिनकी संगत मिल रहा दरगाह पाई मान सौंदे वाहो वाहो उच्च रह उठदे पी वाहो करेन नानक ते मुख उजले जे नित उठ संभालेन महला चौथा सतगुर सेविया अपना पाईए नाम अपार भौजल डुबदियां कढ ले।

मंदे शब्द लगावन हार जन नानक जिन को कृपा पई तिन सेवया सिरजन हार पौड़ी सत सच्चे के जन भगत है सत सच्चा जिनी आराध्या जिन गुरमुख खोज टंडोलिया तिन अंदरों ही सच लादया सच साहेब सच जिनी सेवया काल कंटक मार तिनी साध्या सच सच्चा सब दू वड्डा है सच सेवन से सच रलादया सच सच्चे नू साभास है सच सच्चा सेव फलादया सलोक महला चौथा मनमुख प्राणी मुगद है नामहीन परमाय बिन गुर मनुआ ना टिकै फिर जूनी पाय हर प्रभ आप दयाल होहि ता सतगुर मिलिया।

माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुनी बहु रोल कचोला। गुरमुख जापै शब्द लिवलाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए। जो तिस भावै सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी तू करता सब किस जानदा, जो जिया अंदर वरतै। तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणत है। सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बणत है। तू घट घट एक वरतदा, सच साहिब चलत है। सतगुरु नु मिले सो हर मिले, नाही किसे परत है। सलोक महला चौथा, एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है। गुरमुख लाई है चित, क्यों सास ग्रास वसारी है। बहंदियां उठदियां नित, मरण जीवन की चिंता गई। एहो जियड़ा हर प्रभु वस, ज्यों भावै त्यों रख तू। जन नानक नाम बखश। महला तीजा, मनमुख अहंकारी महल ना जाने। खिन आगे खिन पीछे, सदा बलाइए महल ना आवे। क्यों कर दरगाह सीजे।

जित सतगुर का मन मन्ने, जहां सतगुर का मन मन्या ता पाप कसम्मल पन्ने, अपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने, जिन सतगुर का पाणा मन्या तिन चढ़ी चवगण वन्ने, एह चाल नराली गुरमुखी गुर दीखिया सुन मन भिन्ने। सलोक महला तीजा, जिन गुर गोपिया अपना तिस ठौर ना ठाओ, हलत पलत दोवें गए दरगाह नाही थाओ, ओह वेला हथ ना आवई फिर सतगुर लगह पाए, सतगुर की गणत कुसी है दुखे दुख विहाई।

दुर्मत अहंकारी अंतर क्रोध जुए मातहारी कूड़ कसात ओह पाप कमावे क्या ओह सुने क्या आख सुनावे अन्ना बोला खोए उजड़ पाए मनमुख अंधा आवे जाए बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास उतै सच वर्तदा कूड़े आरा चित उदास ओए वल छल कर झत कड दे फिर जाए बह कूड़े आरा पास विच सच्चे कूड़ ना गड़े मन वेखो को निरजास कूड़े आर कूड़े आरी जाए रले सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। सलोक महला पंजवां रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर संत सहाई नानका वरतै सब जाहर महला पंजवां मुंडो भुले मुंड ते कितै पाए न हाथ।

आपे पछताणी अजराइल फरेसता तिन पीड़े कहानी। श्लोक महला पंजवा। सेवक सच्चे शाह के से परवान, दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान। महला पंजवा। जो तुर लिखिया लेख प्रभ मेटना ना जाए, राम नाम धन वखरो नानक सदा ते आए। पौड़ी पंजवा। नारायण नया ना।

संग जोट सलोक महला चौथा तपा न होवै अंदरों लोभी नित माया नो फिरे जज मालिया अगों दे सद्या सतै दी भिखिया लए नाही पिछों दे पछताए कै आण तपै पुत विच बहालिया पंच लोग सब हसन लगे।

गुमान कर है मूड गुमानिया विस खादी मरिया आए लगे नी देह थोड़े ज्यो पक्का खेत लुनिया जे कर्म कमावंदे तेवे हो पणिया जन नानक का खसम वड्डा है सबना दा तनिया सलोक महला चौथा मनमुख मूलो भुलिया बिच लब लोभ अहंकार झगड़ा कर दिया अन दिन गुदरे शब्द ना कर है विचार सुध मत करते सब हिर लई।

0: वेद कहंदे
1: भगत मुखै ते बोल दे से वचन हवंदे प्रगट पहारै जाप दे सब लोक सुनंदे सुख ना पायन मुगद नर संत नाल खहंदे ओए लोचन ओना गुणा नू ओए अहंकार सड़ंदे ओए वेचारे क्या करहें जा भाग तुर मंदे जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसै ना संदे वैर करन निर्वैर नाल धर्म ने आए पचंदे जो जो संत सरापिया से फिर है पवंदे पेड़ मडाहू कटिया तिस डाल सुकंदे श्लोक महला पंजवा गुरु नानक हर नाम दरड़ाया भन्नण कण समरथ प्रभ सदा संभाल है मित्र तू दुख सबाया लथ महला पंजवा खुदया वंत न जानी लाज कुबोल नानक मांगे नाम हर कर।

तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हडे ज्यों भावै त्यों रख तू सच्चिया नानक मन आस तेरी वड वडे सुध गौड़ी की वार महला पंजवां राय कमाल दी मौज दी की वार की धुन उपर।

अनंतर रव रहया जी अंदर जाना साध संग मिल पाई है मन सच्चे पाणा नानक प्रभ शरणागती साध साध कुर्बाना। श्लोक महला पंजवा चेताई ता चेत साहिब सच्चा सो धणी

ना लद्या नानक से साबास जिन्नी गुरमिल एक पछाणिया पौड़ी जिथै बैसन साध जन सो थान सुहंदा ओए सेवन समर्थ अपना बिनसै सब मंदा पतत उदाहरण पार ब्रह्म संत वेद कहंदा भगत वचल तेरा बिरद है जुग जुग वरतंदा नानक जाचै एक नाम मन तन पावंदा श्लोक महला पंजवा चिड़ी चौंकी पहु फुटी वगन बहुत तरंग अचर्ज रूप संतन रचे नानक ना

एक जिस तो सदेवै आप जित खादै मन तृप्ति है। नानक साहिब दात पौड़ी लाहा जग मैं से खट है। जिन हर धन रास दुतिया भाव न जाननी सच्चे दी आस। निश्चल एक सरेविया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरै तिस बिरथा सास। कंठ लाए जन रखिया नानक बल जास। श्लोक महला पंजवा पार ब्रह्म फरमाया मीह उठा सहज सुपाए तन तन बहुत उपजिया। रिथमी रजी तिप्त अगहाय सदा सदा गुण उच्चरै दुख दालद गया बिलाय। पूर्व लिखिया पाया मिलिया तिसै रजाय। परमेश्वर जी वालिया नानक तिसै त्याय। महला पंजवा जीवन पद निर्वाण।

रंग रूप रस बाद के करह परानिया, जिस पलाए आप तिस कल नहीं जानिया, रंग रते निर्वाण सच्चा गावही, नानक सरन द्वार जे तुद पावही पौड़ी, जम्मन मरन ना तिनको जो हर लड़ लागे, जीवत से परवान हुए हर कीर्तन जागे, साध संग जिन पाया से वड भागे, नाए विसरिया त्रिग जीवना टूटे कच धागे, नानक धूड़ पनीत साध लख कोट पिरागे।

जिसा जल पर्वत बन राए, जिथे दिठा मृत को तिल बेठी आए। पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़ी है, सो सच कमावो नेड़े देखो पार ब्रह्म। एक ना

तन फटन जिन्ना साहिं विसरै महला पंजवां प्रेतों की तुन देवता तिन करनै हारे सबे सिख उभारियन प्रभ काज सवारे निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारे नानक का प्रभ वड्डा है।

राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाउ मन मारन कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत ना पाइए, जेह पावक सुर नर है जारी।

तरवर हौ पंखी आहे मंद भागी तेरो दर्शन नाहे तू सतगुर हौ नौ तन चेला कह कबीर मिले अंत की बेला। गौड़ी कबीर जी जब हम एको एक कर जानिया तब लोग काहे दुख मानिया।

पात हर परवान, सर्व त्याग भज केवल नाम। गौड़ी कबीर जी नगन फिरत जो पाई जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं कीन से आत्म राम। रहाओ मूंड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति भेद न गई आकाई। बिंद राख जो तरिय पाई, खुसरे क्यों ना परम गत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौड़ी कबीर जी

रत बहु रूप रचाही, तिनको दया सुपने पी नाही। चार चरण कह बहु आगर, साधु सुख पावह कल सागर। कहो कबीर बहु काय करीजै, सर्बस छोड़ महारस पीजै।

चतराई ना चतर भुज पाई रहाओ पर हर लोभ अरलोकाचार पर हर काम क्रोध अहंकार कर्म करत बदे अहमेव मिल पाथर की करही सेव कहो कबीर भगत कर पाया भोले पाए मिले रघुराया गौड़ी कबीर जी गर्भवास मह कुल नहीं जाती ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती कहो रे पंडित बामन कब के हुए बामन कह कह जन्म मत खोए रहा जौ तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद।

गौड़ी कबीर जी अंधकार सुख कबह न सोई है, राजा रंक धू मिल रोई है, जो पै रसना राम ना कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो रहाओ, जस देखी है तरवर की छाया, प्राण गए कहो कां की माया, जस

इस परचाए परच रहो एस गौड़ी कबीर जी जो जन परमित परमन जाना बातन ही बैकुंठ समाना ना जाना बैकुंठ कहां ही जान जान सब कह तहां ही रहाओ कहन कहावन नह पति आई है तो मन माने जाते हो मैं जई है जब लग मन बैकुंठ की आस

कीजे जो आपन जीजे। मैं ना मरूं मरबो संसारा, अब मोहे मिलियो है जे आवन हारा रहाओ। या देही परमल महकंदा, तां सुख बिसरे परमानंदा। कुवटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परे मत हारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए रहाओ। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी। साकत मर है संत सब जीव है।

ला पंजवा ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ हरी अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै हींगै मरै माता पैसा अमोहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए।

मर्दन अंगा सो तन जलै काठ कह संगा इस तन धन की कवन बढ़ाई धरन परै उरवार ना जाई रहाऊ।

सुगंध बसाई कहत कबीर चेतरे अंधा सत राम झूठा सब धंधा गौड़ी कबीर जी तिपदे चार तुके जमते उल्ट भय है राम दुख बिन से सुख कियो विश्राम बैरी उल्ट भय है मीता साकत उल्ट सुजन भय चीता अब मोहे सर्ब कुशल कर मानिया शांत भई जब गोविंद जानिया रहाउ तन मह होती कोट अपाद उल्ट भई सुख।

केवल राम भगत निज भागी गौड़ी कबीर जी जेह मरना सब जगत तरासिया सो मरना गुर शब्द परगासिया अब कैसे मरूं मरन मन मानिया मर मर जाके जिन राम ना जाने।

गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर मूल कत लावू खोजत तन मह ठौर ना पावू लागी होए सो जाने पीर राम भगत अनियाले तीर रहाउ एक पाए देखो सब नारी क्या जानो सह कौन प्यारी कहो कबीर जाके मस्तक भाग सब पर हर ताको मिले सुहाग गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकुर पहाई मुक्त अन

चौड़ कत बोड़ी, हर सिंह तोड़ बिठिया संग जोड़ी रहाओ, तुर नर दादे लागी आग, निकट नीर पास पीवस ना झाग, चेतत चेतत निकसियो नीर, तो जल निर्मल कथत कबीर, गौड़ी कबीर जी, जेहे कुल पूतना ज्ञान बीचारी, विधवा कसना पई महतारी, जेहे नार राम भगत नह साधी, जनमत कसना मुओ अपराधी रहाओ, मुच मुच गर्भ गए कीन बचिया, बुढ़ पुज रूप जी।

नहाउ, तिनकै सद बलिहारै जाउ। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो भाई मेरे मन पावै रहाउ। जेहे कट राम रहया परपूर, तिनकी पग पंकज हम धूर।

मेरी पाठी, संच महारस तन भया काठी, वाको कही है सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान भी चारा रहाऊ, सहज कलालन जो मिल आई, आनंद माते अन दिन जाई, चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तो अन पहु पाया, गौड़ी कबीर जी मन का सुपहु मन व्यापी, मन है मार कमन सिद्ध थापी, कमन सो मन जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे रहाओ, मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ना हुई, कहो

का राखे कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित रहे आसमाए रहाओ, काको जरे काहे होए हान, नटवट खेले

तत माया कैसे जीवन हुए हमारा जब ना हुए राम नाम अधारा रहाओ कहो कबीर खोजो असमान राम समान ना देखो आन गौड़ी कबीर जी जेहे सिर रच रच बांधत पाग सो सिर चुंच सवार है काग इस तन तन को क्या

35 राग गौड़ी ग्वार री अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हम हो ना मांगिया पावे बिछिया अजहो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाओ इस सुख ते सिव ब्रह्म डराना सो सुख हम हो साच कर जाना सनकादक नारद मुन सिखा तिन भी तन मह

जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को राव रहे कबीरा, गौड़ी ग्वार रे अहनस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध भये लिव लागे रहाउ, साधक सिद्ध सगल मुनहारी।

सो जन पर कर जात ना सोही, सो साहिब रहया भरपूर, सदा संग नाही हर दूर, कवला चरण सरन है जाके, कहो जन का नाही घर ताके, सब को कह जास की बाता, सो समरथ निज पत है दाता, कह कबीर पूर्ण जग सोई, जाके हृदय अवर ना होई।

आउ कौन को पुरख कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। अब मोको भय राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई रहाओ। साधु संगत दियो रलाई, पंच दूत ते लियो छडाई। अमृत नाम जपो जप रसना, मोल दास कर लीनो अपना। सतगुर

आधार जाथल पूर रहे प्रभ स्वामी जत पेखो ताते अंतर जामी अपनी भगत आप ही दृढ़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई।

कहत कबीर अकुल नहीं चेतिया, दिखिया स्यों लपटाना गौड़ी, जीवत मरै मरै फुन जीवै, ऐसे सुन समाया, अंजन माही निरंजन रही है, बहुड़ ना पवजल पाया, मेरे राम ऐसा खीर बलोई है, गुरमत मनुआ स्थिर राखो हो, इन बेद अमृत पियोई है रहाओ, गुर कै बाण बजर कल छेदी, प्रगटिया पद परगासा, सकत अंधेर जेवड़ी भ्रम चूका, निहचल शिव कर बासा, तिन बिन बाण तनख चढ़ाई है, एहो जग बेदिया भाई, दह दिस बूढ़ी पवन चलावै, जोर रही लिवलाई, उन मन मनुआ सुन समाना, दुबदा दुरमत भागी, कहो कबीर अनभव एक देखिया, राम नाम लिवलागी, गौड़ी बैरागण तिप दे, उल्टत पवन चक्कर खाट भेदे, सुरत सुन अनरागी, आवे ना जाए मरे ना जीवे, तास खोज बैरागी, मेरे मन मन ही उल्ट समाना, गुर प्रसाद अकल पही अवरे, नातर था बेगाना रहाओ, निवरै दूर दूर फुन निवरै, जिन जैसा कर मानिया, अलौती का जैसा

हल्की लगे ना भारी रहाउ। अर्ध उर्द दो तह नाही, रात दिन स तह नाही, जल नहीं पवन पावक फुन नाही। सतगुर तहां समाही, अगम अगोचर रह निरंतर, गुर कृपा ते लहिए कहो कबीर बल जाऊं गुर अपने। सत संगत मिल रही है गौड़ी, पाप पुन दोए बैल बसाही, पवन पूंजी परगासियो तृष्णा गुण भरी घट पीतर, इन बिद टांड बसाहयो ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार कियो बन जारा रहाओ। काम क्रोध दोए भये जगाती, मन तरंग बटवारा, पंच तत् मिल दान नवेर है, टांडा उतरियो पारा। कहत कबीर सुनो रे संतो, अब ऐसी बन आई घाटी, चढ़त बैल एक थाका, चलो गोन छिटकाई।

कहो डडिया बंद है धन खड़ी पाहू घर आए मुकलाऊ आए रहाऊ ओहो जे दिसै खूहड़ी कौन लाज वहारी लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी उठ चली पनेहारी साहिब हुए दयाल कृपा करे अपना कार्ज सवारे ता सुहागन जानिए गुर शब्द बीचारे किरत की बांधी सब फिरै

कबीरा गौड़ी जोगी कह है जोग पल मीठा अवरना दूजा भाई रुंडित मुंडित एक है शब्दी ए कह है सिद्ध पाई हर बिन भरम भलानी अंधा जाप है जाओ आप छुटकावन ते बंद।

किछ नाही, पांच तत तह नाही, एड़ा पिंगला सुखमन बंदे, ए अवगण कत जाही, तागा टूटा गगन बिनस गया, तेरा बोलत कहां समाई।

पिंड तह नाही, रचनहार तह नाही, जोड़नहारू सदा अतीता, एह कही है किस माही। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे, जब लग होए बिना।

रहाउ। खंड ब्रह्मांड मह सिंही मेरा बटुआ, सब जग पसमा धारी, ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है, छूटै हुए पसारी, मन पवन दोए तुम्बा करी है, जुग जुग सारद साजी, थिर पई तंती टूटस नाही, अनहद किंगरी बाजी, सुन मन मगन पए हैं पूरे, माया डोल ना लागी, कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं, खेल गयो बैरागी, पौड़ी गाज नाव गाज दास गाज इक्कीस, पुरिया एक तनाई, साठ सूत नव खंड बहत्तर, पाठ लगो अधिकाई, गई बनावन माहो, कर छोड़े जाए जलाहो रहाओ, गजी ना मिनिय तोल ना तुलिये, पांचन सेर अढ़ाई, जो कर पांचन बेग ना पावे, चगर करे करहाई, दिन की बैठ खसम की बरकस,

नतर रही उरझाई छोड़ पसार इहां रहो बपुरी कहो कबीर समझाई गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा हुए मोहोए जित घट नाम ना उपजे फूट मरे जन सोए सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो हे रहाओ साध मिले सिद्ध पाई है

आई गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे भाव सागर नहीं तारियो रे कर्म धर्म करते बहु संयम हम बुद्ध मन जारियो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो बिसारियो रे हीरा लाल अमोल जन्म है कौडी बदले हारियो रे रहाओ तृष्णा त्रिखा भूख भ्रम लागी हृदय नाए बिचारियो रे उन्मत मान हिर्यो मन माही

तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाउ। इस माटी मह पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया। किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी। कह कबीर एक नीम उसारी, किन मह बिन सजाए अहंकारी। गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। दीन दयाल परोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाउ। जां तिस पावै ता हुक्म मनावै, इस बेड़े को पार लंघावै। गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आमन जानी। कहो कबीर भज सार गपानी, उरवार पार सब एको दानी। गौड़ी नौवा जोन छाड़ जो जग मह आयो, लागत पवन खसम बिसरायो। जियरा हर के गुना गाओ रहाओ, गर्भ जोन मह उर्द तप करता। तो जठर अगन मह रहता, लख चौरासी जोन भ्रम आयो। अब के छुटके ठोर ना ठायो, कहो कबीर भज सार गपानी। आवत दिसै जात ना जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्ग बास ना बानी।

गुण गाइए जाते पाइए परम निदान रहाउ। क्या जप क्या तप संयमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत ना जानिए भाउ भगत भगवान। संपै देख ना हरखिए विपत देख ना रोए ज्यों संपै त्यों विपत है विद निरतिया सो होए। कह कबीर अब जानिया संतन हृदय मझार सेवक सो सेवा भले जेह घट बसै मरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार।

कह रची पीवत मर्दन लाग कह कबीर चित चेतिया राम सिमर बैराग राग गौड़ी पंथ निहारै कामनी लोचन भरी ले उस

जीवन पद कारण हर की भगत करी जय एक आधार नाम नारायण हरसना राम रवीजय राग गौड़ी ग्यारवा आस पास घन तुरसी का बिरवा।

साधु परम प्रगट हुए नाचो हो या माया के डांडे सूर के सन्मुख रन ते डरपे सती के सांचे भांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है लीनो हाथ संदौरा रहाऊ काम।

नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे, तरन आकाश दसो दिस नाही, तब इहो नंद कहाँ थोरे रहाउ।

निंदक लोर निंदा हमरी प्रेम प्यार निंदा हमरा करे उदार जानक वीर को निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे पार राजा राम तू ऐसा निरपहु तरन तारन राम राया रहाऊ जब हम होते तब तुम नाही अब तुम हो हम नाही अब हम तुम एक भये है एक देखत मन पति आही जब बुद्ध होती तब बल कैसा अब बुद्ध बल ना खटाई कह कबीर बुद्ध हर ली मेरी बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बांधी बस्त अनूप बीच पाई कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे करते बार ना लाई अब मन जागत रहो रे पाई गाफल होए कै जन्म गवायो चोर मुस्से घर जाई रहाओ पंच पहरुआ दर मह रहते तिनका नहीं पतियारा चेत सुचेत चेत हुए रहो तव लै परगास उजारा नौ कर देख जो कामन भूली बस्त अनूप न

जास गुण गाव है तास बस है मूरे प्राणा न रहाउ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मित गगन मंडल में त्या नाना। विखै रोग पै बंधन भागे मन निज कर सुख जा नाना। एक समत रत जान मान प्रभ दूसर मन है ना आनाना। चंदन बास पये मन बासन त्याग घटियो अबमानाना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है था नाना। तेहे बड भाग बस्यो मन जाकै कर्म प्रधान मथा नाना। काट सकत शिव सहज परगासियो एकै एक समानाना। कह कबीर गुर भेट महा सुख भ्रमत रहे मन मानाना। राग

बावन अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्ही माहे ये अखर खिर जाहिंगे ओए अखर इन मह नाहे जहां बोल तह अक्षर आवा जह अबोल तह मन ना रहावा बोल अबोल मद है सोई जस ओह है तस लखै ना कोई लह लहू तो क्या कहू कहू ता को पकार बटक बीज में रब रहे हो जाको तीन लोक बिस्थार लह लहंता भेद शै कश कश पायो भेद उल्ट भेद मन बेदेओ पायो अपंग अशेद तुरक तरीकत जा

आद मैं जाना लिख अर मिटै ताहि न माना ओंकार लखै जो कोई सोई लख मिटना ना होई कक्का किरण कमल मह पावा सस बगास संपट नहीं आवा हर जे तहां कुसम रस पावा कह कहां कह का समझावा खखा एह खोड़ मन आवा खोड़े शाड ना दह दिस तावा खसम जान खिमा कर रह तो हुए निखियो अखै।

इह है शत्रपत पासा शक के ना रहो शाद के ना आसा रे मन मैं तो सिन सिन समझावा ताहे शाद कत आप बंधावा जज्जा जो तन

परवाना, कत झक झक और न समझावा, झगर किए झगरो ही पावा, नन्या निकट सो घट रहे हो, दूर कहां तज जाए, जां कारण जग ढूंढियो, नेरो पायो ताहे, तता बिकट काट काट माही, खोल कपाट महल के ना जाही।

न डर हुआ डर उर होए भागै टड्डा ढिग ढूंढ कातियाना ढूंढत ही तह गए पराना चढ़ समेर ढूंढ जब आवा जिह गड़ गड़ो सो गड़ मह पावा।

अर्दह उर्दह मंज बसेरा अर्दह चाड़ उर्द जो आवा तो अर्दह उर्द मिलिया सुख पावा नन्ना निस दिन निरखत जाई निरखत नैन रहे रतवाई निरखत निरखत जब जाए पावा तबले निरख है निरख मलावा पप्पा अपार पार नहीं पावा परम ज्योत स्यो परचो लावा पांचो इंद्री निग्रह करी पाप पुन दो निर्वरी फफा बिन फूल फल हुई

यो अर ओहो जब मिले तब मिलत ना जाने कोई। सत्सा सो नीका कर सो दोहो घट परचा की बात नरोडो। घट परचै जो उपजै पाओ पूर रहया तह त्रे पवन राओ। खखा खोज परै जो कोई जो खोजै सो बहुर ना होई। खोज बूझ जो करै बिचारा तो भव जल तरत ना लावे बारा। सत्सा सो सह सेज सवारै सोई सही संदेह निवारै। अल्प सुख छाड परम सुख पावा तब एह त्री ओह कंत कहावा। हा हा होत हुए नहीं जाना जब ही हुए तब है मन माना। है तो सही लख जो कोई तब ओही ओह एहो ना होई। न्यो न्यो

गए केते खिरत खपत अजहू नह चेते अब जग जान जो मना रह जह का बिछरा तह थिर लह बावन अखर जोरे आन सक्या ना अखर एक पछान सत का शब्द कबीरा कह पंडित होए सुअन पैर है पंडित लोगहा को व्यवहार ज्ञान मंत को तत विचार जा कै जी जैसी बुद्ध होई।

अकुल निरंजन एक पाय, तृतीया तीने सम कर लियावे, आनंद मूल परम पद पावे, साध संगत उपजे विश्वास, बाहर भीतर सदा परगास, चौथे है चंचल मन को गहो, काम क्रोध संग कबहु ना बहो।

छठ खट चक्कर शहू दिस धाय, बिन परचै नहीं थिरा रहाय। दुबदा मेट खिमा गह रहो, कर्म धर्म की सूल ना सहो।

एकादशी एक दिस तावै तो जोनी संकट बहुर ना आवै। शीतल निर्मल भया शरीरा दूर बतावत पाया नीरा। बारस बारह उगवै सूर एनस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहूं लोक का पियो अचरज भया जीव ते सियो। तेरस तेरह अगंबखान अर्द उर्द बिच सम पहचान। नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मझार रोम रोम मह बसह मरार। सत संतोख का धरहु ध्यान कतनी कथिया ब्रह्म ज्ञान। पुण्यो पूरा चंद आकाश पसरह कला सहज परगास। आदि अंत मद हुए रहे आथीर सुख सागर में।

बार बार हर के गुण गाव, गुरगम भेद सो हर का पाव रहाव। आदत करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंभ। अहनिस अखंड सुर ही जाय, तो अनहद बीन सहज महबाय। सोमवार सास अमृत चरै,

रीत पंच चोर की जाने रीत कर छोड़े बाहर जिन जाई नातर खरार सहराय बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल मह हर का बास गुर मिल दो एक सम धरे उर्द पंकले सूदा करे बृहस्पत बिख्या दे बहाय तीन देव एक संग लाय तीन नदी तह त्रिकुटी माहि एनस कसमल तो वह नाहि सो किरत सहारे सो एह ब्रत चढ़े अन दिन आप आप स्यो लड़े सुरखी पांचो राखे सबे तो दूजी दृष्ट ना पैसे कवे थावर थिर कर राखे सोए जोत दी वटी घट मह जोए बाहर भीतर भया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास जब लग घट मह दूजी आन तो लो महल न लाभे जान रमत राम।

योग की एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवा पाहन तारियले राम कहत जन कस ना तरे रहाओ तारी ले गनका बिन रूप कुबजा ब्याज अजामल तारियले करन बदक जन तेउ मुक्त भये हौ बाल बाल जिन राम कहे दासी सुत जन बिदर सुदामा उगर सैन कौराज दिए जापहीन तापहीन कुलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी तेउ तरे राग गौड़ी रवदास जी के पदे गौड़ी गुआर रि एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति।

पड़े रिथीसुर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मछ पयाले गावन तुदनो।

हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावहु सं

है तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे है हर त्यावे है तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की पासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जियो तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको।

तरे जां तू करनहार करतार क्या मोहताजी क्या संसार आप अपाए आपे दे आपे दुर्मत मन है करे गुर प्रसाद वसै मन आए दुख अनेरा विचों जाए साच प्यारा आप करे अवरी को साच ना दे जे किसै देव खाने नानक आगै पूछ ना ले आसा महला पहला ताल मदीरे घट के घाट दोलक दुनिया वाजह वाज नारद नाचै कल का भाव जति सती कह राखह पाव नानक नाम विटो कुरबान अंधी दुनिया साहिब जान रहाऊ।

कौन कहिए, सर्व निरंतर रव रहिया, नाल कटंब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सिष्ट गया, आग्या अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या बड़ा पहया, रतन उपाय तरे खीर मथिया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपै क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया, आसा महला पहला, कर्म करतूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप नारेख अनाहद वाजै, शब्द निरंजन की

चाहे ज्योति ज्योत समाणी भीतर ता छोड़े माया के लाहे सर्व ज्योत रूप तेरा देखिया सगल भवन तेरी माया हरारे रूप नरालम बैठा नदर करे विच छाया बिना शब्द वजावे जोगी दर्शन रूप अपारा शब्द अनाहद सो सहोराता

याद जब लग हृदय न आवह जाद तौ प्रवाह के ही क्या कीजै जन्म जन्म किस लीजी लीजै रहाउ मन की मत मता गल मता जो किस बोलिया सब खतो खता क्या मुँह लै कीचै अरदास पाप पुन धोए साखी पास जैसा तू करहे तैसा को होए तुझ बिन दूजा नाही कोए जे ही तू मत देहे ते ही को पावे तुझे आपे पावे तिवें चलावे राग रतन परियां परवार तिस विच उपजै अमृत सार नानक करते का इहो धन माल जे को बूजै इहो विचार आसा महला पहला कर किरपा अपने घर आया ता मिल सखियां काज रचाया खेल देख मन आनंद भया सहो वी आहण आया गावो गावो कामणी बी बेक बीचार हमरै घर आया जग जीवन पतार रहाओ गुरु द्वारे हमरा व्याहो जे हुआ जां सहो मिलिया ता जानिया तिहो लोका हमें शब्द रविया है आप गया मन मानिया अपना कार्य आप सवारी पूर्ण कार्य ना हुई जित कार्य सत संतोख दया धर्म है गुरमुख बूझै कोई भणत नानक सबना का पिर एको सोए जिसनो नदर करे सा सुहागण होए आसा महला पहला ग्रहो बन समसर सहज सुपाई दुर्मत गत पई कीरत थाए सच पौड़ी साचो मुख नाम सतगुर सेव पा।

एक बहु करे दुख बिकिया सुख तन पर हरे काम क्रोध अंतर धन हिरे दुबदा छोड़ नाम निस्तरे सिफत सलाहन से।

जाय नानक अस्थिर नाम रजाय आसा महला पहला एको सरवर कमल अनूप सदा बिगासे परमल रूप उजल मोती चूगह हंस सर्व कला जगदीश अंश जो दीसै सो उपजै बिनसै बिन जल सरवर कमल ना दीसै रहाओ बिरला बूजै पावै भेद साखा तीन कह नित भेद नाद बिंद की सुरत समाय सतगुर सेव परम पद पाय मुक्तो रातो रंग रवंतो राजन राज सदा बिकसंतो जिस तू राख है कृपा तार बूढ़त पाहन तार है तार त्रिभवन मह जोत त्रिभवन मह जानिया उल्ट पई घर घर मह आनिया अहनस भगत करे लिवलाए नानक तिनकै लागै पाए आसा महला पहला गुरमत साची।

संग हर जियो राखो अपनी सरनाई गुर प्रसादी हर रस पाया नाम पदार्थ नौ निद पाई रहाओ कर्म धर्म सच साचा नाओ ता कै सद बलिहारे जाओ जो हर राते से जन परवान तिनकी संगत परम निदान हर वार जिन पाया धन नारी।

जात पात सच नाव कर्म धर्म संयम सत भाव नानक बख्शे पूछ ना होए दूजा मेटे एको सो होए आसा महला पहला एक आव है एक जाव है आई एक हर राते रह समाई एक धर्म गगन में ठौर ना पाव है से कर्महीन हर नाम ना त्याव है गुरपूरे ते गत मित पाई एहो संसार बेख वत अत भौजल

अठसख मज्जन हर सरीद गुरमुख निर्मल मैल ना लागे नानक हिरदय नाम वड्डी तुर भागे आसा महला पहला निव निव पाई लगो गुरे अपने आत्म राम निहारिया करत बिचार हिरदय हर रविया हिरदय देख बिचारिया बोलो राम करे निस्तारा गुर प्रसाद रतन हर लाभ है मिटे अज्ञान हुए उजियारा रहाउ रवनी रवे बंधन नहीं टूटे है विच हों मैं भरम ना जाई सतगुर मिले ता हों मैं टूटे ता को लेखे पाई हर हर नाम भगत प्रिय प्रीतम सुख सागर उर तारे भगत वछल जग जीवन दाता मत गुरमत हर निस्तारी मन स्यो जूझ मरे प्रभ पाई मनसा मन है समाई नानक कृपा करी जग जीवन सहज भाई लिवलाई आसा महला पहला किसको कह सुनावह किसको किस समझावह समझ रही किसे पढ़ावह पढ़ गुण बूझे सतगुर शब्द संतोख रही ऐसा गुरमत रमत शरीरा हर भज मेरे मन गहर गंभीरा रहाउ अनत तरंग भगत हर रंगा अनदिन सूचे हर गुण संगा मिथ्या जन्म साकत संसारा राम भगत जन रह निरारा सूची काया हर गुण गाया आत्म चीन रह लिवलाया आद अपार अप

ग्रास एहनस अंदले दीपक दे पाव जल डूबत चिंत करे कह सुनह जो मानह नाऊ हों बलिहारे तां कह जाऊ नानक एक कह अरदास जियो पिंड सब तेरे पास जा तू देहे जपी तेरा नाऊ दरगाह बैसन हुए थाऊ जा तुद पावे ता दुरमत जाए ज्ञान रतन मन वसे आए नदर करे ता सतगुर मिले प्रणवत नानक पवजल तरे आसा महला पहला पंच पदी दुध बिन तीन पंख बिन पंखी जल बिन उत्पुज काम नाही क्या सुल्तान सलाम विहूना अंधी कोठी तेरा नाम नाही की विसरह दुख बहुता लागे दुख लागे तू विसर नाही रहाउ अखी अंध जीव रस नाही कन्नी पवन ना वाजे चरनी चले पजूता आगे बिन सेवा फल लागे अखर बिरख बाग भोए चोखी सिंचत भाव करे ही सबना फल लागे नाम एको बिन कर्मा कैसे ले जेते जी तेते सब तेरे बिन सेवा फल किसे नाही दुख सुख भाणा तेरा होवै बिन नावै जियो रह नाही मत विच मरण जीवन होर

सो प्रगट जाय सच निशान है ठाक न पाय। पंडित पढ़ै बखाण है वेद अंतर वसत न जान है भेद। गुरबिन सोजी बूझ ना हुए साचा रव रहिया प्रभ सोय। क्या हों आखा आख बखाणी तू आपे जान है सर्ब वडाणी। नानक एको दर दीवान गुरमुख साच तहां गुदरान। आसा महला पहला काची गागर देह दोहेली। उपजै बिरसै दुख पाई इहो जग सागर दुत्तर क्यों तरियै। बिन हर गुर पार न पाई तुझ बिन अवरना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवरना कोई हरे सर्बी रंगी रूपी तू है। इस बख्शे जिस नदर करे रहाओ सास बुरी। घर वास ना देवे फिर स्यों मिलन ना दे बुरी। सखी साजनी के हों चरण सरेवो हर गुर कृपा ते नदर धरी। आप विचार मार मन देखिया तुम सा मीत ना अवर कोई। ज्यों तू राख है तिव ही रहना दुख सुख देव है करह सोई। आसा मनसा धूब नासक त्रिहों गुण आसमरास पई। तुरी अवस्था गुरमुख पाई है संत सभा की ओट लही। ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप जिस हर हिरदय अलख अपेवा। नानक राम नाम मन राता गुरमत पाई सहज सेवा। आसा महला पहला पंच पदी।

सच नाम जा नव निध पाई रोवै पूत न कलपै माई एत मोहे डूबा संसार गुरमुख कोई उतरै पार एत मोहे फिर जूनी पाहे मोहे लागा जम पुर जाहे गुर दीखिया ले जप तप कमाहे ना मोह टूटै ना थाए पाहे नदर करे ता एहो मोह जाए नानक हर स्यों रहे समाए आसा महला पहला आप करे सच अलख अपार हौ पापी तू बख्शन हार तेरा भाणा सब किछ होवै मन हथ कीचै अंत वगोवै रहाउ मन मुख की मत कूड़ व्यापी बिन हर सिमरन पाप संतापी दुर्मत त्याग लाहा किछ लेवहो जो उपजै सो अलख अपेवहो ऐसा हमरा सखा सहाई

पहला चौपदी विद्या विचारी ता पर उपकारी जा पंच रासी ता तीर्थवासी कुंगरू वाजे जे मन लागे तो जम कहां करी मोस्यो आगे रहाउ आसन रासी तो सन्यासी जा जत जोगी ता काया भोगी।

मेरा सहो जागे हों निस भर सोवा क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। सहो जागे हों निस भर सोवा रहाऊ आस प्यासी सीजै आवा।

आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्म राव सच्चा नावन ता फीए जा एनस लागे भाव इक लोकी होर समचरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीश का कबहून खूटस नाहे। आसा घर चौथा महला पहला।

धर कर महला हस्ती घोड़े छोड़ वलायत देश गए पीर पे कांबर सालक सादिक छोड़ी दुनिया थाए पए साध सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमन लिए दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश पए खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद पीतर पंच गुप्त मन वासी थिर ना रहे जैसे भवै उदासी मन मेरा दयाल सेती थिर ना रहे लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाउ फूल माला गल पहरूंगी हारू मिलेगा प्रीतम तब करूंगी शिंगारू पंच सखी हम एक पतारू पेड़ लगी है जियड़ा चालन हारू पंच सखी मिल

हाँ। हर हर हर कंठले पहरे दामोदर दंतले कर कर करता कंगन पहरे इन बिद चित तरे मधसूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पट ले तीरज धड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राओ।

तिस क्या कही है भाई, जो किस करना सो कर रहया, कीते क्या चतराई, तेरा हुक्म भला तुद भावे, नानक तां को मिले वडाई, साचे नाम समावे रहाव, किरत पया परवाना लिखिया, बहुड़ हुक्म ना होई, जैसा लिखिया तैसा पढ़िया, मेट ना सके कोई, जे को दरगाह बहुता बोले, नाओ पवे बाजारी, सतरंज बाजी।

बंदी अंदर सिफत कराए, ताको कहिए बंदा आसा महला पहला। गुर का शब्द मने मह मुंदरा, खिंता खिमा हंडावू। जो किश करे भला कर मानू, सहज जोग निद पावू। बाबा जुगता जियो जुग है जुग जोगी, परम तंत मह जोगं अमृत नाम निरंजन पाया। ज्ञान काया रस भोगं रहाओ, शिव नगरी मह आसन बैसो। कल्प त्यागी बादं सिंही शब्द सदा तुन सोह, एनस पूरे नादं

सगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन पर थर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर तावे कर करनी कस पाईए पाठी भवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चवाईए बाबा मन मतवारो नाम रस पीवे सहज रंग रच रहिया एनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गहिया।

कोई। गुर के दर्शन सदा सुख होए, गुर के दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार, नुगुरे को गत काई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर कै शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुखता को लगे ना पीर, जम काल किस नेड़ ना आवै, नानक गुरमुख साच समावै, आसा महला तीजा, शब्द मुआ विचों आप गुआई, सतगुर सेवे तिल ना तमाए, निरपहु दाता सदा मन हुए, सच्ची वाणी पाए भाग कोए।

शब्द समाहे सेवड भागी जिन नाम त्याया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह तिन बलिहार है जाऊं दर साचे साचे गुण गाऊ आपे देवे सहज सुपाए नानक कीमत कहन ना जाए आसा महला तीजा सतगुर विच वड्डी।

हर की मत किन बिद होए, हर अपरंपर अगम अगोचर, गुर कै शब्द मिले जन कोए रहाओ, गुरमुख कीमत जाने कोए, विरले कर्म प्राप्त होए, ऊंची बाणी ऊंचा होए, गुरमुख शब्द बखाने कोए, विण नावे दुख दर्द शरीर, सतगुर भेटे ता उतरे पीर, बिन गुर भेटे दुख कमाए, मनमुख बहुती मिले सजाए, हर का नाम मीठा अत रस होए, पीवत रह पियाए सोए, गुर कृपा ते हर रस पाए, नानक नाम रते गत पाए, आसा महला तीजा, मेरा प्रभ साचा गहर गंभीर, सेवत ही सुख शांत शरीर, शब्द तरे जन सहज सुपाए, किनकै हम सद लाग पाए, जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगहा मिले सुपाए रहाओ, शब्द चाकै साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभ सदा रहे।

गुर प्रसाद वसे मन आई, गुरमुख विचों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सुवारन हार, आसा महला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरता जन्म गवाया, सतगुर सेवै सूजी।

सुख पाई, संत संगत मेल हर गुण गाय, नामी नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरनहार, गुर की बाणी नाम बजाय, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गुआया, आसा महला तीजा, मनमुख मर है मर मरन बगाड़ है, दूजे भाए आत्म संघार है, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीन है पर मैं विच सूता, मर मुया शब्दे मर जाई, उस्तत निंदा गुर समझण आई, इस युग में है लाहा हर जप लै जाई, रहाऊ नाम मिहून गर्भ गल जाई, बिरथा जन्म दूजे लो भाई, नाम मिहूनी दुख जलै सबाई, सतगुर पूरै बूझ बुझाई, मन चंचल बहु चोटा खाए, इथों छुड़किया खौर ना पाए, गर्भ जोन विस्टा का वास, तित घर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मलाई, निर्मल बाणी निज घर वासा, नानक हों मैं मारे सदा उदासा, आसा महला तीजा, लाले अपनी जात गुआई।

सोग हर कदोय सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उधर रहाउ, करनी कार तुरहु फरमाई, बिन शब्द को थाए ना पाई, करनी कीर्त नाम वसाई, आपे देवे ढिल ना पाई, मन मुख परम पुले संसार, बिन रासी कूड़ा करे व्यापार, बिन रासी वखर पल्ले ना पाई, मन मुख भुला जन्म गवाई।

हार रहाउ सदा सुहागण जो प्रभ पावे गुर शब्दी सिंगार बनावे सेज सुखाली अन दिन हर रावे मिल प्रीतम सदा सुख पावे सा सुहागण साची जिस साच प्यार अपना पिर राखे सदा उर धार नेड़े वेखे सदा हदूर मेरा प्रभ सर्ब रहया परपूर।

ना जाए। पूरै सतगुर दित्ती वडियाई, उत्तम पदवी हर नाम समाई। जो किछ करे सो आपे आप, एक घड़ी मह थाप उथाप। कह कह कहना आख सुनाई, जे सौ काले थाए ना पाई। जिनकै पोतै पुन तिन्ना गुरु मलाई। सच बाणी गुर शब्द सुनाए, जहां शब्द वसै तहां दुख जाए। ज्ञान रतन साचै सहज समाए।

मन वसाई, नानक नाम रते सुख पाए। आसा महला तीजा, निरत करे बहु वाजे बजाए। इह मन अंधा भूला है किसे आख सुनाई। अंतर लोभ भरम अनलवाऊ, दीवा बलै ना सूझी पाए। गुरमुख भगत घट चानण होए, आप पछाण मिले।

आपे जान, गुर कै शब्द अंतर ब्रह्म पछान, गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार, गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत निरत दुख होए, एहा भगत जन जीवत मरे, गुर प्रसादी भवजल तरे, गुर कै बचन भगत थाए पाए, हर जीव आप वसै मन आए, हर कृपा करे सतगुरु मलाए, निश्चल भगत हर सियों चित लाए, भगत रते तिन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए। आसा घर अठवां काफी महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर कै भाणे सतगुर मिले सच सोझी होई, गुर प्रसादी मन वसै हर बूझै सोई, मैं सहो दाता एक है अवर नाही कोई, गुर कृपा ते मन वसै ता सदा सुख होई रहाउ, इस जुग में निरपो हर नाम है, पाईऐ गुर विचार बिन नामे जम कै वस है, मन मुख अंध गुआर हर कै भाणे जन सेवा करै, बूझै सच सोई हर कै भाणे सलाहियै, भाणे मन्नै सुख होई, हर कै भाणे जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई, नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई, आसा महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर।

बिहारी हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी। कालयुग मह धड़े पंच चोर चगड़ाए काम क्रोध लोभ मोह अभमान वधाए। जिसनो कृपा करे तिस सत संग मलाए हमरा हर धड़ा जिन एह धड़े सब गवाए। मिथ्या दूजा पाओ धड़े बह पावै प्राया सिदर अटकलै अपना अहंकार वधावै जैसा बीजै तैसा खावै। जन नानक का हर धड़ा धर्म सब सृष्ट जिन आवै। आसा महला चौथा हिरदय सुन सुन मन अमृत पाया।

भाग गुरमुख हर पाए, नाम हीन कालक मुख माया, नाम बिना त्रिग त्रिग जीव आया, वड्डा वड्डा हर भाग कर पाया, नानक गुरमुख नाम दिवाया, आसा महला चौथा, गुण गावा गुण बोली बाणी, गुरमुख हर गुण आख बखाणी, जप जप नाम मन पया आनंदा, सत सत सत गुर

माया मल धारी विण गुण जन्म मुए अहंकारी शरीर सरोवर गुण प्रगट किए नानक गुरमुख मत तत कढ़ी।

निकाई नाम रविया सब सास ग्रासा रहाओ नामै सुरत सुनी मन पाई जो नाम सुनावै सो मेरा मीत सखाई नाम हीन गए मूड नंगा पच पच मुए बिख देख पतंगा आपे थापे थाप उथापे नानक नाम देवै हर आपे आसा महला चौथा गुरमुख हर हर वेल वधाई।

सच सूचे आसा महला चौथा हर हर नाम की मन भूख लगाई नाम सुनिए मन तृप्त मेरे भाई।

बंदा, सब ने फल कर्म किए दुख धंधा, हर हर हर जस जपै वड भागी, नानक गुरमत नाम लिव लागी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। महला चौथा, राग आसा घर छेवे के तिन, हथ कर तंत वजावै जोगी, थोतर वाजै बेन, गुरमत हर गुण बोलो जोगी, एह मनुआ हर रंग भेन, जोगी हर देहो मती उपदेस, जुग जुग हर हर एको वरतै, तिस आगै हम आदेश रहाउ, गाव है राग भांत बहु बोल है, यह मनुआ खेलै खेल, जो वह कूप सिंचन को बसधा, उठ बैल गए चर बेल, काया नगर मह कर्म हर बोव हो, हर जामै हरिया खेत, मनुआ अस्थर बैल मन जोव हो, हर सिंचो हो गुरमत जेत, जोगी जंगम सिष्ट सब तुमरी, जो देहो मती तित चेल, जन नानक के प्रभ अंतर जामी।

खिन लागे हम तब लग समारो नाम। मेरा मन ऐसी भगत बन आई हम हर बिन खिन पल रह ना सको। जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा कब को मेले पंच सत गायन। कब को राग धुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे। तब लग मेरा मन राम गुण गावे तब को नाचे पाम पसारे। कब को हाथ पसारे हाथ पाम पसारत बिलम तिल लागे। तब लग मेरा मन राम समारे कब को लोगन को पते आवे। लोक पतीने ना पत होए जन नानक हर हिरदय सद त्याव हो। ता जय जय करे सब कोई आसा महला चौथा। सत संगत मिली है हर साधु मिल संगत हर गुण गाए। ज्ञान रतन बलिया घट चानन अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाच हो हर हर त्याए ऐसे संत मिले है मेरे भाई। हम जन के तो वह पाए रहाओ हर हर नाम जप हो मन मेरे। अन दिन हर लिव लाए जो इच्छो हो सोई फल पाव हो। फिर भूख ना लागे आए आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए। से संत भले तुद पावे है जिनकी पत पावे है थाए। नानक आख ना राजे हर गुण ज्यों आखे त्यों सुख पाए। भगत भंडार दिए हरे अपने गुण गाहक वणज लै जाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर अठवां के काफी महला चौथा। आया मन तुरा हो हम मैं रोई है गुरमुख नाम त्याए अस्थिर हुई है। गुरपुरे साबास चलन जानिया लाहा नाम सो सार शब्द समाणिया। रहाओ पूर्व लिखे देहे से आए माया चलन अज के कल तुरहु फुरमाया। बिरथा जन्म तिना जिनी नाम वसारिया जुए खेलन जग के इहो मन हारिया। जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया नानक सच्चे सच सच समाया। आसा महला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम त्याया। गुर प्रसादी भुज सच समाया जिन तुर लिखिया लेख तिनी नाम कमाया। दर सच्चे सत्यार महल बुलाया रहाउ अंतर नाम निदान गुरमुख पाईऐ। अन दिन नाम त्याए हर गुण गाईऐ अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाईऐ। हम मैं गर्भ गर्भ आप खुआईऐ नानक आपे आप खुआईऐ। गुरमत मन परगास सच्चा पाईऐ राग असावरी घर सोलवा के दो महला चौथा। सोधन एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम अन दिन हर नाम कीर्तन करूं। सतगुर मोको हर नाम बताया हम हर बिन खिन पल रह ना सको। रहाउ हमरे सरवण सिमरन हर कीर्तन हम हर बिन रह ना सको। हम एक खिन जैसे हंस सरवर बिन रह ना सके तैसे हर जन क्यों।

हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमरत हर हर भगवान सावरी महला चौथा माई मोरो प्रीतम राम बताव होरी माई हौ हर बिन खिन पल रह ना सकू जैसे कर हर बेल रिझाई रहाउ हमरा मन बैराग बिरकत भयो हर दर्शन मीत कै ताई जैसे अल कमला बिन रह ना सकै तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई राख शरण जगदी सुर प्यारे मोहे शरदा पूर हर गुसाई जन नानक कै मन आनंद होत है हर दर्शन निमक दिखाई।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठाली तिस भउ बहुत दिखाया। भाई मीत कुटुंब देख बिबादी, हम आई वसगत गुर प्रसादी। ऐसा देख बमोहित हुए, साधक सिद्ध सुर देव मनुखा। बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे रहा, एक फिर है उदासी तिन काम व्यापै। एक संचह गिरी तिन हुए ना आपै, एक सती कहा।

समाने तुरिया गुण मिल साध पछाने सहज गुफा में आसन बांधिया जोत स्वरूप अनाहद वाजिया महा आनंद गुर शब्द विचार प्रिय सो राती धन सुहागण नार जन नानक बोले ब्रह्म विचार जो सुने कमावे सो उतरे पार जन्म ना मरे ना आवे ना जाई हर सेती ओहो रह समाई आसा महला पंजवां निज भगती सील

वख वख परमावे घर की नायक घर वास ना देवे जतन करूं पुरजाई परेवे रहाव तुरकी भेजी।

भावे मनुख पहचावो। तृतीय मता किस करूं उपाया, मैं सब किस छोड़ प्रभ तुही ते आया। महा आनंद अचिंत सह जाया।

परदेश झाग सौदे कहो आया, वस्त अनूप सुनी लाभाया, गुण रास बन पल्ले आनी, देख रतन इहु मन लपटानी, सहा व्यापारी द्वारे आए,

समाना कर मस्तक धार राखियो कर अपना क्या जान है एहो लोग अजाना रहाओ सुहाग हमारो अब हुन सोहयो कंत मिलियो मेरो सब दुख जोहयो आंगन मेरा सोभा चंद निस बासर प्रिय संग आनंद वस्त्र हमारे।

अंग चलूल सगल आभरण शोभा कंठ फूल प्रिय पेखी दृष्ट पाए सगल निदान दुष्ट दूत की चूकी कान साध कुचिया सदा रंग माने नौ निद नाम ग्रह मह त्रिपताने कहो नानक जो पिरह शिंगारी थिर सोहागन संग पतारी आसा महला पंजवा दान दे कर पूजा करना लैत देत उनमू कर परना।

जानते मन निर्मल हर हर गुण गाए भये आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुर शब्दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर शीतल मिलियो सहज सुभाए रहाओ धावत रहे एक एक बूझिया आए बसे अब निश्चल थाए जगत उदाहरण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दुख परे मेरे पाछे अब पकरे निश्चल साधु पाए सहज धुन गावे मंगल मनुआ अब तां को फुन काल ना खाए करन कारण समरथ हमारे।

चौपदी एक घड़ी दिन समो को बहुत दिहारी मन ना रह कैसे मिलो प्यारी एक पाल दिन समो को कब हो ना बिहावे।

चहो जुगह समानी रैण पई तब अंत ना जानी पंच दूत मिल फिरो बिछोड़ी भ्रम भ्रम रोवे हाथ पछोड़ी।

निदान अमृत सार सदे ही परपूरा रहाओ। चरण कमल हृदय अंतर तारे प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राई सुख रैन विहानी सहज सुपाई। आसा महला पंजवां कर किरपा हर प्रगति आया। मिल सतगुर धन पूरा पाया ऐसा हर धन संची है भाई। पाए न जल जल नहीं डूबे संग छोड़ कर कतहु न जाई रहाओ। तोट न आवे न खुट न जाई खाए खर्च मन रहया अगाए। सो सच साह जिस घर हर धन संचाना इस धन ते सब जग वरसाना। इन हर धन पाया जिस पुरब लिखे का लहना जन नानक अंतवार।

आउ दिन ते सर पर पौसी रात रहन गई फिर हुए प्रभात माया मोहे सोए रहे अपागे गुर प्रसाद को विरला जागे कहो नानक गुण गाइए नीत मुख उजल हुए निर्मल चीत आसा महला पंजवा नौ निद तेरह।

सद ही संगा कुदरत वर्त रूप अर रंगा करह ना चुरै ना मन रोवन हारा अवनासी।

पंजवा हर रस छोड़ होशै रस माता घर मह वसत बाहर उठ जाता सुनी ना जाई।

बिन हर नाम अवर सब थोरा, तृप्त अगावै हर दर्शन मन मोरा। रहाउ भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल।

प्रभ अवनासी घट घट चीन आसा महला पंजवा आनंद बनोद भरे पुर धारिया अपना कारज आप सुआरिया पूर समगरी पूरे ठाकुर की।

पूरा गुर पूरी बणत बनाई, नानक भगत मिली वड्याई। आसा महला पंजवां, गुर कै शब्द बंधावो।

रहाउ। त्रिपत अगावन साक्य नाय, अठसठ मज्जन संत तुराय। सब मैं जानू करता एक, साध संगत मिल बुद्ध विवेक। दास सगल का छोड़ अभमान, नानक को गुर दीनो दान। आसा महला पंजवा, बुद्ध परगास भई मत पूरी। तांते बिनसी दुरमत दूरी, ऐसी गुरमत पाई अले। बूढ़त कोर अंधकूप में।

माती मन सदा आनंद आन रसा मह व्यापै चिंद हर रस पीवै अलमस्त मतवारा आन

आद ईत ऊत कत छोड़ ना जाए, नानक गीता हर रस माहे। आसा महला पंजवा, काम क्रोध लोभ मोह मिटावे, छुटकै दुर्मते अपनी धारी, होए नमाणी सेव कमावे, ता प्रीतम होवे मन प्यारी। सुन सुंदर साधु बचन उधार।

यही व्यवहारा भाग्यमान भगत हुए तुम्हारी जो यह मंत्र कमावे नानक सो पौ जल पार उतारी। आसा महला पंजवा दोपदे पई प्राप्त मानुख देहरिया गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भवजल तरण कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाउ जप तप संयम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जानिया हर राया कहो नानक हम नीच करमा सरन परे की राखो शर्मा। आसा महला पंजवा तुझ

बैठत उठत सोवत जागत विसर नाही तू सास ग्रासा रहाउ। राख राख शरण प्रभ अपनी अग्न सागर विकराला, नानक के सुख दाते सतगुर हम तुमरे बाल गोपाला। आसा महला पंजवा, हर जन लीने प्रभु छडाई, प्रीतम स्यों मेरो मन मानिया।

आप सहाय गुण निदान नित गावे नानक सहसा दुख मटाई आसा महला पंजवां औखद खायो हर को नाउ सुख पाए दुख बिनसिया थाउ ताप गया बचन गुरपूरे आनंद पया सब मिटे वसूरे रहाउ जी जंत सगल सुख पाया पार ब्रह्म नानक मन त्याया आसा महला पंजवां बांशत नाही सो बेला आई बिन हुक्मै क्यों।

करन संग मेली, सुख सहज आनंद सुहेली, साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा महला पंजवा, काम क्रोध माया मद मत सर, ए खेलत सब जुए हारे, सत संतोख दया धर्म सच, एह अपने ग्रह भीतर वारी, जन्म मरण चूके सब भारे, मिलत संग भयो मन निर्मल,

छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, अपदेश करे आप ना कमावे, तत शब्द ना पछाने, नांगा आया नांगो जासी।

0: कर कर डूबे खप खप मोए गवारा।
1: गुरमिल नानक नाम त्याया साच नाम निसतारा। राग आसा कर पंजवा महला पंजवा।

जागै साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वडभागे कृपा एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा घर छेवा महला पंजवा जो तुद पावै सो परवाना सुख सहज मन सोई करन कारण समरथ अपारा अवर नाही रे कोई तेरे जन रसक रसक गुण गावह मसलत मता सियान पजन की जो तू करह करावह रहाओ अमृत नाम तुम्हारा प्यारी साध संग रस पाया तृप्त अगाए सी जन पूरे सुख निदान हर गाया।

गोविंद भजन की मत है होरा, बरमी मारी साप ना मरी, नाम ना सुनी डोरा रहाउ, माया की किरत छोड़ गवाई, भगती सार ना जाने, वेद शास्त्र

पाया। कूड़ कपट बंच निम नियादा बिनस गया तत्काली। सत सत सत नानक कहया अपने हिरदय देख संभाली। आसा महला पंजवा उदम करत हो है मन निर्मल नाचे आप निवारी। पंच जना ले वसगत राख है मन में है इकंकारी। तेरा जन नृत करे गुण गावे रबाब पखावज ताल घुंगरू अनहद शब्द बजा।

सुनावै कर संग साधु चरण पखारै संत धूर तन लावै मन तन अर्प धरे गुर आगै सत पदार्थ पावै जो जो सुने पेखै लाए श्रद्धा ताका जन्म मरण दुख भागै।

आया रसक रसक बिगसानारी आसा महला पंजवा बंधन काट बसारे औगन अपना बिरद समारिया होए कृपाल मात पित न्याई बारक ज्यों प्रतपारिया गुरसिख राखे गुरु गोपाल काढ़ लिए महापव जलते अपनी नदर निहाल रहाओ जां कै सिमरन जमते छुटिया हलत पलत सुख पाईऐ सास ग्रास जपो जप रसना नीत नीत गुण गाईऐ।

मुक्त पय अंधकूप महा कोरते बाहा पकड़ गुर काड लिए निरपव पय सगल पव मिटिया राखे राख नहारे ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कार

बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी ऐसो समरथ वर्ण ना साको ताकि उपमा जात ना कहोरी काजर कोठ मह पई ना कारी निर्मल वर्ण बनियोरी महामंत्र गुर हृदय बसियो अचर्ज नाम सुनियोरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक सुख पाया।

दीस आवत है बहुत भी हाला, सगल चरण की इहो मन राला, नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया, आसा महला पंजवा, पावत रलिया जोबन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर ओडलिया, सेज सुखलिया मन गर्बलिया, रहाव तलै कुंचरिया, सिर कनक छतरिया, हर भगत बिना ले धरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनक इस्तरिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया छलिया विकार बिखलिया, शरण नानक प्रभ पुरख दयालिया, आसा महला पंजवा, एक बगीचा पेड़ घन करिया, अमृत नाम तहां मह फलिया, ऐसा करहु विचार ज्ञानी, जाते पाईए पद निर्बानी, आस पास बिखुआ के कुंता, बीच अमृत है पाई रे रहाव, सिंचन हारे एक माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पतियां जनाई, सगली फूली निफल ना काई, अमृत फल ना

राते सो अस्थान बतावो मीता जां कै हर हर कीर्तन नीता रहाओ शास्त्र वेद पाप पुन विचार नरक सुर्ग फिर अवतार गिरस्त मह चिंत उदास अहंकार कर्म करत जी कौ जंजार प्रभ कृपा ते मन वस आया नानक गुरमुख तरी तिन माया साध संग हर की

जा तू चित आवे सो नाम जपै जो जन तुद पावे रहाउ। तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत तह दुख डेरा। हुक्म बूझै सोई परवान साच शब्द जाका निशान। गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया भणत नानक मेरा मन सुख पाया। आसा महला पंजवां जहां पठाव हो तह तह जाई।

दिन सरैन हर कीर्तन गाइए, सो जन जम की वाट ना पाइए। आठ पहर जिस विसरह नाही, गत होए नानक तिस लग पा।

आवे कोई सगल श्रेष्ठ अवां के चरण मल धोई जो प्राणी काहू ना आवत काम संत प्रसाद ताको जपिए नाम साध संग मन

मैं निहारो सदा सदा हर नाम सुमारो राम रामा रामा गुन गावो संत प्रताप साध कै संगी हर हर नाम त्यावो रे रहाओ सगल समगरी जा कै सूत परोई कट कट अंतर रव्या सोई ओपत परलोखिन मैं करता आप अलेपा निर्गुण रहता कर्ण कराम ने अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी आसा महला पंजवा कोट जन्म के रहे पवारे दलाब देह जीती नहीं हारे किल बिख बनासे।

हे मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाउ। बिनस्यो मन का मूर्ख तीठा प्रभु का पाणा लागा मीठा। गुरपूरे के चरण गहे कोट जन्म के पाप लहे। रतन जन्म एहो सफल पया कहो नानक प्रभ करी मया। आसा महला पंजवा सतगुरे अपना सद सदा सम्हारे। गुर के चरण केस संग चारे जागरे मन जागन हारे। बिन

आपे पेड़ बिसथारी साख, अपनी खेती आपे राख, जत कत पेखों एक ओही।

खोया आनंद रूप सब नैन अलोया आसा मोहल्ला पंजवा मुक्त सियान किशु ना जाना।

मुख हर हर बोले, सो जन इत उत कतह ना डोले, कहो नानक जो राचे नाई, हर माला तां कै संग जाई, आसा महला पंजवां, जिसका सब किस तिसका होए, तिस जन लेप ना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जो किछ करे सोई भल जन कै, आत्मनिर्मल दास की जुगता रहाओ, सगल त्याग हर सरणी आया।

कहो नानक गुर पूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया। आसा महला पंजवा, जो सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, ता दुख परम।

माया मद माती जागत भगत सिमरत हर राती रहाउ मोह परम बहु जोन पवाया अस्थिर भगत हर चरण त्याया बंधन अंध कूप ग्रह मेरा मुक्ते संत बुझ है हर नेरा कहो नानक जो प्रभ शरणाई।

रोवन हार झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ काके घर गावन, को रोवे को हस हस पावन रहाव, बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुंचना मूका फिर पछताना, त्रिहु गुण में वरते संसारा, नरक सुर्ग फिर अवतारा, कहो

ना जानी भोर भया बहोर पछतानी प्रिय प्रेम सहज मन आनंद तरहुरी प्रभ मिल बे की लालसा ताते आलस कहां करो री रहाओ कर्म है अमृत आनन सारेउ खिसर गयो भूम पर डारेउ साध मोहे लादी अहंकारे दोष नाही प्रभ करने हारे साध संग मिटे परम अंधारे

पंजवा ठाकर सिंह जाकी बन आई, भोजन पूर्ण रहे अगाई, कछु न थोरा हर भगतन को, खात खर्चत बिलचत देवन को रहाओ, जाका तनी अगम गुसा।

देख चलत मन भये दलासा, नानक दास तेरा परवासा, आसा महला पंजवा, अनदिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप मह खाए मठाई, सोचत साचत रहन बयानी, अनकरंग माया के चितवत, कबहू ना सिमरै सारंग पानी रहाव, द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधिया, काल कै फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया, सो थान मूड निश्चल कर पाया, साध संग जपियो हर राए, नानक जीवै हर गुण गाए, आसा महला पंजवा दो तुके नौ, उनकै संग तू करती केल, उनकै संग हम तुम संग मेल, उनकै संग

सब हुमा गर्भ मोह तज हूरेन उनके संग देखो प्रभ नैन निमक निमक एही आराधो दिन सरहन ए सेवा साधो भये कृपाल गोपाल गोबिंद साध संग नानक बख्शिंद आसा महला पंजवा प्रभ की प्रीत सदा सुख होए प्रभ की प्रीत दुख लगे ना को।

सगल उधार है, प्रभु की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस सार संग भूले।

माया, कर कर अनर्थ बिहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उस्ते डार अवर को दीनी, काच गगरिया अंब मझरिया,

संबाहा निकसिया फूक ता हुए गयो स्वाहा ऊचे मंदर महल अर रानी हस्त घोड़े जोड़े मन पानी वड परवार पूत अरतियां मोहे

आठ घाट ग्रह बन बन जो है, मन तन लागे होए कै मीठी, गुर प्रसाद में खोटी डीठी, अगरक उसके वडे ठगाऊ, छोड़ह नाही बाप ना माऊ, मेली अपने उनले बांधे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन भया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया, आसा महला पंजवा आठ पहर निकट कर जाने।

मेरे भाई वाकी महिमा कथन ना जाई रहाओ। वर्तन जा कै केवल नाम आनंद रूप कीर्तन विश्राम। मित्र सत्र जा कै एक समान प्रभ अपने बिन अवर ना जाने। कोट कोट अग काटन हार।

सगल सूख जप एक नाम, सगल धर्म हर के गुण गाम, महापवित्र साधका संग, जिस भेट तलागे प्रभ रंग, गुर प्रसाद होए आनंद पावे, जिस सिमरत मन होए परगासा, ताकी गात मित कह

के लेखा, भगत जना कहो दृष्ट ना पेखा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, वाजे तां कै अनहद तूरा, आसा महला पंजवा दुपदा एक, साधु संग सखायो नाम, सर्व मनोरथ पूर्ण काम, बुझ गई तृष्णा हर जसै अगानी, जप जप जीवा सारग पानी, करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाउ, लाल जिवे हर भरे भंडार, तोट न आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै।

सूख सहज मेरा धन सोहागा। कहो नानक मोरी पूरन आसा, सतगुर मेली प्रभ गुणतासा। आसा महला पंजवां, माथे त्रिकुटी दृष्ट क्रूर। बोले कौड़ा जिहवा की फूड, सदा भूखी पिर जाने दूर। ऐसी स्त्री एक राम अपाई, उन सब जग खाया। हम गुर राखे मेरे पाई रहाओ, पाए ठगौली सब जग जोहया। ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया, गुरमुख नाम लगे से सोहया। वर्त नेम कर थाके पुनः चरना, तट तीरथ भवे सब तरना। से उबरे जे

वहां पकड़ हम राखा आशा मोहल्ला पंजवा सर्व दुख जब बिसरह स्वामी इहा उहा कामना प्राणी संत तृपता से हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रव तुमरी रजाए रहाओ संग होवत को जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब किस दिया तिस चितवत नाही।

गुरपूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वस गत आया, जिस मन वसया हर का नाम, नानक तिस ऊपर कुर्बान, आसा मोहल्ला पंजवा, गाव ले तू गाव नहारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जां की सेवा सर्व सुख पाव है, अवर काहू पह बहुड़ ना जाव है, सदा आनंद आनंदी साहिब, गुण निधान नित नित जापी है, बलिहारी तिस संत प्यारी, जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है, रहाओ जां का दान नुखूटे नाही, पली भांत सब सहज समाही, जां की बख्श न मेटे कोई, मन वासाइए साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जां कै पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन, ओट गही निरभउ पद पाइए, सास सास सो गुण निद गाइए, दूर ना होई कतहू जाइए, नदर करे ता हर हर पाइए, अरदास करी पूरे गुर पास, नानक मंगे हर धन रास, आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सगल को हुआ सुख, कर कृपा गुर दीनो नाओ, बल बल तिस सतगुर को जाओ, गुरपूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख बनासे, सतगुर की सरनाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अगन बुझी

सुनी सच्चे तिस धणी सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी नैन पसंदो सोए पेख मस्ताक भई मैं

हर कीर्तन आधार निश्चले हो तनो जेते माया रंग तेत पछावया सुख का नाम निदान गुरमुख गावया सच्चा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीरे आस भरोसा खसम का नानक के जियरे आसा महला पंजवा जिस सिमरत दुख जाए सहज सुख पाई है रैन दिन सकर जोड़ हर हर त्याई है नानक का प्रभ सोए जिसका सब कोई सर्व रहया भरपूर सच्चा।

सगल रोग राखन हार अपार राखै अग्न माहे शीतल हर हर नाम सिमरत तपत जाए सुख सहज आनंद घना नानक जन धूरा कार्य सगले सिद्ध भए

जिन हर त्याया जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई आसा महला पंजवा आवहो मीत इकत्तर हुए रस कास सब पुंचह अमृत नाम हर हर जप है।

ठाकर तू ही प्रभ ता केवड भागा ओहो सहेला सद सुखी सब भ्रम पौ भागा हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा करन करावन सगल बिद सो सतगुरु हमारा रहाओ दूजा नाही और को तांका पहो करिय गुर सेवा महल पाईय जग दुत्तर तरिय दृष्ट तेरी सुख पाईय मन माहे निदाना जाको तुम कृपाल पये सेवक से परवाना अमृत रस हर

हर नाम मजीठै रंगरी त्याग सियाणप चातुरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ परता कह सुमानिया एहो शिंगार बनाए री दूजा भाव वसारी एहो तंबोला खाए री गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बछाएरी आठ पहर कर जोड़ रहो तौ भेटै हर रायरी तिस ही चज शिंगार सब साई रूप अपार री साई सुहागण नानका जो पाणी करतार री आसा महला पंजवां दीगण डोला तऊ लो

सेव को नानक खसमै बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद घना हर कीर्तन गाव ग्रह निवारी सतगुरु दे अपना नाव बलिहारी गुरे अपनी सद सद बल जाओ गुरु विटो हों वारिया जिस मिल सच सुआओ रहाओ सगुन अप सगुन तिस को लगे है जिस चीत ना आवे तिस जम नेड़ ना आवे जो हर प्रभ भावे पुन दान जप तप जेते सब ऊपर नाम हर हर रसना जो जपे तिस पूर्ण काम पै बिन से भ्रम मोह गए को जिसे ना बिया नानक राखे।

सर्व सुख पावं आज्ञा पावं के ना पावं। एक दतार सगल है जाचक दूसर कै पह जावो हम मांगो आनल जावो। सगल शत्रपत एको ठाकुर कौन समसर लावो रहाओ। उठो बैसो रह पे ना साको दर्शन खोज खजावो। ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार तिनको महल दुल पावो। अगम अगम अगाध बोध कीमत परे ना पावो। ताकी शरण सत पुरख की सत गुर पुरख त्यावो। पयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर काटियो बंद गरावो। कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म ना आ

पंथ सुमारी नाम दृढ़ गुरमन मह दिया मोरी तिसा बुझारी दिन पी गावो रहनी गावो गावो सास सास रसनारी सत संगत में बसास हुए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक को एहो दान देहो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवनी कथा नैन दर्श पेखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर दसवां महला पंजवां जिसनो तू अस्थर कर मन है ते पाहुन दो दाहा पुत्र कलत्तर ग्रह सगल समगरी सब मिथ्या असनाहा रे मन क्या करह है हाहा दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन लै लाहा रहाओ जैसे बस्तर देह ओढ़ानी दिन दोए चार पुराहा पीत उपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा जैसे अंब कुंड कर राखियो परत सिंध गल जाहा आव गया गया पार ब्रह्म की उठ जासी मोहत चसाहा रे मन लेखे चल है लेखे बैस है लेखे लेंदा साहा सदा कीर्त कर नानक हर की उबरे सतगुर चरण उठाहा आसा महला पंजवां अपुष्ट बात ते भई सीधरी दूत दुष्ट सजनई अंधकार मह रतन परगासेउ मलीन बुद्ध हसनई जो कृपा गोविंद भई सुख संपत हर नाम फल पाए सतगुरु मिली रहाओ मोहि कृपण को कोई ना जानत सगल भवन प्रगटई संग बैठनो कहीं ना पावत हुन सगल चरण सेवी आड़ आड़ को पिरत ढूंढते मन सगल त्रिशन बुझ गई एक बोल पी खवतो नाही साध संगत सीत लई एक जी गुण कवन वखाने अगम अगम अगमई दास दास दास को करियो जन नानक हर सरनई।

गंधण वहन सुन है उर जावे है, नाम लैत अलकाया, निंद चिंद को बहुत अमाहयो, बूजी उल्टाया, पारतान पारतान पारती निंदा, अखाद खाहे हरकाया, साच तर्म स्यो रुच नहीं आवे, सत सुनत शोहाया, दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, भगत टेक हर नाया, नानक आहे सरन प्रभ आयो, राख लाज अपनाया, आसा महला पंजवा, मिथ्या संग संग लपटाई, मोह माया कर बांधे, जह जानो सो चीत ना आवे, अहम बुद्ध भय आंदे, मन बैरागी क्यों ना अरादे, काच कोठरी माहे तू बसता, संग सगल बिखे की ब्यादे रहाओ, मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे, पलखिन सीजे अर जादे, जैसे मीठे साध लुभाए, झूठ धंद दुर्गम दे, काम क्रोध अर लोभ मोह, एह इंद्री रस लपटा दे, दीप वारी पुरख बधाते, बहुर बहुर जन माते, जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन, तो गुरमेल सब सुख लादे, कहो नानक दिन रैन त्यावो, मार काढ़ी सगले अपादे, इउं जपियो भाई पुरख बधाते,

कारण कोट दिन से दुख पावे है, करी मोह तरंग मान है, फिर बहुर बहुर पछतावे है। अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया रहाओ। पलक दृष्ट देख भूलो, आक नीम को तूमर, जैसा संग बिसियर स्यों है रे, तैसो ही एहो पारग्रहो। बैरी कारण पाप करता, बस्त रही अमाना, छोड़ जाहे तिन ही स्यों संगी, साजन स्यों बैराना। सगल संसार एह विद व्याप्यो, सो उबरेओ जिस गुर पूरा, कहो नानक पाव सागर तरेओ। पये पनीत शरीरा, आसा महला पंजवा, दोपदे लूक कमानो, सोई तुम पेखेओ। मूड मुग्ध मुकरानी, आप कमाने कौले बांदे, फिर पाछे पछतानी। प्रभ मेरे सब विद आगै जानी, भ्रम के मूसे तू राखत परदा, पाछे जी की मानी रहाओ। जित जित लाए तित तित लागे।

नटुआ भेख दिखावे बहु बिद, जैसा है ओहो तैसारी, अनक जोन भ्रम्यो भ्रम पीतर, सुख नाही परवेसारी, साजन संत हमारे लीता, बिन हर हर अनीतारी, साध संग मिल हर गुण गाई, एहो जन्म पदार्थ जीतारी, रहाओ त्रै गुण माया ब्रह्म की कीनी, कहो कमन बिद तरिया रे, कुमन केर अगाह गाखरी, गुर शब्दी पार उतरिया रे, खोजत खोजत खोज बिचारियो, तात नानक एहो जाना रे, सिमरत नाम निदान निर्मोलक, मन मानक पतिया नारे, आसा महला पंजवा दुपदे, गुर प्रसाद मेरा मन वस्या, जो मांगो सो पामो रे, नाम रंग एहो मन त्रिपताना, बहुर न कतहु तामो रे, हमरा ठाकुर सब ते उच्चा, रैन दिन से तिस

तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चली रे आसा महला पंजवां नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ बहु गुण धुन मुन जन खट बेते अवर

पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमख न मन ते तारी रे रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे

चालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवा घर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्याग सगल सियानपा भज पार ब्रह्म निरंकार एक साचे नाम।

महा भौजन लंघी है सदा हर गुण गाओ जन्म मरण निवारी है दुख ना जम पुर होए नाम निधान सोई पाए कृपा करे प्रभ सोए एक टेक आधार एको एक का मन जोर नानक जपिया मिल साध संगत हर बिन अवर ना होर आसा महला पंजवा जियो मन तन प्राण प्रभ के दिए सब रस भोग दीन बंदप जी दाता सरन राखण जोग मेरे मन त्याए हर हर नाम हलत पलत सहाए संगे एक स्यों लिव लाओ रहाओ वेद शास्त्र जन त्यावह तरन कौ संसार कर्म धर्म अनेक क्रिया सब ऊपर नाम आचार।

दुख पाया बिना साधु संग खाट लाभ गोविंद हर रस पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिय नीत सास सास त्याय।

आप त्याग सगल से आनपा आठ पहर प्रभ जाप मीत सखा सहाये संगी ऊंच अगम अपार चरण कमल बसाए।

किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन धन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किश नाही। ज्यो ज्यो राख है त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काट मजन हर जन तूर पाए भगत परम पौ नासै हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवां अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग आप किरपाल किरपा प्रभ धारी सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरदेव मल मूत मूड जे मुगद होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब श्रेष्ठ धरता।

प्रसाद, सतगुर बचन तुम्हारे, निर्गुण निस्तारे, रहाओ महाबिखादी दुष्ट अपवादी, ते पनीत संगारे, जन्म पवंते नरक पड़ंते, तिनके कुल उधारे, कोई ना जाने कोई ना माने, से प्रगट हर द्वारे, कमन उपमा देओ कमन वडाई, नानक खिन खिन वारे, आसा महला पंजवा, बावर सोए रहे, रहाओ मोह कटांब बिखै रस माते, मिथ्या गहन गहे, मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास, मन मुख सत कहे, अमृत नाम पदार्थ संगे, तिल मर्म ना लहे।

गज मोतियन लालन नह नाहा नहीं राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किस किस ना चाही चरणन सरनन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तपत हरि।

दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवा हर हर नाम अमोला ओह सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ ना जाई ओह अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक इहो हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत नवाहे ठाकुर आयो आहे रहाओ नाम पदार्थ होए सकारथ हृदय चरण बसाहे एहे मुक्ता एहे जुगता राख हो संत संगाहे नाम त्याव हो सहज समावो नानक हर गुण गाहे आसा महला पंजवा ठाकुर चरण सुहावे हर संतन पावे रहाओ आप गवाया सेव कमाया गुण रस रस गावे एक है आसा दर्श प्यासा आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम त्याव हो हृदय बसाव हो तिस बिन को नाही प्रभ सरनी आईय सर्व फल पाईय सगले दुख जाही जीअन को दाता पुरख बधाता नानक घट घट आही आसा महला पंजवा हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम त्यावै सर्व फल पावै सो जन सुखिया हुआ राज कहावै हों।

संयम कर थाके नानक साध सरन प्रभ संग वसै आसा महला पंजवां घर पंद्रवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद बेकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवै पकर केस जम उठारियो तद ही घर जावै लोभ बिखिया बिखै लागे हर वित चित दुखाही।

दान सगल गैर वजह भरिया दीवान लेखे ना परिया जेहे कार्ज रह ओला सोए काम ना करिया।

सहजाए दरसाए अभरात्या गोविंद सिंह संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन मैदान पाए सब

प्रभ त्याव भ्रम भीत जीत मटाव निद नाम नानक मोरै आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल।

तिस पुखानहा। नानक सहज समायो रे मना, सावरी महला पंजवा। हर हर हर गुनीहा, जपिय सहज तुनीहा। साधु रसन पनीहा, छूटन बिद सुनीहा। पाइय वड पुनी मेरे मना, रहाओ खोज है जन मुनीहा। सर्ब का

सब चतराई उजड़ पर मैं राहे ना पाई बिन गुजे को थाए ना पाई नाम बिहूने माथे छाई साच तनी जागे आए बनासा छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाउ जग मोहे बादा बहुती आसा गुरमति एक भये उदासा अंतर नाम कमल पर गासा तिनको नाही जम की त्रासा जग त्रय जित कामन हितकारी पुत्र कलत्र लग नाम वसारी बिरथा जन्म गवाया बाजी हारी सतगुर सेवे करनी सारी बाहर हो मैं कह कहाए अंदर हो मुक्त लेप कदे ना लाए माया मोह गुर शब्द जलाए निर्मल नाम सद हृदय त्याए

नाई, कर बिन वाजिया पग बिन ताला, जे शब्द बुझै ता सच निहाला, अंतर साच सबे सुख नाला, नदर करे राख रखवाला, त्रे भवन सूजै आप गुआवै, बाणी बूझै सच सुभावै, शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक धन सवार नहारा, आसा महला पहला, लेख असंख लिख लिख मान, मन मानै सच सुरत वखान, कथनी बदनी पढ़ पढ़ भार, लेख असंख अलेख या

जीवन मुक्त मन नाम वसाए, गुरमुख होए ता सच सुमाए, जिन तरसा जी गगन आकाश, जिन सब थापी

जग पंडित बिरला विचारी बिन सतगुर भेटे सब फिरे अहंकारी जग दुखिया सुखिया जन कोई।

दुख कोई, सो रोवे जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सो होए, जीवत मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना।

0: भ्रांत
1: सूतक अगन पखै जग खाए सूतक जल थल सब ही थाए नानक सूतक जन्म मरीजै गुर प्रसादी हर रस पीजै राग आसा महला पहला आप विचारै सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुर पूरा गुर मानै मन

कहया बूझै दिख का माता जग स्यों लूझै उत्तम संगति उत्तम होवै गुण कौ धावै अवगणित होवै।

नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख महली महल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भगत विचार।

राग सुनाए कहावह बीते, बिन नावै मन झूठ अनीते, कहां चलो हो मन रहो हो करे, गुरमुख राम नाम तृप्तासे, खोजत पाव हो सहज हरे रहाओ, काम क्रोध मन मोह शरीरा, लाभ लोभ अहंकार सो पीरा, राम नाम बिन क्यों मन तीरा, अंतर नामन साच पछाणे, अंतर की गात गुरमुख जाने, साच शब्द बिन महल ना पछाणे, निरंकार मह आकार समावे, अकल कला सच साच टिकावे, सो नर गर्भ जोन नहीं आवे, जहां नाम मिले तह जाऊं, गुर प्रसादी कर्म कमाऊं, नामे राता हर गुण गाऊं, गुर सेवा ते आप पछाता, अमृत नाम वस्या सुखदाता।

ग्रास इकत थाए कीए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख इहो मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन भय निरंकारी इहो मन निर्मल दर घर सोई गुरमुख भगत भाव धुन होई एहनस हर जस गुर प्रसाद घट घट सो कब आद जुगाद राम रसायन इहो मन माता सर्व रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के।

तू आप भलावह नाम विसार, तू आपे रख है कृपा धार। रोग भरम भेद मन दूजा, गुरबिन भरम जप है जप दूजा। आदि पुरख गुर दर्शना देख है, बिन गुर शब्द जन्म के लेख है। देख अचरज रहे बिस्माद, घट घट सुर नर सहज समाद। भरपुर तार रहे मन माही, तुम समसर अवर को नाही। जां की भगत हेत मुख नाम, संत भगत की

0: दुख तिस लागे।
1: जो जन राम नाम लिव जागे,
0: भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त भये हर रंग। आसा महला पहला एक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने।

पास एक लख लहन बैठिया लख लहन खड़िया गरी सुहारे खांदिया मानन से जड़िया तिन गल सिलका पाइया टुटन मोत सरिया धन जोबन दोए वैरी होए जिन्नी

गवाइया रंग तमाशे चाहे बाबर वाणी फिर गई कोयर ना रोटी खाए एक ना वक्त खुआई है एक ना पूजा चाहे क्योंकि बिन हिंदवाणिया क्यों टिके कड है ना आए राम ना कबहू चेते हो हुन कहन ना मिले खुदाए एक घर आव है अपने एक मिल मिल पुछ है सुख एक ना एहो लिखिया बह बह रोवे दुख जो तिस भावे सो।

ब्राह्मण जिस वेख नींद ना पाई कहां सो पान तंबोली हरमा हो या शाई माई। इस जर कारण घणी विगुत्ती इन जर घणी खोआ।

लालच दुख भारी साचो साहिब मन वसे हों मैं बिख मारी दुबदा छोड़ कवाटड़ी मूसो हो गए भाई अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई मनमुख पत्थर सैल है

आसा महला पहला चले चलन हार वाट बटाया धंद पिटे संसार सच ना पाया क्या भवी है क्या ढूंढी है गुर शब्द दिखाया ममता मोह विसर्जिया अपने घर आया रहाऊ सच मिले सच्चाई।

मन भावई चले सदार जाई अंक सुमावई सच्चा साहिब मन वसै वसया मन सोई आपे दे वडियाइया दे टूट ना होई अबे तबे की चाकरी क्यों दरगाह पावे पत्थर की बेड़ी जे चढ़े भार नाल बढ़ावे आपनड़ा मन वेचिए सिर दीजे नाले गुरमुख वस्त पछाणिए अपना कर भाले जम्मण मरना आखिए तिन करतै किया आप गुआया मर रहे फिर मरन ना थिया साई कार कमावणी तुर की परमाई जे मन सतगुर दे मिले किन कीमत पाई रतना पारख सो धणी

तू ठाने नित नित खरा संभाली है सच सौदा पाई है खोटे नदर ना आमनी ले अगन जलाई है जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई एको अमृत बिरख है फल अमृत होई अमृत फल जिन्नी चाखिया सच रहे अगाई तिन्ना परम ना भेद है हर रसन रसाई हुक्म संजोगी।

का दुख घणो नित सहसा दोई बिन नावे क्या जीवना हित त्रिग चतुराई सतगुर साधना सेविया हर भगत ना पाई रहाऊ आवन जावन तौ रहै पाइए गुर पूरा राम नाम धन रास दे बिनसै भ्रम पूरा संत जना को मिल रहै तन तन जस गाए आदि पुरख अपरंपरा गुरमुख हर पाए नटुए सांग बनाया बाजी संसारा खिन पल बाजी देखिए उजरत नहीं बारा हों मैं चौपड़ खेलना झूठे अहंकारा सब जग हारे सो जिने गुर शब्द विचारा ज्यों अंधले हाथ टोहनी।

अधारा अंत सखाई पाया जन मुक्त द्वारा जन्म मरण दुख मेटिया जप नाम वरारी नानक नाम ना विसरै पूरा गुर तारी आसा महला तीजा अष्टपदिया घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सात वेद सिमरत सर तेरा सुरसरी चरण समाणी साखा तीन मूल मत रावे तू ता सर्ब वडाणी ता के चरण जपै जन नानक बोले अमृत बाणी रहाओ ते तीस करोड़ी दास तुम्हारे रिद सिद्ध प्राण आधारी ताके रूप न जाही लखने क्या कर आख विचारी तीन गुणा तेरे जोग ही अंतर चारी तेरिया खानी कर्म हुए ता परम पद पाई है कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या तू करे प्राणी जा को नदर करह तू अपनी।

अपसार हर जीव मन वसै सब दुख वसार नहार दर साचै दिसै सचियार गुर सेवा ते त्रिपवन सोजी होए आप पछाण हर पावै सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गुर सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखै उर धारे साची सोभा साच द्वारी सेवड भागी जे गुर सेवा लाए अन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उदरे कुल सबाए नानक साच कह विचार हर का नाम रखो उर धार हर भगती राते मोख द्वार आसा महला तीजा आसा आस करे सब कोई हुक्म है।

सतगुर नाम बुझाया बिन नामे भुख ना जाई नामे तृष्णा अग्न बुझे नाम मिले तिसे रजाई रहाऊ कल की

जप पढ़िया गुर शब्द विचार, हर जप पढ़िया होमे मार, हर जपिया पह सच प्यार, नानक नाम गुरमत उरतार, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा महला तीजा, अष्टपदिया घर अठवां काफी, गुर ते शांति उपजै जिन तृष्णा अग्न बुझाई, गुर ते नाम पाई वड्डी वडियाई, एको नाम चेत मेरे भाई,

बाहर किश नाही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाई सतगुर ते हर पाई है पाई अंतर नाम निदान है पूरा सतगुर दिया दिखाई रहाओ हर का गाहक हो है सो ले पाए रतन विचारा अंदर खोले दिव दिष्ट देख मुक्त भंडारा अंदर महल अनेक है जियो करे बसेरा मन चिंदिया पल पाए से फिर हुए ना फेरा पारखियां वत संभाल ले गुर सोजी होई नाम पदार्थ मुल सा गुरमुख पावे कोई बाहर भाले सो क्या लह वत करे अंदर पाई भरमे भूला सब जग फिरे मनमुख पत गवाई घर दर छोड़े अपना पर कर झूठा जाई चोरे वांगू पकड़ी है बिन नावे चोटा खाई जिन्नी घर जाता अपना से सुखिए पाई अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वडियाई आपे दान करे किसे आखी है आपे दे बुझाई नानक ना

ना निवह दूजा भाउ सुआउ इहो मनुआ क्यों कर वस आवे गुर प्रसादी ठाकिए ज्ञान मती घर आवे रहाउ सुहागनी आप सुआरियों लाए प्रेम प्यार सतगुर कै भाणे चल दिया।

आज्ञा जुग जुग प्रगट होए। ए मन रूढ़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ाए, रूढ़ी बाणी जे रपै ना एहो रंग लह ना जाए रहाओ। हम नीच मैले अत अभमानी दूजै पाए विकार, गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल ज्योत अपार। बिन गुर कोई ना रंगी है गुर मिले रंग चढ़ाओ, गुर कै भै पाए जो रते सिफती सच समाओ। भै बिन लाग ना लगई ना मन निर्मल होए, बिन भै कर्म कमावनी झूठे ठाओ ना कोय। जिसनो आपे रंगे सो रपसी सत संगत मिलाए, पूरे गुर ते सत संगत उपजै सहजे सच सुभाए। बिन संगती सब ऐसे रह जैसे पास ढोर, जिन कीते तिसै ना जाननी बिन नावे सब चोर। एक गुण विहाज है औगण विकण है गुर कै सहज सुभाए।

है बहुविध सृष्ट उपाई हुक्मे कार कराएंदा दूजा किस कही है भाई बुझना अबुझना तुद किया ए तेरी सिर कार इक ना बख्श मेल लह एक दरगाह मार कड़े कूड़ यार एक तुर पवित पावन है तुद ना मेलाए गुर सेवा ते सुख उपजै सच्चा शब्द बुझाए एक कुचल कुचील विखली पते नाम हो आप खुआए ना उन सिद्ध ना बुद्ध है ना संजमी फिर है उत बताए नदर करे जिस अपनी तिस नो भावनी लाए सत संतोख एह संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए लेखा पढ़ ना पहुंची है कत कहने अंत ना पाई गुर ते कीमत पाई है सच शब्द सोजी पाए इहो मन देही सोध तू गुर शब्द वी

शब्द रहे आपरपूर रहाउ गुरमुख आप पछाणिया तिन्नी एक मन त्याया सदा रवह पेरे अपना सच्चे नाम सुख पाया ए मन तेरा को नहीं कर वेख शब्द विचार हर सरनाई भज पओ पाए हे मोख द्वार शब्द सुनिए शब्द बुझिए सच रह लिवलाई शब्द हउमै मारिए सच्चे महल सुख पाए इस जुग में शोभा नाम की।

सत सहज सुख के सब हाट, साहा व्यापारी एकै थाट, जे जिया दन को लय ना जगात, सतगुर कर दीनी तुर की छाप, वखर नाम लद खेप चलावो, लै लाहा गुरमुख घर आवो, सतगुर साहु सिख बन जारी, पूंजी नाम लेखा साच संवारे, सो वसै इत कर जिस गुर पूरा सेव, अब चल नगरी नानक देव। असावरी महला पंजवां घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन हर स्यों लागी प्रीत, साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत, रहाउ दर्शन की प्यास घणी, चितवत अनक प्रकार, करो अनुग्रह पार ब्रह्म हर कृपा धार मरार, मन परदेसी आया मिलो साध कै संग, जिस वखर कौ चाहता सो पायो नामह रंग, जेते माया रंग रस बिनस जाही खिन माहे, भगत रते तेरे नाम स्यों, सुख पुंचह सब ठाए, सब जग चल तो पेखी है निश्चलार को नाम, कर मित्राई साध स्यों, निश्चल पावह ठाव, मीत साजन

साथ चरण कमल बोहित पै लग सागर तरयो ते पेत्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ सियो ने साध तेरे की जाचना विसरना सास ग्रास जो तुद पावे सो पला तेरे पाने कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पीते परमानंद हासा।

पार ब्रह्म प्रभ सिमरिया प्यारी दर्शन कौ बल जाओ जिस सिमरत दुख बिसरह प्यारी सो क्यों तजना जाय एह तन वेखी संत पह प्यारी प्रीतम दे मलाए सुख सिंगार बिखिया के फीके तज छोड़े मेरी माय काम क्रोध लोभ तज गए प्यारी सतगुर चरनी पाय जो जन राते राम स्यो प्यारी अनत ना काहू जाय हर रस जिन्नी चाखिया प्यारी तृप्त रहे आगाय अंचल गहया साध का नानक पै सागर पार पराय जन्म मरण दुख कटिया प्यारी

सत्य सोए श्रेष्ठ जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिन का लागा आया तिनका सफल भया मन काहे भूले मूड मना।

एको रव रहिया सब थाई एक वसिया मन माही तत्तै तंच करहू क्या प्राणी करी के मोहत के उठ चलना जूऐ जन्म ना हारो अपना भाज पढ़ो तुम हर सरना ठठै ठांड वरती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा से जन निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया डड्डै दंप करहू क्या प्राणी जो किश हुआ सो सब चलना तिसै सरी वोहो ता सुख पावहो सर्व निरंतर राव रहया तड्डै ताहे उसारै आपे ज्यों तिस पावै तिवै करे कर कर वेखै हुक्म चिलाए तिस निस्तारी जा को नदर करे नाणै रवत रह घट अंतर हर गुण गावै सोई आपे आप मलाए करता पुनरप जन्म ना हुई तत्तै तारू भवजन हुआ ताका अंत ना पाया ना तर ना तुल्हा हम बूढ़स तार ले तार नराया थत्तै थान थनंतर सोई जाका किया सब हुआ क्या परम क्या माया कहिए जो तिस पावै सोई भला दद्दै दोष ना देऊ किसै दोष कर्मा आपणिया जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजै अवर जना तद्दै धार कला जिन छोड़ी हर की जी जिन रंग किया तिसदा दिया सबनी लिया करमी करमी हुक्म पया नन्नै ना हां भोग नित भोगै ना दीठा ना संभलिया गली हों सुहागण पैणे कंत ना कबहू मैं मिलिया पप्पै पातशाह परमेश्वर वेखण कौ परपंच किया देखै बूझै सब किस जाणै अंतर बाहर रव रहिया फप्पै फाही सब जग फासा जम कै संगल बंध लया गुर प्रसादी से नर उबरे जे हर सरनागत भज पया बब्बै बाजी खेलण लागा चौपड़ कीते चार जुगा जी जंत सब सारी कीते पासा ढालने आप लगा पब्बै पालह से फल पावह गुर प्रसादी जिन को पौ पया मनमुख फिरह ना चेतह मूड़े लाख चौरासी फेर पया मम्मै मोह मरण मधुसूदन मरण पया तब चेतव्या काया पीतर अवरू पड़िया मम्मा अखर विसरिया यही जन्म ना होवी कद ही जे कर सच पछाणै गुरमुख आखै गुरमुख बूजै गुरमुख एको जाणै रारै राव रहिया सब अंतर जेते किए जनता जंत अपाई तंदै सब लाए कर्म हुआ तिन नाम लया लल्लै लाए तंदै जिन छोड़ी मीठा माया मोह किया खाना पीना सम कर सहना पाणे तां कै हुक्म पया ववै वास देओ परमेश्वर वेखण कहो जिन वेस किया वेखै चाखै सब किस जाणै अंतर बाहर रव रहिया राड़ै राड़ करह क्या प्राणी तिसह त्यावो जे अमर होवा तिसह त्यावो सच समावो ओस विटोहो कुर्बान किया हा है होर न कोई दाता जी उपाई जिन रिजक दिया हर नाम त्याग हो हर नाम समाव हो अन दिन लाहा हर नाम लिया आयड़ै आप करे जिन छोड़ी जो किस करना सो कर रहया करे कराए सब किस जाने नानक शायर इव कहया राग आसा महला तीजा पट्टी एक ओंकार सतगुर प्रसाद अयो अंग सब जग आया काके कंग काल पया रीरी लल्ली पाप कमाणे पर अवगण गुण विसरिया मन ऐसा लेखा तू की पढ़िया।

रूप पया अंतर आत्मे ब्रह्म ना चीनिया माया का मोहताज पया कके काम क्रोध परमयो मूड़े ममता लागे तुद हर विसरिया पढ़ है गुण है तू बहुत पुकार है विन बूझे तू डूब मुआ तत्ते तामस जलियो हो मूड़े थत्ते थान पृष्ठ हुआ कग्गे कर कर फिर है तू मूड़े दद्दे दान ना तुद लया पप्पे पार ना पवे ही मूड़े पर पंच तू पलच रहया सच्चे आप खुआयो हो मूड़े एहो सिर तेरे लेख पया पब्बे पवजल डुबो हो मूड़े माया विच गलतान पया गुर प्रसादी एको जाने एक घड़ी मह पार पया वावे वारी आईया मूड़े वास देव तुद विसरिया ए वेला ना लह सह मूड़े फिर तू जम कै वस पया झज्जै कदे ना झूरह मूड़े सतगुर का उपदेश सुन तू विखा सतगुर बाजो गुर नहीं कोई न गुरे का है नाम बुरा तद्दै तावत वर्ज रख मूड़े अंतर तेरे निदान पया गुरमुख हो वह ता हर रस पी वह जुगा जुगंतर खाही पया गग्गै गोविंद चित कर मूड़े गली किने ना पाया गुर के चरण हृदय वसाए मूड़े पिछले गुनहा सब बख्श लया हा है हर कथा बूझ तू मूड़े ता सदा सुख होई मनमुख पढ़े तीता दुख लागे बिन सतगुरु मुक्त ना हुई हरारे राम।

मुंद जोबन बालड़िए मेरा पिर रली आला राम तन पिर नेहो कणा रस प्रीत दयाला राम तन पिरह मेला हुए स्वामी आप प्रभु कृपा करी सीजा सुहावी संग पिरकै सात सर अमृत भरी कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन अमाहो मुंद सहज सुलो नड़िए एक प्रेम बिनंती राम मैं मन तन हर पावे प्रभ संगम राती राम प्रभ प्रेम राती हर बिनंती नाम हर कै सुख वसै तौ गुण पछाण है ता प्रभ जान है गुण है वस अवगुण नसै तुद बाज एक तिल रह ना साका कहन सुनन ना तीजे नानका प्रियो प्रियो कर पुकारी रसन रस मन पीजे सखी हो सहेलड़ी हो मेरा पिर बन जारा राम हर नामो वणन जड़िया रस मोल अपारा राम मोल अमोलो सच कर ढोलो प्रभ भावे ता मुंद भली एक संग हर कै करह रलिया औ पुकारी दर खली करन कारण समरथ श्री तर आप कारज सारे नानक नदनी तन सुहागण शब्द अब साधारे हम कर साचा सोहिलड़ा प्रभ आयड़ी मीता राम रावे रंग रातड़िया मन लियड़ा दीता राम अपना मन दिया हर वर लिया ज्यों भावे त्यों रावे तन मन पिर आगै शब्द सुभागै घर अमृत फल पावे बुद्ध पाठ ना पाईऐ बहु चतुराईऐ भाई मिले मन पाणी नानक ठाकुर मीत हमारी हम नाही लोकाणी हासा महला पहला अनहदो अनहद वाजै रुण चुन कारी राम मेरा मनो मेरा मन राता लाल प्यारी राम अन दिन राता मन बैरागी सुन मंडल घर पाया आद पुरख अपरंपर प्यारा सतगुर अलख लखाया आसन बैसन तिर नारायण तित मन राता विचारी नानक नाम रते बैरागी अनहद रुण चुन कारी तित अगम पुरे कहो कित बिद जाइए राम सच संजमो सार गुणा गुर शब्द कमाइए राम सच शब्द कमाइए निज घर जाइए पाइए गुणी निदाना तित साखा मूल पत नहीं डाली सिर सबना परधाना जप तप कर कर संजम थाकी हठ निग्रह नहीं पाइए नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाइए गुर सागरो रतनागर कित रतन कनेरे राम कर मजनू सप्त सरी मन निर्मल मेरे राम निर्मल जल नहाए जा प्रभ भाई पंच मिले विचारी राम क्रोध कपट बिखिया तज सच नाम उरतारी हौ मैं लोभ लहर लभ थाके पाए दीन दयाला नानक गुर समान तीर्थ नहीं कोई साचे गुर गोपाला हौ बन बनो देख रही त्रिण देख सबाया राम त्रे भवनो तुझह किया सब जगत सबाया राम तेरा सब किया तू ठिर थिया तुद समान को नाही तू दाता सब जाचक तेरे तुद बिन किस सालाही अण मंगिया दान दीजै दाते तेरी भगत भरे भंडारा राम नाम बिन मुक्त ना होई।

वाद पुरुष अपरम्परुतारे नाम अग्मय गोचर अपरय पारा पार ब्रह्म परदानो आदि जुगादि है पी होसी अवर झूठा सब मानो कर्म धर्म की सार ना जाने सुरत मुकट क्यों पाई है नानक गुरमुख शब्द पछाने अहनस नाम ते आई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हूं मैं ममता माया संग ना जाई राम मात पित भाई सुत चतुराई संग ना संपै नारी शायर की पुत्री पर हर त्यागी चरण तले विचारी आदि पुरख एक चलत दिखाया जह देखा तह सोई नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच संभाले राम अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम अवगुण परहर करनी सारी दर सच्चै सत्यारु आवन जावन थाक रहाए गुरमुख तत विचारु साजन मीत सजान सखा तू सच मिले वडियाई नानक नाम रतन परगासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन राव रहिया जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सहज मिले मेलाया साध सभा संतां की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर की भगत रति बैरागी

गुरमति रंग मान मूल पछाण है ता सहो जान है मरण जीवन की सोजी होई गुर प्रसादी एको जान है ता दूजा भाव ना होई मन शांत आई बजी बधाई।